100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, शक संवत 1948, तदनुसार 15 जून 2026। प्रातः के 5:55 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्त्री तत्र तिष्ठामि। प्रभु कहते हैं कि ना मैं तो वैकुंठ में निवास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं पे रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त प्रेमाकुल होकर मेरे नाम का गुणगान करते हैं। अर्थात भगवान को पाने के लिए किसी विशेष स्थान या कठिन योग साधना की आवश्यकता से ज्यादा सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। आइए प्रभु को स्मरण कर प्रारंभ करते हैं भक्तिमय कार्यक्रम पुष्पांजलि।

आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर। पुष्पांजलि का प्रथम पुष्प अर्पित है श्री गणेश के चरणों में।

शिवपद कमल जिन्हें रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लच्छनेहू। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं होती, वे राम को भी स्वप्न में अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्ति का लक्षण है। अर्थात यदि आपको श्री राम का परम भक्त बनना है, तो आपके हृदय में भगवान शिव के लिए भी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, महादेव की भक्ति ही राम भक्ति का प्रवेश द्वार है।

अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुबिधि सब संता। रामचंद्र के चरित सुहाए, कलप कोटि लगि जाहि न गाए। हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। उनकी कथा भी अनंत है, सभी संत लोग उस कथा को बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। साथ ही प्रभु श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र का कोई भी बखान नहीं कर सकता, क्योंकि सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते।

प्रभु की शरणागति में वह शक्ति है जो आपके प्रारब्ध को भी बदलने का सामर्थ्य रखती है। विश्वास रखिए, जो आपके पास है वह उनकी कृपा है, और जो आपको नहीं मिला उसमें प्रभु की कोई ना कोई बड़ी योजना जरूर होगी।

हमारे वेदों पुराणों में भी नारी को प्रथम स्थान दिया गया है, उसे शक्ति का रूप माना गया है, वह जननी भी है, सभी विश्व का संचार करने वाली भी है, वह माँ भी है और हम सभी का कल्याण करने वाली भी है। तभी तो कहते हैं यत्र नार्यस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्तत्राफला क्रियाः। जिस घर में जिस देश में स्त्रियों का आदर होता है उस घर में देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों का आदर नहीं होता वहाँ सभी कर्म सभी पुण्य निष्फल हो जाते हैं।

भजन रूपी पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं कार्यक्रम पुष्पांजलि में। आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

कार्य और शुभ कार्यों को हनुमान जी स्वयं अपनी कृपा से पुकार देते हैं, अर्थात हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग कोई कठिन कर्मकांड नहीं, बल्कि मन में उनके प्रति सच्चा प्रेम और अटूट विश्वास होना चाहिए। जिसके मन में ये है, उसके जीवन के सारे संकट प्रभु स्वयं हर लेते हैं।

प्रेम प्रतीते ही कपि भजे, सदा धरै उर ध्यान, ते ही के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो मनुष्य पूर्ण प्रेम और अटूट विश्वास के साथ वानर राज श्री हनुमान जी का भजन करते हैं और सदा अपने हृदय में उनका ध्यान बनाए रखते हैं, उनके सभी कल्याण

यदि कर्म अच्छे हैं तो किस्मत दासी है, यदि नीयत अच्छी है तो घर में ही मथुरा काशी है। इस जीवन में दुख तब बड़े लगते हैं जब आपकी सोच छोटी होने लग जाती है, आप दुख सुख की तुलना करने लग जाते हैं, आप कम ज्यादा की तुलना करने लग जाते हैं। यदि प्रभु श्री राम का यही भाव होता तो वो लंका विजय कभी ना कर पाते। इस नश्वर संसार में मात्र आपके कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए।

प्रभु की कृपा सदैव हम पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ मैं यानी कि आकांक्षा चाहेगी अनुमति कार्यक्रम पुष्पांजलि से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया की दो दिन की यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। कल ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का भव्य और पारंपरिक स्वागत सत्कार किया गया। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज की वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू हो रही हैं। इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान आज लखनऊ से सुबह 7:05 पर रवाना होकर सुबह 8:05 पर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद नोएडा से बेंगलुरु के लिए पहली नियमित वाणिज्यिक उड़ान भी शुरू हो जाएगी। जेवर हाईवे अड्डे से पहली उड़ान सुबह 8:00 लखनऊ के लिए रवाना होगी। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह ने के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान पहली उड़ान से यात्रा करेंगे। ये वे किसान हैं जिनकी जमीन हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। लखनऊ पहुंचने पर ये किसान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और अपना आभार व्यक्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडल के सांसदों व विधायकों और लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने दोनों मंडलों के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी परियोजनाओं और प्रस्तावों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैठक का उद्देश्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर प्राथमिकता निर्धारित कर त्वरित कार्यवाही करते हुए समय से परियोजनाओं की स्वीकृति कराई जाए और तत्काल कार्य प्रारंभ कराया जाए। मुख्यमंत्री ने दोनों मंडल के

सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी सड़क निर्माण परियोजनाओं प्रस्तावों का डिजिटल प्रेजेंटेशन देखा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रन से पराजित कर दिया। एजबिस्टिन मैदान पर खेले गए मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बनाए। पाकिस्तानी टीम 17 ओवर में 106 रन पर सिमट गई। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए और अपने नेट रन रेट को भी मजबूत किया। इस समाचार बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 9 बजे अखबारों की सुर्खियों के साथ प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
3: चलते रहे
4: हमारी और आपकी साझा कहानी,
2: आपके अपने रेनबो की जबानी।
3: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
5: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
6: ये
7: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
2: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सौ मसले हैं जिंदगी में, बस तेरा होना काफी है। आंखों के मंजर में अश्कों का होना काफी है। गुम होकर दुनिया में तो खुद का हो पाना काफी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, आकांक्षा है आपके साथ प्रोग्राम सदाबहार गीत में। तो बस तैयार हो जाइए, गुनगुनाएंगे अपने जज्बात और एहसास इन्हीं खूबसूरत गीतों के साथ। कहाँ पर? बस ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की

जी हाँ, दिल तो है दिल, और कभी कभी दिल और मन की बातों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। दिल कुछ और कहता है और मन कुछ और कहता है, ऐसा होता है ना। और सबसे बड़ी दुविधा तब आती है जब बात अपनों की हो, जब मन कहे कि जहाँ सही है वहाँ सही करो, जहाँ गलत है वहाँ पे गलत का साथ मत दो, लेकिन दिल कहता है क्या करें, ये है तो अपने ही। लेकिन एक गुंजाइश बन सकती है कि हम दिल और मन में ये संतुलन बना लें कि एक मौका दें, अगर वो अपना है तो उसे माफी दें, ताकि दिल और मन दोनों की बात सुनी जा सके। आज सदाबहार गीत में बातें उनकी होंगी जिन्हें शायद उतनी ही परवाह, उतनी ही प्यार की जरूरत होती है जितने की एक छोटे से बच्चे की। ये आपको सोचना है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि साथ सिर्फ जीवन साथी का ही नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई रिश्ते होते हैं जिन्हें हमारे साथ और हमारे सहारे की जरूरत होती है। हमारे लिए उन्होंने जीवन भर बड़े प्रण किए, बड़े त्याग किए, तो कभी कभी हमारी भी बारी आती है कि हम उनके लिए त्याग करें, उनका सहारा बनें।

जी हाँ, कभी कभी कुछ लोगों के बिना जिंदगी बड़ी मुश्किल लगती है, आसान नहीं होती चीजें। जैसे कि जब तक हमारे सर पर माँ बाप का साया होता है ना, तब तक हमें ये रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी, भले ही हमें उनसे निपटना है, गुजरना है, फेस करना है, लेकिन अंततः एक सपोर्ट तो है जिनसे हम जाकर कह सकते हैं, शायद उनके पास हमसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन हो। भले ही वो आज की दुनिया की तकनीकी नहीं समझते, आज की दुनिया के हिसाब किताब ना समझ पाए, लेकिन उनकी जो समझ है रिश्तों के मामले में,

भावनाओं के मामले में उस समझ को हम नहीं समझ सकते। आज एक खास दिन भी है तो हमारे घर के वो बुजुर्ग, वो बड़े लोग जिन्हें हम सोचते हैं कि बस अब इन्होंने अपने जीवन के सारे पड़ाव तो देखे हैं, सारी चीज़ें तो ये जान गए हैं, तो इन्हें अब शांत रहना चाहिए, आराम से रहना चाहिए। लेकिन उस घर में, उस घर की नींव होते हैं वो, और सबसे ज़्यादा आपकी अगर कोई फिक्र करता है उस घर में तो वही हैं। तो बस प्यार से, आराम से उन्हें संभालिए जिस तरह से उन्होंने आपके बचपन को संभाला था।

जी हाँ, और ये उम्मीदें, ये सॉन्ग कभी कभी ना ऐसा लगता है कि जो हमारे घर में हमारे माता पिता हैं, हमारे घर के बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसी उम्मीदें हमसे रखते हैं, और जिन्होंने हमारी जिंदगी के लिए इतना कुछ किया हो, हमारे लिए इतने सपने संजोए हों, उनका ये सोचना, उनकी छोटी सी उम्मीद रखना बुरी नहीं हो सकती। आज सदाबहार गीत प्रोग्राम में ये खास बात है इसलिए क्योंकि आज है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। और उस वक्त के लोगों से हम अगर संस्कार और मैनर्स की बात करें, संवेदनाओं की बात करें, तो उनसे अच्छा हमें और कोई नहीं सिखा सकता। आज भी अगर आप उनसे पूछें ना कि आपके पास कोई पुरानी चीज है, तो वो आपको तुरंत निकाल कर दिखाएंगे वो सारी पुरानी चीजें, और बड़ी सुंदरता से, बड़ी अच्छे से वैसे ही संभाल के रखी हैं जैसे वो उन्हें पहले कभी मिली थी वो चीजें। तो वो लोग चीजों को जब इतनी अच्छी तरीके से संभाल के रखते हैं, तो बेशक वो रिश्तों को, अपनों को भी बहुत अच्छे से संभाल के रखते हैं। इसी पर एक वाक्य मुझे याद आता है कि एक बहुत ही रौनक की सी पार्टी थी, हर कोई आया हुआ था, बड़े तबके के भी लोग आए हुए थे, और हर कोई बन ठन के जितना अच्छा पहन सकता था, जितना अच्छा दिख सकता था, उसने हर तरह की कोशिश करी। लेकिन उस भीड़ में एक शख्स ऐसा था जो एक पुराना सा, बड़ा अजीब सा उसने बैंगल पहन रखा था, कड़ा पहन रखा था, और तभी कुछ लोगों ने उनसे जाके आखिर में पूछ ही लिया कि एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी है, ब्रांडेड कपड़े हैं, बड़े सुंदर हैं आप, आपका ओहदा भी इतना ऊंचा है, फिर एक हाथ में ये अजीब सा पुराना सा ये कड़ा कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आपको नहीं लगता आपको इसे हटा देना चाहिए? तब उस शख्स ने जवाब दिया कि कुछ चीजों की खूबसूरती इस बात से नहीं होती कि वो दिखने में कैसी हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उनसे हमारा जुड़ाव, हमारा लगाव कैसा है। वो कड़ा उनके दादाजी ने दिया था, वक्त के साथ उसकी रौनक चली गई, उसकी खूबसूरती चली गई, लेकिन उसकी जो दुआएं थी वो आज भी कायम थी। इसीलिए उस शख्स ने पूरे बंठन होने के बाद भी, सुंदर दिखने के बाद भी, दुआओं को अपने ऊपर धारण किया था, इसीलिए उसका बाल बांका नहीं हो सकता था। और जब जीवन में ऐसी दुआएं हमारे साथ रहती हैं ना, ऐसे लोग हमारे साथ रहते हैं, तो वाकई ये पांव जमीन पर नहीं होते, इन्हें बेशक एक खूबसूरत सा आसमां मिलता है।

जब तक हम टीनेज में होते हैं या फिर अपने माँ बाप के साये में होते हैं ना, तो हम बहुत से वादे करते हैं, बहुत से मन में ये बातें रखते हैं कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपनी माँ के लिए करूँगा, अपने पिता के लिए करूँगा, या घर में कोई भी ऐसा बुज़ुर्ग है जिससे हमें बड़ा प्यार दुलार मिलता है ना। कभी कभी बहुत सी बातें जो माता पिता मना कर देते हैं, तो जब दादा दादी सपोर्ट कर देते हैं तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ कम से कम ये तो है कि जो हमें सपोर्ट करते हैं। और उसी तर्ज पर हम बहुत से ख्याल, बहुत से सपने संजो लेते हैं। लेकिन आपको अपने ये वादे, ये जितने भी सपने हैं, कोशिश करनी चाहिए कि ना सही तो 10% ही हम उसका कुछ कर पाएं। अगर हम कुछ बढ़ा ना कर पाएं तो कम से कम उनके दिल को चोट ना पहुंचाएं। क्योंकि जिस तरह से बचपन मासूम होता है, थोड़ा सा जिद्दी होता है, थोड़ा सा परेशान कर देता है ना एक बच्चे को संभालना, उसी तरह से जब ये उम्र आती है, जिंदगी की ये पड़ाव जब आता है, तो ये भी थोड़ा सा संभालने में मुश्किल होता है, उनको समझना मुश्किल होता है, उनको समझाना मुश्किल होता है। तो हमें थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि सुन लें, अगर हम समझा सकते हैं तो समझा दें, नहीं तो कभी कभी शांत रह जाना ही उनके लिए सबसे बड़ा सुकून होता है। क्योंकि जब भी आपको घर में कोई मुसीबत नजर आएगी या कोई प्रॉब्लम नजर आएगी ना, और आपको सॉल्यूशन नहीं मिलाएगा, तब आप उन्हीं के पास जाएंगे। वो कहते हैं ना कि मेरी 100 बीमारियों का इलाज तू है, तू ही मेरा बीता कल, तू ही आज है, दिन महीने साल कम पड़ेंगे संग तेरे, जिंदगी जो पूरी मांगू तो क्या ख्याल है, तो क्या ख्याल है।

दोस्तों, जीवन धूप छांव का खेल है, लेकिन इस धूप छांव में थोड़ा सा सुकून हमारे वो लोग होते हैं जो हमारे दिल के करीब होते हैं, हमारी कदर जानते हैं। तो बस सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए कुछ ऐसे ही जज्बात और एहसास। प्रोग्राम सदाबहार गीत में आकांक्षा आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर।

पास होती है, लेकिन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके पास बैठकर कंधे पर सर रखकर एक अदब से हम सारे एहसास, शिकवे, ख्वाब कह सकते हैं। और असल मायने में हमारे लिए सुकून की असली डेफिनेशन वही होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि अकेले आप बैठेंगे, कई उलझने आप पालेंगे, कई बातें आप मन में रखेंगे, लेकिन कुछ रिश्ते अगर आपके पास ऐसे होते हैं ना, तो उनसे आप दर्द बांट सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, और शायद वो आपके जीवन की, आपके दिन की सारी थकान उतार दें। और वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपका माँ, आपकी माँ, भाई, दोस्त, जीवन साथी या कोई और। तभी तो कहते हैं कि दर्द देती है ये दुनिया, तुम मेरा सुकून बन जाना, कह पाऊँ जिससे मैं अपना दर्द, तुम वो हम दर्द बन जाना। चले जाते हैं सभी कुछ वक्त बाद अकेला छोड़कर, तुम मेरी जिंदगी में जिंदगी भर के लिए ठहर जाना।

जी हाँ, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के पहले में ही बताया था कि आज विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार दिवस है, जिसकी जागरूकता दिवस है, जिसकी कहते हैं ना कि अपने आसपास अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है, घर में ही है या कहीं बाहर है, तो आप कोशिश करें कि अगर उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या फिर कोई घर में ही ऐसा हो रहा है तो आप उसका विरोध करें। और कहीं ना कहीं ये विरोध, ये बातें खुद से शुरू होती हैं। आपको भी बोलना ज़रूरी है, अगर कोई ऐसा वरिष्ठ जन मुझे सुन रहा है तो अगर आपको लगता है कि कोई आपसे पहले, जो पहला कदम होता है कि आपसे पहले से ही कोई ऐसे बर्ताव कर रहा है कि आगे वो बहुत मुश्किल होने वाला है, तो उसको पहले ही रोक दें। क्योंकि लाइफ में ना लिमिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बियॉन्ड द लिमिट्स, चाहे एहसास हो, सब्र हो, या कोई आपकी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हो, आपकी इस भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा हो, जब वो बियॉन्ड द लिमिट्स जाती हैं तब रियलाइज हमें होता है कि हमें कहीं ना कहीं एक सीमा तय करनी चाहिए। और सीमा इस बात की भी तय करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा अपनी भावनाओं का, फीलिंग्स का इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह ना करें जहाँ पर उसकी कदर ना हो, ऐसी जगह अपनी बातों को ना रखें जहाँ पर हमें पता है कि उन्हें हमारी राय, सलाह, सुझाव की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्पेस, थोड़ी सी प्राइवेसी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी को भी आसान कर दे और आपके साथ जितने भी जुड़े रिश्ते हैं उनके भी जीवन को आसान कर दे। 7:55 और बड़ी ही खूबसूरती के साथ ये वक्त आपके साथ गुजर जाता है। बहुत ही प्यारी बातों के साथ गुनगुनाए आपने प्यारे गीत, सदाबहार गीत। तो बस आकांक्षा चाहेगी अनुमति आपसे इस प्रोग्राम से। मिलेंगे हम आगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में एक दोस्त के साथ, कहीं मचाएगा, 8:15 पे आपसे हम जुड़ेंगे। और जी हाँ, रोज के मुताबिक 8:00 आप सुन सकेंगे हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। तो बस बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दो?
0: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी

0: वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास

0: सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है

0: आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्य उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की बेहतरीन शुरुआत। सकारात्मक विचार इन मॉर्निंग मंत्रा, जो आपको बनाए ऊर्जावान।
1: इतिहास के पन्नों से दिन विशेष की पूरी जानकारी,
0: जो बढ़ाए आपका ज्ञान। जन्मदिन, जयंती या मुद्दे पर आपकी बात,
1: म्यूजिकल एंटरटेनमेंट और आपके ईमेल्स का साथ,
0: मौसम की बात हो या हो ट्रैफिक का हाल,
2: सांस्कृतिक गतिविधियाँ और सेहत का ख्याल,
0: अखबारों की सुर्खियाँ और देश दुनिया के समाचार,
1: रोजमर्रा की समस्याएं और उनके समाधान। द कंप्लीट ब्रेकफास्ट शो,
0: गुड मॉर्निंग लखनऊ, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: शहर आपका, धुन आपकी।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ में। फिर से इसलिए बोला क्योंकि आकांक्षा सुबह से आपके साथ है, मैं आपके साथ थी, लेकिन वादे के मुताबिक मैंने बताया था कि हाँ, एक दोस्त हो गए हमारे साथ, तो जानते हैं कि कौन है आज हमारे साथ।
1: मैं हूँ आपकी दोस्त आयुषी। आपके साथ करेंगे आज मैं और आकांक्षा ढेर सारी बातें, बहुत प्यारे प्यारे गाने सुनेंगे, बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन भी जानेंगे।
0: बिल्कुल, और आज है खास दिन, जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था, उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, और रहता है ये एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। तो बने रहिए हमारे साथ यहीं पर ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 8:23 और आपके दिन को खूबसूरत बनाने के लिए, पॉजिटिव थॉट्स से भरने के लिए आज का मॉर्निंग मंत्रा क्या कहता है आयुषी?
1: देखिए, मॉर्निंग मंत्रा जो हम लेकर आए हैं आज वो है लियो बुस्कालिया का, जिन्होंने कहा, टू ऑफन वी अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ टच, अ स्माइल, अ काइंड वर्ड, अ लिसनिंग ईयर। यानी अक्सर हम भूल जाते हैं कि हमारे छोटे छोटे व्यवहार, जैसे एक प्यारी सी मुस्कुराहट, किसी से प्यार से मिलना, प्यार से बात करना, किसी की बात ध्यान से सुनना, उन्हें इज्जत देना, किसी के जीवन पूरे दिन पर गहरा असर छोड़ जाते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल। और जब आपसे कोई उम्मीद ना करे ना कि आप उनसे इतने अच्छे से बात करेंगे और इतने अदब से बात करेंगे, सम्मान देंगे, तो वाकई आयुषी उन लोगों का दिन बन जाता है। तो कोशिश करिए अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को निखारने के लिए आज के इस खूबसूरत से मॉर्निंग मंत्रा के साथ।

0: जी 8:29 और एक खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। आयुषी और आकांक्षा है आपके साथ। आज एक इस ए स्क्वायर हो रहा है आयुषी।
1: बिल्कुल।

0: जी 8:29 और एक खूबसूरत शुरुआत हो चुकी है। आयुषी और आकांक्षा है आपके साथ। आज एक ए स्क्वायर हो रहा है आयुषी।
1: बिल्कुल।
0: और जब आयुषी ऐसा होता है ना कि हम खुश रहते हैं, खिलखिलाते हैं कि जब हमारे साथ बड़ों का आशीर्वाद होता है। कई दिन हमारे खूबसूरत बन जाते हैं जब हम घर से निकलते वक्त अपने बड़ों के आशीर्वाद को लेकर निकलते हैं, उनकी दुआओं को लेकर निकलते हैं। और वाकई जैसे कि जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, भले वो बहुत ज़्यादा हमें घर में एक्टिव ना दिखें जिस तरह से हमारे माता पिता होते हैं या फिर और जो घर में बुजुर्ग हैं, लेकिन घर का एक हिस्सा या फिर घर की रौनक कहीं ना कहीं वो ज़रूर होते हैं।
1: और वो मुझे लगता है कि कुछ छोटी छोटी आदतें जो होती हैं आकांक्षा, जैसे मुझे याद है कि हमने अपने बुजुर्गों को रेडियो सुनते देखा है हमेशा, है ना, और कुछ सिलाई, कुछ कढ़ाई, कुछ बुनाई, और वो दादी नानी की जो फेमस कहानियां होती है और वो उनकी छोटी छोटी आदतें, मुझे लगता है कि वो हर चीज में एक ऐसी, जो आप कह रही है, रंग बिखर जाता था माहौल में, रौनक, कुछ कुछ हलचल।
0: बिल्कुल।
1: तो अच्छा, आपकी क्या याद है बचपन को लेकर? अगर मैं बात करूं कि जनरली दादी नानी के घर छुट्टियों का समय भी है, बच्चे बहुत सारे अपनी दादी नानियों के घर, आपकी क्या याद है उस समय को लेकर?
0: आयुषी, मेरी तो बहुत ढेर सारी यादें हैं, और लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि एक बार क्या था कि मेरा कुछ काम था और मुझे वो डेट याद नहीं थी। मैं सुबह उठी और आराम से बैठी थी, तभी मुझे मेरे घर में जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि अरे आराम से बैठी हो, आज तुम्हें जाना नहीं है, आज तो तुम्हारा ये काम था। और वाकई मेरे को ऐसे धक्का लगा कि हाँ रे हाँ यार, मतलब सोचिए जिस उम्र में उनको कम याद होना चाहिए, उनको नहीं याद होना चाहिए, उनको याद था उन, क्योंकि मैंने एक बार उनसे जिक्र किया था कि मेरा ये काम है, खास दिन है मेरा, और उलझनों में इतना परेशान हो गई कि उस दिन को ही भूल गई। तो मुझे आज भी वो दिन याद आता है कि कितना ज़रूरी होता है कुछ ऐसे लोगों का हमारे इर्द गिर्द होना जो वाकई घर की रौनक होते हैं।
1: अच्छा, एक और चीज़ है आकांक्षा कि कभी कभी ना इतनी भागदौड़ की जिंदगी में या आम जिंदगी में हमें इतनी सारी समस्याओं से, इतनी सारी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, कभी कभी उसका सलूशन जब कहीं नहीं मिलता तो हमारे बुजुर्गों के पास होता है।
0: बिल्कुल, ये सॉल्यूशन बुजुर्गों के पास होता है, घर में जो वृद्धजन होते हैं उनके पास होता है। क्योंकि आज आयुषी हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं, जैसे कि मैंने सदाबहार गीत में भी मेंशन किया था कि ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें होती हैं अगर आपके साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनकी सलाह है, तो आप बहुत बहुत ज़्यादा लकी हैं। और आज 15 जून हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: बिल्कुल, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे आज 15 जून को हम मना रहे हैं। और भाई, जैसे कि हम बात करें कि एक जागरूकता दिवस है और इसका एम ही यही है कि जो हमारे इर्द गिर्द जितने बुजुर्ग हैं, हमारे देश के बुजुर्ग हैं, उनके साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण के प्रति हम लोगों को जागरूक करें।
0: तो आयुषी, आज के मुद्दे को भी कुछ ऐसे ही हम रिलेट कर लें। तो आज का मुद्दा है,
2: मुद्दा आज का।
0: बिल्कुल, आज का मुद्दा भी कुछ ऐसे ही आपसे जुड़ा हुआ, आज के दिन से जुड़ा हुआ। आपके हिसाब से बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर देखभाल के लिए कौन कौन सी चीजें, कोशिशें करनी चाहिए, आप हमें बताइए।
1: FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। और याद दिला दे कि जब आप ईमेल टाइप करेंगे तो वी आकाशवाणी में वी होगा, डब्ल्यू नहीं। सो FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर हमें आपके मेल्स का इंतजार है, जहां दोबारा से मैं एक बार मुद्दा रिपीट कर देती हूं कि आपके हिसाब से बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर देखभाल के लिए कौन से प्रयास होने चाहिए, कौन सी कोशिशें होनी चाहिए।

0: जी हाँ, इस जीवन में उम्र का हर पड़ाव खूबसूरत है, जिसमें हमें बचपन सबसे सुंदर लगता है। आपको पता है कि ये बचपन जीवन में दो बार आता है, जो परवाह, प्यार, अपनापन। आपको बचपन में चाहिए होता है, कुछ वैसा ही प्यार, अपनापन, अपनत्व हमें हमारी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर भी चाहिए होता है। ये चीज़ें हमें याद रहें, हम अपने आसपास के जो भी वरिष्ठ जन हैं उनका ख्याल रखें, और इसी के लिए आज का ये दिन चुना गया, जो कि है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। इस दिन को और भी सुंदर बनाने के लिए, लोगों को और भी जागरूक करने के लिए, जी हाँ, एक हेल्पेज इंडिया के माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए इस खूबसूरत से कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं मिस्टर अनूप पंत जी से, जो कि हेड ऑफ हेल्पेज इंडिया के से हैं। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जैसा कि अभी आपने बोला कि भाई आज हम लोग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मना रहे हैं
0: जी,
1: तो ये आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक तरीके का सिंबोलिज्म है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं और इन मुद्दों को उठाते हैं। तो इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हेल्पेज इंडिया हर साल 15 जून के दिन एक अध्ययन करता है, और उस अध्ययन के माध्यम से

0: जो वृद्धजन है, जो वरिष्ठ जन है, उनकी समस्याएं लोगों के सामने का सामने रखने का प्रयास करता है। और इस वर्ष का जो हमारा विषय है, वो हम लोगों ने जो विषय चुना था इस वर्ष, वो अति महत्वपूर्ण है कि अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है पूरे विश्व भर के लिए। और हेल्पेज इंडिया ने इस वर्ष जो ये क्लाइमेट चेंज है और बुजुर्ग में आपस में क्या पारस्परिक संबंध है, कैसे है ये जलवायु परिवर्तन वृद्धजनों को वरिष्ठजनों को इम्पैक्ट कर रहा है, इस बारे में ये अध्ययन इस साल किया गया है। और इसकी रिपोर्ट हम आज कार्यक्रम में जो 9:30 से 12:30 बजे लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा कमल मुखर्जी हॉल में समाज कार्य विभाग के साथ हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं।
1: जी सर, जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में अगर हम थोड़ी और जानकारी लेना चाहें, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आप जो हमारे देश का यूथ है, जो युवा वर्ग है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से?
0: देखिए, जब हम वरिष्ठजनों की बात करते हैं तो यूथ एक ऐसा पहलू है जो बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि हमारी आज की पीढ़ी को यह समझना होगा कि वरिष्ठजन या बुजुर्ग सिर्फ हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है
1: जी,
0: बल्कि हमारी संस्कृति और अनुभव का खजाना है।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम लोग ये अपने मन में विचार करेंगे, सोचेंगे कि हम अपने वृद्धजनों से, उनके अनुभवों से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। और दूसरा एक पहलू और दृष्टिकोण ये भी है कि जैसा प्रदर्शन हम आज करते हैं, वैसा ही प्रदर्शन हमारे साथ आने वाले समय में हमारी पीढ़ी हमारे साथ करेगी। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। काफी समय पहले की बात है, मैं एक व्यक्तिगत रूप से कार्यक्रम में गया था, वहां पे एक सज्जन आए और वो सज्जन थोड़े से निराश से दिख रहे थे। उन सज्जन ने मुझसे कहा कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, आज मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि पापा जब हम बड़े हो जाएंगे हम भी आपसे होली और दिवाली में मिलने आएंगे। तो ये सुन के मैं स्तब्ध हो गया। और ये विचार करने योग्य बातें हैं कि जैसा प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं, हम जैसा अपनी आने वाली पीढ़ी को दिखा रहे हैं, वैसा ही वो व्यवहार हमारे साथ करेंगे। तो यहाँ पे इस उदाहरण का संदर्भ मैंने इसलिए लिया क्योंकि कई बार आपका प्रदर्शन भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो आपकी आने वाली पीढ़ी को कहीं सीख देगा।
2: बिल्कुल सर। और सर, जैसे कि हेल्पेज इंडिया है जो बहुत सालों से कार्य कर रही है इस पर और सहायता भी अपने स्तर से करती है लोगों की, तो आप अगर कोई आपके पास कोई ऐसी समस्या लेकर आता है कोई वरिष्ठ जन, तो आप किस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं?
0: देखिए, अगर आप हेल्पेज इंडिया के दृष्टिकोण से बात करें तो हम अपने कार्यक्रम अलग अलग तरीके से चलाते हैं
2: जी।
0: तो पहले तो एक समांतर एक अवेयरनेस जनरेशन के अलग अलग कार्यक्रम हम करते हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को संवेदित करते हैं। तो अगर आज की तारीख में अगर आप एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिजिटल फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचें, दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं हैं उनसे, उन चुनौतियों का हम कैसे समाधान करें, कुछ स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सेवाएं हैं वो हम हेल्पेज इंडिया के माध्यम से चलाते हैं। तो ये तो कार्यक्रम वर हैं जो अलग अलग स्थानों में हमारे कार्यक्रम चलते हैं
2: जी।
0: इसके साथ साथ हम लोगों का एक नेटवर्क है वॉलंटियर का, हमारे पास कभी कभी शिकायतें आती हैं नेग्लेक्ट की, उपेक्षा की, तो वहाँ पे हम एक तरीके से जो भी हमको फोन करता है हम उसको परामर्श देते हैं, कोशिश करते हैं कि कहाँ से उसकी समस्या का समाधान होगा, उसको जोड़ सके। एक ये तो होगी कार्यक्रमों की बात। एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम इस संदर्भ में बात करते हैं। एक तो वो ग्रुप है जो समस्याएं लेके आता है, एक वो ग्रुप है जो कभी ना कभी समाज के डर से हिचकता है, वो सोचता है कि अगर मैं इन सारी समस्याओं के बारे में आगे आके बातचीत करूंगा तो मेरे आसपास रहने वाले लोग क्या कहेंगे। तो हम लोग जब अपने कार्यक्रमों में अनेक वृद्धजनों से बात करते हैं, उनका एक तरीका हमारा ये भी है, हम लोग काफी सारी वृद्धजनों की समितियों तक पहुंचते हैं, उनके माध्यम से लोगों को संवेदित करने की बात करते हैं और कहते हैं कि भाई जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। फिर अगर आप मुख्यतः अगर आप देखें तो अलग अलग हेल्पलाइन है, हेल्पेज इंडिया भी एक हेल्पलाइन चलाता है जिसका नंबर है 1-8-1-8-0-1-2-5-3। हम कहते हैं कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ समाज कल्याण विभाग भी एक हेल्पलाइन नंबर चलाता है जिसका नंबर है 1-4-5-6-7। तो इस हेल्पलाइन नंबर पे भी फोन करके अलग अलग विषयों के बारे में

0: जानकारी ली जा सकती है, वहाँ पे वृद्धजन अपनी समस्याओं को के बारे में बता सकते हैं और वहाँ पे किस तरीके से समस्या का समाधान हो तो उस दिशा में कार्य किया जाता है।
1: तो सर, जिस तरह से आपने अभी मेंशन किया कि कुछ समस्याएं, कुछ समाधान, जैसे आपने निग्लेक्ट की बात की, अगर हम थोड़ा सा इस पर और लाइट डालें तो ये कौन सी कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं और आपको क्या लगता है कि इन समस्याओं का पर्टिकुलरली क्या समाधान निकल सकता है?
0: देखिए, ये अगर मुख्यतः अगर हम लोग विषय के बारे में बात करें तो प्रमुख जो विषय कभी कभी हमारे पास आते हैं वो आते हैं, लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे घर में कोई नहीं है, हम किस प्रकार अपना समय काटते हैं। तो ये एक आइसोलेशन, एकाकीपन
1: जी
0: की जो समस्या है वो एक प्रमुख समस्या के रूप में है, जहाँ पे लोग फोन करते हैं, कई बार केवल बातचीत करने के लिए भी फोन करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: फिर कभी कभी क्या होता है कि भाई वृद्धजनों को लगता है कि आर्थिक शोषण से संबंधित भी समस्याएं आती हैं, कि भाई उनका जो फाइनेंशियल है, जो जो वित्तीय अधिकार है, उसके परिवार के और सदस्यों का नियंत्रण है, वो अपने पैसे का ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की भी समस्या आती। और कभी कभी बहुत सारी समस्याएं संपत्ति विवाद से भी संबंधित आती है, जहाँ पे बहुत उम्र हो गई है, कोई है नहीं, बच्चे या और रिश्तेदार परेशान कर रहे हैं, पर इसके साथ साथ कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित भी हमारे पास समस्याएं आती हैं, जिसमें लोग पूछते हैं कि भाई इस तरीके की समस्याओं का हम कहाँ निराकरण कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं। और जब हमारे पास इस तरीके की कॉल आती है तो हम लोग सुनते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको कहाँ से समस्या का समाधान होगा उससे जोड़ पाए। तो ये प्रमुख समस्याएं हैं जो आती हैं।
2: जी सर, सर जहाँ पर समस्याओं की बात हो रही है तो एक आशा की किरण, एक पॉजिटिव चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी आपसे कि आज का यूथ जो है, आज की जो जनरेशन है जो बहुत तकनीक से जुड़ी हुई है, आप इतने लोगों से मिलते होंगे, युवाओं से भी मिलते होंगे, तो आपको क्या लगता है कि आज का यूथ इस मुद्दे पर कितना संवेदनशील है?
0: तो जैसे ये जो ये विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब हम बात करते हैं युवाओं में जागरूकता के संदर्भ में, तो मानिए आज जागरूकता का स्तर काफी बड़ा है। और उदाहरण के रूप में कभी कभी हमारे पास अलग अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हैं या अलग अलग वॉलंटियर आते हैं, और हम जो आसपास वृद्ध आश्रम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनकी वहां विजिट कराते हैं। और जब लोग ये बच्चे जब वृद्ध आश्रम में जाके देखते हैं, स्थितियों को देखते हैं, उनसे उनकी सोचने के तरीके पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं जब युवा पीढ़ी से बात करता हूँ और जब उनको इस तरीके के अनुभव मिलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं। और यकीन मानिए कि जागरूकता काफी बड़ी है।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन मेरा ये मानना है कि इस जागरूकता के साथ साथ सही दिशा में वृद्धजनों के लिए किस प्रकार हम सहयोग कर सकते हैं, उस गुणात्मक शिक्षा के बारे में भी हम लोगों को यूथ से बात करनी पड़ेगी। और जैसे मैंने शुरू में आपको एक उदाहरण दिया था कि भाई ये तो एक चक्र है कि जैसा हम व्यवहार आज करेंगे वैसा व्यवहार हमारे साथ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इस तरीके से भी जब हम लोग बातचीत करते हैं तो लोगों के युवाओं के समझ में आता है और वो लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से भी इस विषय के बारे में सोचते हैं, और मुझे लगता है कि प्रभाव पड़ रहा है और युवा संवेदित हो रहे हैं।
2: बिल्कुल सर, और एक बार चाहूंगी कि हमारे लिसनर्स को एक बार फिर से आज के कार्यक्रम के बारे में बता दें, क्या समय है, कौन कौन इससे जुड़ सकता है, कहाँ पर ये हो रहा है?
0: जी। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग हर साल आज के दिन विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के दिन कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम सरकार से, एकेडमिक से और जो वृद्धजन है उनको आमंत्रित करते हैं और हर साल एक रिपोर्ट निकालते हैं वृद्धजनों की समस्या में। तो जो आज का कार्यक्रम है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, इसका आयोजन हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में समाज कार्य विभाग के साथ मिल के समाज कार्य में एक सभागार है राजा कमल मुखर्जी हॉल, उसमें इसका आयोजन कर रहे हैं। मुख्यतः आयोजन 10 से 12:30 बजे तक होगा। और जो विषय है हमारा इस वर्ष का, जैसे मैंने आपको बताया कि जलवायु अनुकूलन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो उससे क्या क्या समस्याएं हैं जो वरिष्ठों के लिए होती है। तो उदाहरण के लिए बस मैं एक उदाहरण यहाँ पे बोलता हूँ कि अगर हम लोग आज की स्थिति में देखें तो कुछ कुछ जो धीमी गति से आने वाले जलवायु खतरे हैं, जैसे अगर आप उदाहरण लें तीव्र लू या हीट वेव्स, सूखा और जल

0: तक, बाढ़ और तटीय कटाव, तो ये अलग अलग है जिनका इम्पैक्ट तुरंत तो नहीं दिखता है, लेकिन लंबे समय में ये बुजुर्गों को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। तो इन सब मुद्दों से हम लोग कैसे निपटे, इसी पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। जी,
1: थैंक यू सो मच सर, इतनी प्रमुख जानकारी देने के लिए, और आपके कार्यक्रम की आपको अग्रिम शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, और मैं आपके आपके माध्यम से जो भी श्रोतागण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि अगर समय मिले तो लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य के सभागार में आए और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने।
1: बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर।
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, अभी हमारे साथ थे मिस्टर अनूप पंजी, स्टेट हेड हेल्पेज इंडिया से, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के बारे में बताया जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय राधा कमल मुखर्जी हॉल में आयोजित होगा। तो आपको अगर समय हो और आप ऐसे कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप वहां पर जा सकते हैं। समय भी बताया गया है, सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं।
2: बिल्कुल, और जब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है अच्छी, तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको प्यार प्यारे गाने भी सुना दें, और आप बने रहिए 100.7 FM पर आयुषी और आकांक्षा के साथ।

0: जी 8:54 और आपके मेल्स का सिलसिला। जी हाँ, आज जैसा कि वरिष्ठ दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस है, तो इसके बारे में भी आपको अभी जानकारी दी, और उसी से रिलेटेड जैसे ही हमने अपने आयुषी स्क्रीन खोली ना, तो देखिए ढेर सारे मेल्स और ढेर सारे मैसेजेस हमारे पास से हैं। लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी लिखे, मुद्दे भी बात भी लिखी है, लेकिन बिल्कुल हम आपकी ये मेल्स शामिल करेंगे। राम राज जी, गुड मॉर्निंग। सुधांशु, आपको भी गुड मॉर्निंग प्रोग्राम। आपने पुष्पांजलि और सदाबहार गीत के बारे में लिखा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। विनीत कुमार जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। पुष्पांजलि बहुत अच्छा लगा, सदाबहार गीत भी बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये सुबह के सारे मेल्स हैं जो हम अभी आपको यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के मेल्स के लिए, और प्रोग्राम अच्छा लगा इसकी कोशिश हम हमेशा करते रहेंगे।
1: और देखिए ऐसा है कि आप सबका जो ये प्यार मिलता रहता है, यानी हम अगर आपसे कुछ बात जानना चाहें, आपकी ओपिनियन जानना चाहें, आपके विचार जानना चाहें, और हम जब आपको कोई मुद्दा देते हैं और आप उस पर इतना प्यार बरसाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हालांकि इस फर्स्ट हाफ को वाइंड अप करने से पहले मुझे लगता है एक मेल से शुरुआत कर देते हैं ताकि ऐसा ना लगे आपको कि हम आपको भूल गए। देखिए वारिस अली खान जी का मेल ले रही हूँ मैं, कह रहे आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त आकांक्षा को खान परिवार का प्यार भरा सलाम। तो आपके लिए स्पेशल भाई पुष्पांजलि की भी तारीफ आई है और भावभीनी तारीफ आई है,
0: क्या बात है, सदाबहार
1: की भी तारीफ आई है और आवाज की भी तारीफ आई है, क्या बात है। एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। और वारिस अली खान जी, हमें लगा मुद्दे पे भी आपसे सुनने को मिलेगा क्योंकि आपके विचार अच्छे लगते हैं हमें, पर कोई बात नहीं, इसके साथ ही एक और मेल ले लेते हैं और उसके बाद एक गाना सुना देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए भाई, शकील अहमद जी का मेल हम देख रहे हैं और कस्बा जायज जिला रायबरेली से। और भाई फिर से आकांक्षा, आपकी बहुत सारी तारीफ, गानों की तारीफ, और घर में इनके कुछ हादसा हो गया है और ये बताना चाह रहे हैं कि इनके घर पे इनके पिताजी की जब देहांत हुआ उसके बाद माँ का साथ भी रहा, पर अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे इसलिए माँ का सबसे ज़्यादा प्यार उन्हें मिलता था, और अगर किसी काम से डॉक्टर के पास जाना होता था तो मेरे साथ ही जाती थी। तो 2019 से अब उनका साथ भी नहीं रहा, लेकिन सेवा करने का मौका मिला और इन्हें ये बात मेंशन की, बहुत अच्छा लगा हमें जानकर।
0: बिल्कुल, 8:56 हो चुका है आयशी, तो क्यों ना अब करते हैं पहले घंटे को वाइंड अप, और बहुत ढेर सारी बातों के साथ आपकी मेल्स के साथ हम मिलेंगे अगले घंटे, यानी कि 9:00 न्यूज़ ब्रेक के बाद। पहले एक ट्रैक, फिर आप बनी रहिए ओनली 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू होने की खबर को हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स और अमर उजाला ने सर्व प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबारों ने लिखा है कि पहली फ्लाइट लखनऊ से नोएडा पहुंचेगी, जिसे वाटर सल्यूट दिया जाएगा। वहीं नोएडा से लखनऊ पहुंचने वाली फ्लाइट से 172 किसान आएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू बेंगलुरु की उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के औपचारिक रूप से टूटने की खबर को दैनिक जागरण ने अपनी लीड स्टोरी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि टीएमसी के 28 लोकसभा सांसदों में से 20 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सदन में अलग गुट के तौर पर बैठने की व्यवस्था किए जाने का आग्रह किया है। वहीं इन सांसदों ने खुद को त्रिपुरा के एक अनजान दल नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल होने की घोषणा की। राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय एसआईटी के आज अयोध्या पहुंचने को अमर उजाला ने अपनी पहली खबर बनाया है। अखबार ने लिखा है कि राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के मामले में केंद्र भी सक्रिय हो गया है। रविवार को पीएमओ की तरफ से एक बड़े अफसर के मंदिर पहुंचने की चर्चा है। यह अपने स्तर पर जांच के बाद जानकारी जुटाकर पीएमओ को देंगे, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। ईरान अमेरिका समझौते के मसौदे से जुड़ी खबर भी आज अखबारों की सुर्खियां हैं। ना तो परमाणु बम बनाएगा, ना खरीदेगा ईरान, शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते के मसौदे पर परमाणु कार्यक्रम, तेल प्रतिबंधों में राहत, फ्रीज संपत्तियों की रिहाई और होमवर्क से जुड़े मुद्दों पर सहमति बनने की खबर भी है। एजेंसी के अनुसार ईरान ने परमाणु कार्यक्रम पर यथास्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई हुई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में आग की अफवाह से ट्रेन से कूदे 4 यात्रियों की दूसरी ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की खबर को अमर उजाला, हिंदुस्तान और अमृत विचार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबारों ने लिखा है कि जान गंवाने वालों में 4 वर्ष का मासूम और 3 महिलाएं शामिल हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम द्वारा कल ICC महिला T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में करते हुए चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 64 रन से पराजित किए जाने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की मुलाकात होने, भारी बारिश, तूफान या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में मोबाइल फोन पर बजने वाली इमरजेंसी अलर्ट को सरकार द्वारा कुछ समय के लिए रोके जाने और लखनऊ स्थित KGMU में कल सुबह पानी के अंडरग्राउंड टैंक में सफाई के दौरान करंट लगने से संविदाकर्मी की मौत होने की खबर भी आज अखबारों के पहले पन्ने पर प्रकाशित हुई है। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियां समाप्त हुई। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: शहर आपका, धुन आपकी।

9 बज के 5 मिनट और आपके दो दोस्त आपके साथ है, आकांक्षा और आयुषी के साथ सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग लखनऊ। और भाई देखिए, हम बात कर रहे हैं आज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जैसे कि हमने पहले भी बताया आपको कि आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है, और ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपसे साझा करेंगे इस घंटे भी। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो सेट्स पर।

0: जी हाँ, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ और आकांक्षा और आयुषी हैं आपके साथ. और अब हम आपके करेंगे आपकी बात, क्योंकि हाय भाई मेल्स आयुषी, अगर इससे ज्यादा हमने नहीं पढ़े ना तो आखिरी में हमारे पास वक्त नहीं बचेगा कि हम आपके मेल्स को शामिल कर पाए.
1: नहीं, मेल्स पढ़ना जरूरी है क्योंकि आज का मुद्दा भी ऐसा है जिस पर हम आपके विचार जानना चाहते भी हैं. और देखिए, पहला जो मेल टिमटिमा रहा है हमारी स्क्रीन पर, मैं पढ़ने जा रही हूँ. मोनू सेठ खालिसपुर उजगांव बेल अमेठी से लिखा है उन्होंने, कविता लिखी है. घर की नींव हमारे बुजुर्ग लिख रहे हैं, झुरियों से भरे हाथ हैं मगर दुआओं का है समंदर, हमारे घर के बुजुर्ग ही हमारे जीवन के असली सिकंदर.
0: क्या बात है.
1: किताबों में नहीं मिलता जो वो ज्ञान इनके पास होता है, जब संकट कोई आता है तो इनका साया खास होता है, धूप में जलकर इन्होंने ठंडी छाव दी है, भटक ना जाए हम राहों में ऐसी मजबूत नींव दी है. बहुत प्यारी कविता लिखी है और कह रहे हैं कुछ घरों में अभी बुजुर्गों का सम्मान और प्यार बखूबी मिटा है क्योंकि उनके बिना हम कोई भी कार्य करें तो विफल हो जाता है, लेकिन जब उनके सलाह से करते हैं कार्य निखर जाते हैं. लेकिन कुछ घरों में बुजुर्गों की हालत बड़ी दयनीय है और निंदनीय है और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है. घर में सम्मान की बात अलग है, उनसे अकड़ कर बात की जाती है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए. बहुत अच्छी बात लिखी है, थैंक यू सो मच.
0: बिल्कुल. और आज का मुद्दा भी हम आपसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि आपको क्या लगता है कि ऐसे अगर जो दुर्व्यवहार होते हैं या बुजुर्गों के साथ या वरिष्ठ जनों के साथ, घर में ही नहीं बाहर नहीं, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना चाहिए, लोगों को कैसे समझाना चाहिए, तो क्या योजनाएं, क्या सोच है आपके पास, सॉल्यूशन है, इसके बारे में हमसे शेयर करें fmakashwanilakhnow@gmail.com पर. और सुधांशु जी, राधे जी, राधे आपको भी कह रहे हैं कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को मैच जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही कह रहे हैं कि भाई हम इस बार विश्व कप जरूर जीतेंगे. बिल्कुल, आपकी अग्रिम शुभकामनाएं हैं और सभी यही चाहते हैं. विनीत कुमार जी, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग आपको भी, आवाज़ मीठी लग रही है, गाने भी अच्छे लग रहे हैं. घनश्याम सिंह जी, गुड मॉर्निंग आपको भी, प्रोग्राम्स अच्छे लग रहे हैं. पुष्पांजलि और सदाबहार गीत के लिए भी लिखा है इन्होंने. इसी के साथ हमारे पास रुशाली सिंह का मेल आया है और ये अलीगंज से हमें मेल कर रही हैं. कह रही हैं कि सभी को गुड मॉर्निंग, पूरे देश को इन्होंने गुड मॉर्निंग बोला है.
1: क्या बात है, बहुत ही ज्यादा गुड मॉर्निंग, क्योंकि शो का नाम भी गुड मॉर्निंग है. और घमोया हरदोई से मेरे पास अगला मेल आया है अरुण कुमार कुशवाहा जी का और हम दोनों को प्यार भरा नमस्कार कहा है आकांक्षा. और भाई, आपकी आवाज सुबह से सुन रहे हैं और प्यारी सी आवाज है आपकी, कह रहे हैं, और उपयोगी बातें हो रही है यहाँ पर, इसके लिए धन्यवाद दे रहे. कह रहे हमारे बुजुर्ग ऐसी धरोहर है हमारे साथ रहते हुए और हमारे बाद में भी सदा उपयोगी रहते हैं, और हमें अपने बुजुर्गों की देखभाल के साथ साथ उनको पूरा समय भी देना चाहिए ताकि वो इस उम्र में उपेक्षित महसूस ना करें.
0: बिल्कुल आयुषी, और हमें घर में कोशिश करनी चाहिए कि एक होता है ना, एक वाइब बनाकर रखें, क्योंकि हर शख्स हमारे घर के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इन चीजों को

0: में रखे। आज जैसा कि हम विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मना रहे हैं, जिस पर बहुत ढेर सारी आपको जानकारियां भी दी गई, बहुत सी बातें भी की गई, और साथ ही साथ हम आपकी भी राय मांग रहे हैं कि आज की जनरेशन जो भागती दौड़ती जनरेशन है, जिसके पास वक्त नहीं है, वो कैसे सामंजस्य बनाए उन, क्योंकि पहले के लोग आयुष्य आहिस्ता आहिस्ता सारे काम करते थे। अभी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई वरिष्ठ जन है, तो आप देखेंगे आप उससे हलबली में कोई बात बताएंगे, बहुत जल्दी जल्दी कोई कुछ काम करने को कहेंगे, तो वो यही कहेंगे कि आहिस्ता से बैठो, आराम से बताओ, और सॉल्यूशन भी बड़े आराम से देंगे।
1: बिल्कुल सही बात है, और उस पे दो चार बहुत अच्छे अच्छी कहानियां, बड़े अच्छे किस्से और दो चार ऐसे फ्रेजेस जिसे हम मुहावरे कहते हैं, वो भी मुझे लगता है कि उन्हीं से वो टच बना हुआ है, उन्हीं से भाषा की भी खूबसूरती बनी हुई है, ख्यालों की भी खूबसूरती बनी हुई है।
0: बिल्कुल, तो आज आपसे हम यही पूछते हैं कि अपने घर में बुजुर्ग या आपके आसपास कोई ऐसा वरिष्ठ जन है, तो आप उसका ख्याल कैसे रखें, उसकी सम्मान के लिए प्रति कैसे लोगों को जागरूक करें, इसके बारे में हमें शेयर करें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ

0: जी जब आपके लिए अपडेट इकट्ठी करनी होती है ना तो थोड़ा सा वक्त लग जाता है, उसी काम के लिए हम तत्पर हैं कि भाई वक्त हो रहा है आपके ऑफिस टाइम, क्योंकि भाई संडे तो बीत गया, आज है मंडे, तो बहुत ज़ोर शोरों से आप तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें रख रहे होंगे, तो उनको आसान करने के लिए, आपके रास्तों को आसान करने के लिए आइए चलते हैं TSI विकास सिंह जी के पास और जानते हैं कि क्या है आज की ट्रैफिक का हाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
1: वेरी गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग लखनऊ, सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज वर्तमान में लखनऊ शहर में यातायात सामान्य गति से गतिमान है, कहीं अतिरिक्त यातायात दबाव नहीं है। लगभग जो है 10:45 एक कार्यक्रम प्रस्तावित है IGP के पास में। इस समय जो है हम लोग 10:40 पर ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर, जो न्यू हाई कोर्ट मोड़ है, वहां से लेकर के IGP तक का यातायात प्रतिबंधित रहेगा कुछ देर के लिए। तो ऐसे में इस रोड को अवॉइड करके आप पॉलिटेक्निक चौराहे का और तथा कमता से यू टर्न करके शहीद पथ होते हुए विजयपुर अंडर पास होकर के आप आवागमन कर सकते हैं। तो इस रोड का आप प्रयोग करेंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दूसरी तरफ शाम को लगभग 6 बजे सुशान गोल्ड सिटी थाना के अंतर्गत एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान हमारा जो बेस्ट प्राइस वाला मार्ग है वहां से लेकर के थाना जो सुशांत गोल सिटी है उस तरफ जो है थोड़ा सा यातायात प्रभावित रहेगा। ऐसे में आप SCL तिराहे का मार्ग प्रयोग कर सकते हैं अपने आवागमन के लिए। तो ये दो डाइवर्जन रहेगा। थोड़ा शाम को आप लगभग 5-6 बजे के पास में अगर आप थाना सुशांत गोल सिटी की तरफ सफर करना चाह रहे थे तो आप इसको अवॉइड करके वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। बाकी और कोई विशेष डाइवर्जन नहीं है। यदि कोई डाइवर्जन होता है तो आपके माध्यम से हम श्रोताओं तक अवश्य अपडेट पहुंचाएंगे मैम।
2: थैंक यू सो मच सर, आपको इतनी सारी आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी। अगर आप कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें जैसे कि आप अक्सर देते हैं तो आप दे दें।
1: बिल्कुल मैम, हमेशा की भांति हम यही श्रोताओं से अनुरोध करेंगे कि जैसे अगर आप वाहन चला रहे हैं तो आज के समय में लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं तो उनका फोन आ जाता है, तो वाहन चलाते समय ही फोन को रिसीव कर लेते हैं। और फोन रिसीव करने का मतलब है कि आपने दुर्घटना को दावत दे दिया है। फोन जो है सड़क दुर्घटनाओं में जो मृत्यु के कारकों में है, 5 महत्वपूर्ण कारक है, उसमें से एक महत्वपूर्ण कारक है फोन का यूज करना। फोन के यूज करने से आप डिस्ट्रैक्शन के शिकार हो जाते हैं और इस तरह से सड़क दुर्घटना हो जाती है। अतः अनुरोध है कि वाहन चलाते समय आप कतई फोन, मोबाइल फोन का यूज ना करें। ये आपके और जो रोड पर चल रहे दूसरे व्यक्ति के उनके जीवन के लिए जो है खतरनाक है, कृपया इसका इस्तेमाल ना करें और यातायात नियमों का पालन करें और इंजॉय के साथ सुनते रहें 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जुड़ने के लिए हमारे साथ।
1: जी धन्यवाद।
2: तो आप दोस्तों सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर विकास सिंह जी। और देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही आकांक्षा से, मुझे याद आया कि मेरी एक सहेली मिली थी मुझे और जो बात विकास सिंह जी ने कही उसी से रिलेटेड बात है। तो उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने ऐसे ही पूछा कि हुआ क्या, तो उसने मुझसे कहा कि बस गाड़ी चलाते हुए मैंने बस एक सेकेंड के लिए टाइम देखा था अपने फोन पर। तो आप सोचिए, एक सेकेंड की बात नहीं है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, वो एक सेकेंड हो, एक मिनट हो या पलक झपकने भर की बात हो, आप अपना ध्यान गाड़ी चलाते वक्त ना भटकाएं।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: बज के 29 मिनट और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ अपने दो दोस्त आयुषी और आकांक्षा के साथ। और भाई हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें और बातों का सिलसिला जारी है। अब हम क्या बताने वाले हैं आकांक्षा?
4: बिल्कुल, हर दिन अपने आप में खास होता है, तो आज के दिन की खास बात तो आपको बताई कि जैसे पहला दिन हम बता चुके हैं कि आज है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, और एक और खास दिन है आयुषी आज।
3: वो गाना याद है आपको, क्यों चलती है पवन?
4: क्या बात है, ऐसे तो पवन की बात करी तो सन सननन बहुत से गाने याद आ जाते
3: क्यों कर रहे हम बातें, क्योंकि हम बात करने जा रहे ग्लो

0: है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बज के 29 मिनट और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ अपने दो दोस्त आयुषी और आकांक्षा के साथ। और भाई हम कर रहे हैं बहुत सारी बातें और बातों का सिलसिला जारी है। अब हम क्या बताने वाले हैं आकांक्षा?
2: बिल्कुल, हर दिन अपने आप में खास होता है, तो आज के दिन की खास बात तो आपको बताई कि जैसे पहला दिन हम बता चुके हैं कि आज है विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, और एक और खास दिन है आयुषी आज।
1: वो गाना याद है आपको, क्यों चलती है पवन?
2: क्या बात है, ऐसे तो पवन की बात करी तो सन सननन बहुत से गाने याद आ जाते हैं।
1: क्यों कर रहे हैं हम बातें? क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं ग्लोबल विंड डे की, यानी हम बात करने जा रहे हैं पवन दिवस कह सकते हैं आप इसे। और ये जो दिन है ना, विंड एनर्जी के महत्व को समझाने और क्लीन एनर्जी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अब भाई क्यों जरूरी है? क्योंकि विंड एनर्जी दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्लीन एनर्जी सोर्सेस में से है, और ये जो ग्लोबल विंड डे है ये लोगों को जो पर्यावरण संरक्षण यानी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है और जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसके महत्व को समझाने की कोशिश कर रहा है।
2: बिल्कुल, और आपको बता दें कि ग्लोबल विंड डे की शुरुआत साल 2007 में यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन ने विंड डे के रूप में की थी। बाद में ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग के साथ मिलकर इसे दुनिया भर में मनाया जाने लगा और इसका नाम ग्लोबल विंड डे रखा गया।
1: भाई देखिए, इस विंड एनर्जी को बढ़ावा देना जरूरी है, इसके फायदे बताने जरूरी है, इसलिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि भाई ये प्रदूषण भी रोकता है, पॉल्यूशन रोकता है, और अगर इस तरह के कार्यक्रम होते रहेंगे जागरूकता के तो रोजगार भी बढ़ेगा, तो बहुत सारे फायदे हैं।
2: क्या बात है, और आयुषी ने आपके फायदे की बात तो आपको बता ही दी, और एक और फायदे की बात आपको बता दें कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की रेस में खड़े हुए हैं कि आपको अप्लाई करना है, तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि पूरी हो गई और नवीनीकरण नहीं है, तो लाइसेंस बनवाने के लिए आपको फिर से टेस्ट देना होगा, और इसे ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। और कहा जा रहा है कि इस महीने के अंत तक, आखिर तक ये सब कुछ प्रोसेस शुरू होने वाला है, जहाँ पर सेंसर व कैमरों की निगरानी में टेस्ट होगा, और 3 मिनट लगभग आपको टेस्टिंग ये ट्रैक मिलेगा जिसको आपको पार करना होगा, और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आपका जो नवीनीकरण है लाइसेंस का वो लटक सकता है।
1: ठीक है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि भाई टेस्ट जो होते हैं ना वो तो पास कर ही लेने चाहिए, लेकिन हाँ इसी के साथ भाई हमने आपको बता दिया है कि आपको अगर अपना कोई भी ऐसा पेंडिंग काम है अपने ड्राइविंग लाइसेंस से, जिस तरह से हमने ये इन्फॉर्मेशन दी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, हमने जैसे आपको बताया ग्लोबल विंड डे के बारे में, तो ये सारी बातें आपको जागरूक करने के लिए है। और भाई गुड मॉर्निंग लखनऊ पे ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें लाते रहेंगे, फिलहाल इन्जॉय करिए ट्रैक।
2: भाई आयुषी कर रही हैं हवाओं के बारे में बातें, तो ग्लोबल विंड डे पे ये ट्रैक बनता है, तो एंजॉय करिए ये प्यारा सा ट्रैक ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: नौ बज के 38 मिनट हो रहे हैं और भाई देखिए, हम अक्सर आपस में बात करने के लिए ये जानना चाहते हैं कि भाई मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, और हमारी बातों का ये बड़ा आधार होता है। इसीलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिनसे जानेंगे कि भाई लखनऊ के मौसम का क्या हाल है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका 100.7 FM पर।

0: जी गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग सर जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ के मौसम का हाल।
0: जी मौसम की बात करें तो मौसम इधर साफ रहेगा, धूप अच्छी खिली रहेगी और दिन में थोड़ा गर्मी का एहसास होगा, जैसा कि हवाओं में थोड़ा नमी भी बरकरार है, जिसकी वजह से थोड़ा उमस वाली गर्मी का एहसास रहेगा। तापमान हालांकि बहुत ज्यादा नहीं रहेगा लेकिन गर्मी तो भी एक तरीके से है। तो कुल मिला के कहें तो अभी आने वाले अगले 3-4 दिन मौसम साफ है और गर्मी की स्थिति बनी रहेगी।
2: जी तो सर मतलब अभी हमें अभी ऐसे ही धूप का सबब मिलेगा और कुछ दिन बाद कुछ राहत मिले की गुंजाइश है या नहीं?
0: देखिए गुंजाइश तो है लेकिन अभी 4-5 दिन के बाद ही जो होगा उसके बाद ही होगा।
2: ओके थैंक यू सो मच सर मौसम पर जानकारी देने के लिए।
0: ओके धन्यवाद।
2: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश जी, जिन्होंने बताया कि मौसम तो साफ रहने वाला है और कहीं ना कहीं आपको ये तकलीफ दे रही है कि भाई थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो जैसे आप कहते हैं ना ये गाना जैसे कह रहा है ना एक बार यार, तो कुछ ऐसी उम्मीदें ऐसी कोशिश आप करें। कोई नहीं, आप कोशिश करते रहिए और प्रार्थनाएं करते रहिए, मानसून जब आएगा तब आप कुछ ऐसे ही गुनगुनाएंगे।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

0: जी हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके इस खास दिन की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और अगर किसी की एनिवर्सरी है तो उनको भी, और देखिए हमने समय रहते याद दिला दिया, तो अब मत कहिएगा कि उप्स भूल गए।
0: बिल्कुल, तो हमारी तरफ से आपके इस खास दिन को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपका ये दिन अच्छा बीते और आपको ढेर सारी खुशियां मिले। इसी के साथ आपके इस दिन को और भी खास बनाने के लिए आपको हम बताते हैं कि आज आप अपना बर्थडे किसके साथ शेयर कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज तो आकांक्षा हर फील्ड के ऐसे ऐसे नायाब लोगों का जन्मदिन है कि उनके बारे में सुनेंगे और मोटिवेट होते जाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आपके मन में बिजनेस टाइकून बनने की कोई इच्छा है, तो आज हम बता रहे हैं आपको कि हम मना रहे हैं लक्ष्मी निवास मित्तल जी का जन्मदिन। और जाने माने उद्योगपति हैं ये, और इनका जन्म 15 जून 1950 को राजस्थान के सादुलपुर में हुआ था। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने स्टील इंडस्ट्री में काम शुरू किया और अपनी मेहनत के दम पर आज उन्हें दुनिया भर में स्टील किंग के नाम जाना जाता है।
0: इसी के साथ हमारे पास दूसरा नाम है, जी हाँ, मनिका बत्रा। आज भारतीय टेबल टेनिस की जानी मानी खिलाड़ी मनिका बत्रा का भी हैप्पी बर्थडे है। उनका जन्म 15 जून 1995 को दिल्ली में हुआ था। मनिका ने बहुत छोटी उम्र से टेबल टेनिस खेलना शुरू कर दिया और जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली। और ऐसा कहा जाता है कि मनिका बत्रा विश्व रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी भी बनी।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ अगर हम बताएं आवाज की दुनिया की मलिका के बारे में, यानी सुरैया के बारे में बात कर रहे हैं, तो मशहूर अभिनेत्री भी रही हैं, गायिका भी रही हैं। और 15 जून 1929 को अविभाजित भारत में उनका जन्म हुआ था और उनकी परवरिश मुंबई में हुई। और भाई, अपने करियर की शुरुआत उन्होंने भी कम उम्र में ऑल इंडिया रेडियो से ही की थी, बच्चों के कार्यक्रम से करती भी थी, बाद में फिल्मों में अवसर मिला और बहुत सारी अच्छी और लोकप्रिय फिल्मों में उन्होंने गाने गाए, एक्टिंग की, और उन्हें इसीलिए याद किया जाता है।
0: और अगर मूवीज की बात करें आयुषी, तो अनमोल घड़ी, दिल लगी, विद्या, अवसर और मिर्जा गालिब उनकी यादगार फिल्मों में शामिल हैं। तो आज हम आपकी अदायगी को, आपके कलाकार हैं, तो इस अवसर पर आपको याद करते हैं, नमन करते हैं। इसी के साथ हमारे पास अगला नाम है राजेंद्र सिंह जी जडेजा। जनरल महाराजा श्री राजेंद्र सिंह जी का जन्म 15 जून 1899 को काठियावाड़ गुजरात के शाही परिवार में हुआ था। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के बाद उन्होंने भारतीय सेना की कमान संभाली। साल 1955 में देश के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने।
1: और भाई, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके शानदार नेतृत्व और बहादुरी के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर यानी DSO से सम्मानित किया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। तो भाई, देशभक्ति, देश प्रेम से अगर आप भी ओतप्रोत हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों के से आप भी एकदम उनकी खुशी में सराबोर हो चुके हैं, तो आपको फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। और आइए इसी देश की नामिक गाना सुनते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
5: सुनील कुमार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग आपको भी, और कह रहे हैं कि बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहता है, खासतौर पर अपने माता पिता का सम्मान आशीर्वाद आपको आगे बढ़ाता है। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा, खेती उपजे अपने कर्मा। यदि बुजुर्गों की बात सुन ली जाए तो इससे बड़ा और कोई सम्मान ही नहीं हो सकता। सुनील प्रांजल, विकास नगर, लखनऊ से आप हमें मेल कर रहे हैं।
6: क्या बात है। और इसी के साथ एडवोकेट घनश्याम सिंह, नारायण नगर, फैजाबाद रोड, लखनऊ से हमें कह रहे कि मैंने बुजुर्गों पर

0: चार दिखा पर सिर्फ मेरा नाम ही पढ़ा गया। कोई बात नहीं, अब आपके विचार भी पढ़ ले रहे हैं, बड़ी मेहनत से लिखा। नहीं, आपकी बातें हम तक पहुंच गई हैं और आपका मेल दोबारा से हमने पढ़ लिया है घनश्याम जी।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ ब्रजेश जी हमारे पास भी आपका मेल आ गया है, कैसरगंज बहराइच से आप मेल कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और बुजुर्गों का खान पान सही से होना चाहिए, ज़रूरी है कि उनकी दवाई भी सही समय पर दी जाए, ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये बच्चों की तरह होते हैं और हम पर उनकी ज़िंदगी डिपेंड हो जाती है। जो अनुभव बुजुर्गों से मिलता है वो अनुभव ना गूगल से मिलेगा ना किसी और सोशल साइट से, तो हमें उनके बुजुर्गों को संभाल कर रखना चाहिए। और कह रहे हैं कि इनके पापा बहुत ज़्यादा टाइम से बीमार चल रहे हैं, उनका बहुत ख्याल रखते हैं और आशा है हमारी तरफ से भी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम यही कामना करते हैं।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ वारिस अली खान जी सज्जन नगर ऐशबाग लखनऊ से लिख रहे हैं कि आप बुजुर्गों को वक्त दें, उनकी बातों को सुने, अनुभव साझा करें और उनकी परेशानी को दूर करें, उन्हें कानून की जानकारी भी दें और उन्हें सीनियर सिटीजनशिप के बारे में भी बताएं।
1: जावेद पटेल जी, गुड मॉर्निंग आपको भी, और कह रहे हैं कि बुजुर्गों से हम हैं तो उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है और ये ऑनलाइन ऐप से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच।
0: इसी के साथ वकील अहमद जी, कटका हथूरी जिला सीतापुर, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशा सिद्दीकी, एम एन नवाब के साथ उन्होंने बस ये कहा है कि जिस प्रकार पेड़ होता है और वो छांव देता है उसी प्रकार माता पिता का भी घर में रहना वैसा ही होता है। तो थैंक यू, आपने अपने विचार साझा किए।
1: बिल्कुल आयुषी, और आज जैसा कि इस डे पर, इस खास दिन पर लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी अपनी राय रखी, कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंस भी रखे और ये सारे मेल्स हमें ये बताते हैं कि देखिए, जैसे एक और मेल हमारे पास आ रहा है जो हमें बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं
0: भाई? देखिए, मोइनुद्दीन अंसारी कह रहे हैं, श्रीनगर लखीमपुर खीरी से मेल कर रहे हैं और आज का कार्यक्रम अच्छा लगा और मुद्दे पे कह रहे हैं कि बुजुर्गों की हमेशा सहायता करनी चाहिए, जैसे कि उन्हें खाने पीने का खास ध्यान देना चाहिए, उनके कपड़े, उनके सफाई पे और उनकी हेल्थ पर। थैंक यू सो मच।
1: तो देखिए आयुषी, आज का दिन ये बताता है कि हमने आज का मुद्दा जिस हिसाब से दिया था कि वृद्ध जन, जो वरिष्ठ जन है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके प्रति आज जागरूकता का दिन है और लोग कितने जागरूक हैं और आज की जनरेशन कितनी जागरूक है, ये शुरुआत आपको अपने घर से शुरू करनी होगी। और सबसे पहले अगर कोई ऐसा वरिष्ठ जन है, ऐसा कोई है, अगर आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको लगता है, जैसे कि पहला स्टेप ही आपको अगर लगे कि यहाँ पर ये मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो आप वहीं पर उन्हें स्टॉप कर दीजिए, रोक दीजिए, क्योंकि आपका ही पहला कदम आगे की चीज़ें बताता है। अगर आप नज़रअंदाज करते जाओगे, छोड़ते जाओगे, क्योंकि देखिए कभी कभी होता है ना कि हम सोचते हैं हमारे अपने हैं, कह दिया कोई बात नहीं, बट कभी कभी रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई जो आपने बात कही उससे हमारा दिल टूटा है। बहरहाल 9:57 हो रहा है आयशी,
0: और भाई इसी के साथ आज की समय को, आज के इस कार्यक्रम को वाइंड अप करने का समय आ गया है। तो हमने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें की, इतने सारे प्यारे प्यारे गाने सुने, आपके विचार सुने और साझा किए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू कि आप गुड मॉर्निंग लखनऊ पे इतने प्यारे प्यारे मेल्स करते हैं।
1: तो आगे का सफर आप तय करेंगे आयुषी के साथ, आकांक्षा को दीजिए अनुमति, मिलेंगे फिर कभी किसी और दिन, लेकिन एंटरटेनमेंट का पैकेज यहाँ बना रहेगा ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जल डमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा। इस खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले रिफंड के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। योग की गंगा गंगोत्री से निकलकर प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों से गुजरते हुए गंगा सागर तक जाएगी। 13 जून को गंगोत्री से निकली योग की धारा 17 जून को वाराणसी पहुंचेगी। केंद्र सरकार के गंगोत्री से गंगा सागर अभियान के अंतर्गत काशी में योग का कार्यक्रम गंगा के तट पर रविदास घाट पर आयोजित किया जाएगा। देश के विभिन्न प्रमुख शहरों से होते हुए योग की धारा 20 जून को गंगा सागर पहुंचेगी। क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा काशी के प्रसिद्ध अर्धचंद्राकार घाटों की श्रृंखला पर भी 15 से 21 जून तक अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। योग सप्ताह का औपचारिक शुभारंभ आज नमो घाट से हुआ। आज विश्व वायु दिवस मनाया जा रहा है। पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में इसकी भूमिका रेखांकित करने के लिए हर वर्ष 15 जून को यह दिवस मनाया जाता है। भारत आज गोवा में विश्व वायु दिवस 2026 सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की थीम है पवन ऊर्जा महत्वाकांक्षा से गतिशीलता की ओर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, FM रेनबो।
1: I am संध्या त्रिगुनी।

0: बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
1: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
2: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आई लग गई यार, घुटना गया लगता है।
5: भाई अब मैच का क्या होगा?
4: अब तो डॉक्टर ही बचाए।
6: खेल के दौरान छोटी चोटें कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं लगता, पर चरक हॉस्पिटल के होते हुए टेंशन नहीं,
7: जहां जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट्स आपका रखते हैं पूरा ख्याल।
6: साथ ही जॉइंट प्रिजर्वेशन और पेन रिलीफ के लिए आजमाइए GFC PRP और स्टेम सेल थेरेपी।
7: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल करें 666-4444।
8: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
9: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

10 बज के 5 मिनट हो रहे हैं और आपके साथ वापस से जुड़ चुकी हूँ मैं आयुषी, लेकर आ गई हूँ आपके मन पसंद दिल की धड़कन वाला प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग। सुनेंगे अब आप आयुषी के साथ। और देखिए ना, आपके साथ बात करते करते किस तरह से हमारा वक्त बीत जाता है मैं मालूम नहीं चलता, और नए वक्त के साथ हम नया प्रोग्राम ले आते हैं और सुपर हिट सॉन्ग्स पे आपके लिए बिना देरी के बहुत ही प्यारा सा गाना यादों के पिटारों में से जो यादें ताज़ा कर देगा।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
2: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
1: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
4: दस बज के 17 मिनट हो रहे हैं और सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ। और ये जो सफ़र है ना पुराने गानों का, उन गानों का जो हमारे दिल में अभी भी बसे हैं, और वो फिल्में, उसके गाने, उसकी वो जितने भी स्टोरी, एक्टर्स, कपड़े, स्टाइल, कभी पुराना नहीं होता। एवरग्रीन गानों का यही सिलसिला।

0: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 से 4 बजे तक.
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की.

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
5: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
4: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
5: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।

10:29 यानी 10:30 बजने में बस कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं और आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स आयुष के साथ 100.7 एफएम पर। और अगर आप अपने अपने ऑफिसेस के लिए, अपने कार्यालयों के लिए, अपने दिन के कामों के लिए घर से निकल चुके हैं या रास्ते में हैं और इन्जॉय कर रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो आपके लिए बस कहूँगी हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी, यातायात नियमों का पालन करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और आज का दिन आपका ब्यूटिफुल सा गुजरे एकदम इन ब्यूटिफुल सॉन्ग्स की तरह।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: सुपर हिट सॉन्ग सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ और 100.7 FM पर ये पुराने गानों का सिलसिला जारी है जो कभी बस रेडियो पे ही सुनने को मिल जाते थे ये गाने, या फिर हम जाकर इनके लिए वो कैसेट्स खरीदा करते थे, पैसे बचा बचा कर सीडी खरीदा करते थे। और ये गाने आज भी उतने ही हमारे दिलों में जिंदा हैं जितने आज भी उनका चार्म, उनका जादू हम पर चढ़ा रहता है। वैसे ही ये प्यारे प्यारे पुराने यादों के पिटारे से गाने

0: बोरियत को करिए गॉन, म्यूजिक को करिए ऑन.
1: हैंगओवर
0: Only 100.7 FM Rainbow.

10:55 का समय और सुपर हिट सॉन्ग्स का सिलसिला जो ये चल रहा था और हम इस सफर में कहीं खो से गए थे, पर अब स्टूडियो के टिक टिक करती क्लॉक को देखकर लग रहा है कि विदा लेने का समय आ गया है इस कार्यक्रम से। लेकिन ये कार्यक्रम खत्म होगा तभी तो हम आपके लिए अगला लेकर आएंगे, एक और इंटरेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम है संदेश आपके गीत हमारे, जहाँ पे आप अपने प्यारे प्यारे संदेश देते हैं और हम आपसे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने सुनते हैं। फिलहाल सुपर हिट सॉन्ग से आयुषी को दीजिए इजाजत, ऐसे ही नहीं छोड़कर जाऊंगी, सफर ऐसे कहां पूरा होगा। एक और प्यारा सा गाना आपके लिए, गाने के पार और न्यूज ब्रेक के पार हम मिलेंगे आपसे संदेश आपके गीत हमारे लेकर। इंजॉय द ट्रैक 100.7 FM पर धड़कन लखनऊ की।

के दौरान आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उसके निराकरण का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों से आए करीब 150 से अधिक लोगों की समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। इसके पहले उन्होंने गौशाला में जाकर गाय की सेवा की और उन्हें गुड़ खिलाया। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। ये देश के विमानन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। ये परियोजना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पूरी हुई है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे के लिए अपनी जमीन देने वाले किसानों के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन्हें पहली उड़ान से लखनऊ ले जाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियान शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। ज्येष्ठ माह की पावन सोमवती अमावस्या पर आज धर्मनगरी चित्रकूट में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र मंदाकिनी गंगा में स्नान कर भगवान कामतानाथ स्वामी के दर्शन कर परिक्रमा लगा रहे हैं। सुबह से ही रामघाट, परिक्रमा मार्ग, कामतानाथ मंदिर और प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर परिवार की सुख समृद्धि व कल्याण की कामना कर रहे हैं। उधर प्रयागराज में महिलाओं ने पीपल वृक्ष की विधि विधान से पूजा अर्चना की और व्रत रखा। वहीं लोगों ने संगम में स्नान कर सूर्य को अर्घ दिया। फीफा विश्व कप 2026 में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का मुकाबला पहला जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई के मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हरा दिया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
3: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

ऐथे आ गई हूँ मैं संदेश आपके गीत हमारे लेकर आपके साथ आयुषी दोबारा जुड़ चुकी हूँ। 11:05 हो रहे हैं 100.7 FM पर आप एंजॉय कर रहे हैं संदेश आपके गीत हमारे और आपके बहुत सारे मेल्स का इंतजार रहेगा। और देखिए ना फोन लाइनें तो अभी से टिमटिमाने लगी हैं। गाना एंजॉय करिए और सफर तो बस अभी शुरू हुआ है।

0: 대야.
1: 11 बज के 8 मिनट हो रहे हैं। संदेश आपके गीत हमारे में हम कर चुके हैं शुभारंभ। और देखिए, मैंने कहा था कि कार्यक्रम शुरू होता नहीं है कि जो फोन लाइन है ना वो बड़े प्यार से टिमटिमाने लगती है, और ऐसे ही टिमटिम करती फोन लाइन को हमने लपक लिया और देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, किससे बात हो रही है?
2: जी हेलो
1: जी, किससे बात हो रही है?
2: जी दीदी, सबसे पहले सभी सुनने वालों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग और प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम, और आपको भी प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
1: बिल्कुल गुड मॉर्निंग आपको भी।
2: जी मेरा नाम मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं।
1: क्या बात है, तो बताइए फैज क्या लेकर आए हैं आप हमारे लिए जानकारी, आज का संदेश लेकर आए
2: हैं? हम ये कहना चाहते हैं, आपने जो पिछला प्रोग्राम किया सुपरहिट बहुत ही अच्छा लगा, और मेरा संदेश ये है कि जैसे इस टाइम गर्म बहुत पड़ रही है, उसके बाद में आम का सीजन चल रहा है, तो जैसे मार्केट में से लोग भाई बहन जो मार्केट जाते हैं तो वहाँ से आम लें या बाजार या मार्केट आम लें, तो उसे घर घर में ले जाके उसे अच्छी तरह धुल के खाएं, और जो छिलके हों तो वो जो है बाहर साफ सुथरा जगह रख दें ताकि गाय वगैरह आके खा लें।
1: क्या बात है, बिल्कुल।
2: और हेलो दीदी,
1: हाँ जी,
2: मैं कुछ लोगों का नाम भी लेना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल,
2: आपका प्रोग्राम सुन रही
1: हूँ
2: जी। सबसे पहले मोहम्मद सद्दाम भाई हैं, और उसके बाद में आसिफ भाई हैं, रिंकी पिंकी जावेदर पे गुलाब साहब भी हैं, समा परवीन अप्पा हैं, साहिबा हैं अंसारी, सादिया अंसारी, यासिर हमीद भाई, बाबू अंसारी भाई हैं, तरन्नुम अंसारी हैं, बस
1: बस
2: नहीं ज्यादा नहीं लिखे क्योंकि दूसरों को भी मौका दें।
1: चलिए बहुत अच्छी हालत है। हाँ जी,
2: मैं ये कहना चाहता हूँ कभी आइए हमारे गांव टहल जाइए। आपसे मैं कितनी बार आपसे मैंने कहा लेकिन आप नहीं आती है।
1: नहीं नहीं, पक्का इस बार मुझे लगता है कि आपने इतना आग्रह कर दिया और हमारे बहुत सारे श्रोता करते हैं, हमें भारत भ्रमण करना पड़ेगा।
2: आइएगा जरूर।
1: चलिए थैंक यू।
2: हेलो
1: जी,
2: मैं मेरा कस्बा रामपुर कटरा बाराबंकी, आइए कभी भी आइए, मुलाकात हो जाए।

0: कि हम मेन रायपुर में बैठते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल जरूर. थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन. ओके थैंक यू फैज. भाई बहुत प्यार से मनुहार से हमारे कॉलर्स हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि आ जाइए, मुमकिन हो तो हम पूरा भारत भ्रमण करें और आ जाए. फिलहाल यहाँ से तो आपसे जुड़े हैं और दिल से दिल का एक रिश्ता है और भाई रेडियो और गाने का भी तो एक प्यारा सा रिश्ता है. वो रिश्ता बरकरार रखते हैं प्यारा सा गाना आपके रेडियो सेट्स पर.

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: के 13 मिनट और संदेश आपके गीत हमारे पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कोई और कॉलर भी देखते हैं किससे बात हो रही है। हेलो,
2: हेलो, नमस्ते।
1: नमस्ते, किससे बात हो रही है?
2: हमारा नाम वकील अहमद मंसूरी।
1: वकील अहमद मंसूरी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी हाँ, वकील अहमद मंसूरी, कटकाथुरी, ब्लॉक हरगांव, जिला सीतापुर।
1: अरे वाह, क्या बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
2: बहुत अच्छे हैं, खाना खा रहे हैं, खा ले आके।
1: अरे बिल्कुल जरूर, किसी दिन जरूर, और थैंक यू फॉर द इनविटेशन। अब ये बताइए कि बहुत प्यारा सा संदेश क्या लाए हैं आप हमारे देशवासियों के लिए?
2: संदेश हमारा ये रहेगा कि जैसे माता पिता हैं और लोग जितने हैं उनको सबका सम्मान करना चाहिए। कोई हाँ, जैसे बूढ़ा हो या आपसे बड़ा हो, जो है जैसे हमसे बड़ा है कोई, तो जो है छोटा हो, इसे सम्मान करना चाहिए।
1: नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सम्मान करना चाहिए सबका। तो
2: और लेना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, ले लीजिए।
2: अंसारी है और जो समा परमीन है, गुलफ्ता सिद्दीकी, अहमद नवाब है
1: जी,
2: और सर जो है बहुत लोग जितने सुने सभी।
1: क्या बात है, बहुत बहुत

धन्यवाद, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को आपका मैसेज पहुंच गया है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो देखिए, आज तो हमने आपको जैसे कि बताया कि जो एल्डर्स हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसके अगेंस्ट भी ये अवेयरनेस हो कि उनके साथ ये दुर्व्यवहार ना हो, इसका अवेयरनेस डे भी आज हम मना रहे हैं और इसको एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस कह सकते हैं। और इसी के बारे में अभी हमारे लेटेस्ट कॉलर ने भी बात की और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे बुज़ुर्गों को हमारी बहुत ज़रूरत है लेकिन हमें भी उनकी ज़रूरत है, तो आप उनका सम्मान करें और उनका ख्याल रखें। इस वक्त उनको आपके ख्याल की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है और हमें भी तो उनकी कितनी ज़रूरत है, यही तो बात है ना। अच्छा, हमारे पास मेल्स भी बहुत सारी आ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि 2-3 मेल्स अगर मैंने नहीं ली तो कहीं 1-2 मेल्स छूट ना जाए। जब मेरे ख्याल से सुपर हिट सॉन्ग्स के समय पे कुछ मेल्स और आई हैं तो वो भी ले लेते हैं। संजय मार्कंडे जी की मेल है, खंडवा से, बड़ा बम चौक खंडवा से, और नाम लिखा है ममता बमारकंडे, संजय मार्कंडे और बेबी किटू का। और वैसे फरमाइश की है कुछ गानों की, लेकिन फरमाइशी प्रोग्राम्स और भी होते हैं तो वहाँ पे आपकी फरमाइश पूरी हो जाएगी। फिलहाल सुपर हिट सॉन्ग्स में आप सुपर हिट सॉन्ग्स का मजा लेते हैं और संदेश आपके गीत हमारे में। हम बात करते हैं उन संदेशों की, उन मुद्दों की जो हम सब के लिए, हम सब के दिल में रहते हैं और हम सब के लिए एक समस्या बने रहते हैं, और हमें लगता है कि कई कई बार वो संदेश अगर हम एक दूसरे से बांटेंगे, एक दूसरे की गलतियों से सीख लेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सिविक सेंस थोड़ा आसान हो जाएगा। कहते हैं कि एक इंसान एक ज़िंदगी में सारी गलतियां तो नहीं कर सकता ना, ज़िंदगी इतनी बड़ी भी नहीं दोस्त, लेकिन हम दूसरों की गलतियों से सीख कर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। ज़रूरी है कि जो दूसरा गलती कर रहा हो वही हम भी करें, है ना। जगर राम साहू जी क्या कह रहे हैं, नागर कोहरा जिला राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का नाम लिया। और कोई बात नहीं, और अगली बार हम उम्मीद करेंगे कि जगर राम साहू जी और संजय मार्कंडे जी आप भी अपने संदेश भेजिए। हमें राधे श्याम शर्मा जी का भी मेल है, गांव हांडी खेड़ा सिरसा से, राधे श्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। और मुझे लगता है कि रामराज जी का भी मेल है, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से, रामराज, राजभानु, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह रहे हैं, शुभाशीर्वाद दे रहे हैं, क्या बात है। और संदेश है कि आपस में मिलजुल कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में मिलकर रहने से एकता होती है। थैंक यू सो मच इतना प्यारा मेल करने के लिए। और फिलहाल मुझे लगता है इतनी प्यारी प्यारी बातें हो गई तो प्यारा सा गाना भी हमें सुन लेना चाहिए बिना देरी के। सो आपके रेडियो सेट्स पर ये गाना।

11:20 और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप, और देखते हैं कि अगला मेल हम किसका ले रहे हैं। देखिए, सोनू परवाना जी का मेल आया है खालिसपुर ऊंच गांव अमेठी से। कह रहे हैं, बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम सही स्थान नहीं है। माँ बाप एक पेड़ की तरह होते हैं जो कि हमें छांव देते हैं। जिन बुजुर्गों ने खुद कष्ट सहकर हमें आराम दिया, चलना सिखाया, पढ़ा लिखाया, हमें समाज में रहने के काबिल बनाया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके सुख दुख पर ध्यान दें। उनके चरणों में ही हमारा स्वर्ग है। बहुत प्यारी बात लिखी सोनू परवाना जी ने। और इसी आज के मुद्दे पर आज का जो टॉपिक है हमारा, एल्डर अब्यूज के अगेंस्ट बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्गों को जो प्रताड़ना हो रही है आजकल, या उनके खिलाफ हम जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज यूनाइटेड नेशंस द्वारा रिकॉग्नाइज्ड एक डे है, और इसी पे अगला मेल आया है हमारे पास आंचल सेठ खालिसपुर का। कह रही है, रामायण पढ़कर हमें ये सीखना चाहिए कि श्री राम प्रभु ने अपने पिता की बात का सम्मान करते हुए 14 वर्षों का वनवास खुश मन से स्वीकार किया था, लेकिन अगर हमारे बुजुर्ग हमें कुछ सलाह देते भी हैं तो उन्हें तुरंत पलटकर जवाब दे दिया जाता है और माता पिता को वनवास भेज देते हैं, यानी कि वृद्ध आश्रम, जो कि बहुत गलत है। इन्हीं बातों को दूर करना होगा, हमें प्रभु श्री राम के मार्ग पर चलना होगा। और बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने, रायबरेली से लिखा है आंचल और अंकित सेठ का नाम लिया है। इसी के साथ मोहम्मद आसिफ का मेल ले लेते हैं। मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं और आवाज़ की तारीफ कर रहे हैं। कार्यक्रम पिछला भी बहुत अच्छा लगा, मतलब आपको गाने अच्छे लगे तो अच्छी बात है, हमें अच्छा लगा ये सुनकर। और संदेश है कि आसपास साफ सफाई रखें और जो सार्वजनिक जगहों पर जो पीने वाले पानी की टोटी खुला ना छोड़े ताकि पानी बर्बाद ना हो। सादिया अंसारी, साहिबा अंसारी, समा अंसारी, गुलफशा पी और इमन नवाब पी का नाम लिया है इन्होंने। थैंक यू मोहम्मद आसिफ जी, आपने हमें मेल किया और अपना प्यारा सा संदेश भी शेयर किया। और इसी के साथ अगला मेल जो हम ले रहे हैं वो है अभिनव भारद्वाज और आशी भारद्वाज का साहिबाबाद से। और ये भी यही कह रहे हैं कि आज का जो ये दिन है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उसके लिए जो हम जागरूकता फैला रहे हैं उस प्रयास को की ये प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये प्रयास और ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है और बुज़ुर्गों को उनका सम्मान मिलना चाहिए। इसी के साथ भैया मोनू सेठ का भी मेल आ गया है हमारे पास और नाम लिखा है इन्होंने गुनगुन सेठ का भी, परी सेठ का भी, और खालिसपुर ऊंच गांव भेल अमेठी से लिख रहे हैं। कह रहे हैं, बुजुर्गों का सम्मान खुशियां, घर का सच्चा सौभाग्य, घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव और संस्कारों की जीवंत मिसाल है और उसके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना हमारा कर्तव्य है। बुजुर्गों को उपेक्षित महसूस ना होने दें, उन्हें ऐसा माहौल दें जिसमें वो खुश और सुकून से रह सके। और सवाल यही है कि घर बुजुर्गों का, फिर भी उनसे अकड़ क्यों और बुजुर्ग घर के बजाय वृद्धाश्रम में क्यों? अच्छे ख्यालात हैं आपके और आपने अपने प्यारे प्यारे विचार हमसे साझा किए, इस बारे में अच्छा लगा आप सबने। और अभी बहुत सारे मेल्स बाकी हैं, बहुत सारी कॉल्स लेनी बाकी हैं और बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम तो आपको आपके दिल के, आपके मन के प्यारे प्यारे गाने भी सुना रहे हैं और प्यारी प्यारी हम बातें भी कर रहे हैं ना।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: बज के 28 मिनट, संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ, और देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो,
7: नमस्ते सर
6: जी। नमस्ते, किससे बात हो रही है?
7: कुमार परियार, ग्राम हसनापुर, बोल देवपुर, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।
6: कैसे हैं श्रवण जी आप? तो ये बताइए, अच्छा क्या संदेश लाए आप हमारे लिए आज?
7: गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, धूप में ना रहें, ज्यादा छाया में रहें, अच्छा खाना खाएं, पानी पिए, और गाड़ी चलाएं तो रोड पे धीरे चलाएं, मीडियम में चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहें।
6: बिल्कुल, आप अपने इर्द गिर्द अगर किसी को देखते हैं ट्रैफिक का उल्लंघन करते तो टोकते हैं क्या?
7: हाँ सर।
6: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया।
7: नमस्ते
6: जी, थैंक यू भाई। देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हमारे जितने भी लिसनर्स हमें कॉल करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कहते हैं, और मुझे लगता है ना ये कांस्टेंट रिमाइंडर है। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं या टू व्हीलर पे निकलते हैं तो कभी हेलमेट पहनना भूल जाते हैं, कभी समय पे हॉर्न नहीं देते, कभी इंडिकेटर नहीं देते, कभी लेफ्ट इंडिकेटर देकर राइट मुड़ जाते हैं, और ये सारी छोटी छोटी लापरवाही

नहीं करनी चाहिए, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि सड़क ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी स्पीड को नियंत्रित रखें, अपने आप को सुरक्षित रखें, तभी तो सुरक्षित घर पहुँचेंगे। और सिर्फ हमें नहीं, सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको एक जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, एक साथ काम करना पड़ेगा, एक सिंक में काम करना पड़ेगा, है ना। ये एक करने से नहीं होगा, सिर्फ एक सावधानी बरते पर बाकी सारे नहीं बरत रहे तो भी नहीं होगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि भाई अगर आपको भी एक सिविक सेंस जिसे कहते हैं, या अपने

थे पर बाकी सारे नहीं बरत रहे तो भी नहीं होगा ना। तो ये छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाती हैं कि भाई अगर आपको भी एक सिविक सेंस जिसके कहते हैं, या अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी को आगे बढ़ते एकदम आपका एक दूसरे पर विश्वास बना रहे, वो मजबूत होता रहे, इसके लिए हम सबको एक छोटे छोटे कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। इसी के साथ दो तीन मेल्स और मैं ले लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कहीं से भी हमारे मेल्स छूट जाए। तो अगला मेल मैं लेना चाह रही हूँ, मैं ले रही हूँ ब्रिजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच से। क्या लिख रहे हैं ब्रिजेश जी? कह रहे नमस्ते मेरी क्यूट सी आयुषी मैम जी, सुपर हिट सॉन्ग्स के सभी सॉन्ग दिल को छू लेने वाले प्ले किए, थैंक यू सो मच। आप सबको ये सारे सॉन्ग्स अच्छे लगे तो बस समझिए हमारी मेहनत सफल। संदेश कह रहे एक दिन हम बहुत सुबह अपने खेत को आ रहे थे, तभी पीछे से एक साहब अपने बच्चे को बाइक सिखा रहे थे। उसकी उम्र करीब 11-12 साल की थी। प्लीज़ छोटे बच्चों को बाइक ना सिखाएं ना उनको चलाने दें। तो बहुत अच्छी बात कही है भाई कि हर चीज़ की अपनी एक एज है, और जो एज है वो लीगल एज आपकी 18 है, और उसके नीचे आप ये गाड़ी ना दे बच्चों को। और जब भी आप दे तो आपको लगे कि अब आपके बच्चे वयस्क हो गए, लीगल एज के हो गए हैं, तो जब आप उनको गाड़ी चलाना सिखाएं या दें तो उन्हें ट्रैफिक रूल्स भी ज़रूर समझाएं। थैंक यू सो मच ब्रिजेश जी। अब इसके साथ एक और प्यारा सा मेल लेने जा रही हूँ मैं, तालिब अंसारी जी का। कह रहे बुजुर्गों के सम्मान के लिए मुख्य रूप से दो शब्द आदर सम्मान और अनुभव यानी ज्ञान है, और ये शब्द उनके जीवन भर के संघर्ष ज्ञान और परिवार की नींव को दर्शाते हैं। सम्मान इसलिए भी जरूरी है कि मार्गदर्शन और अनुभव मिलता रहे। तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से ये बात लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसके साथ अगला मेल मैं ले रही हूँ शम्स कमल राही गंज डुंडवारा से, और लिखा है आरजे जी आदाब आपको, और शमसुल कमर राही के साथ साथ नाम लिखा है शाहीन फातिमा अदनान खान अनु खान। और वैसे ये शायद कहा है कि किसी भी सॉन्ग में इंक्लूड कर ले, हम कर लेंगे आपको किसी भी सॉन्ग में इंक्लूड, लेकिन संदेश आपके गीत हमारे में। अगर आप भी अपनी प्यारी सी हमें पसंद बताएंगे, हमें अपना संदेश बताएंगे अपनी पसंद का, तो हमें और भी अच्छा लगेगा। फिलहाल आप सबके लिए प्यारा सा गाना

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: 11:37 मिनट हो रहे हैं और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ। देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं क्या। हेलो
1: हेलो, मेरी प्यारी सी क्यूट सी आयुषी दीदी को उनकी छोटी सिस्टर रिंकी और पिंकी का प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा गुड मॉर्निंग।
0: कैसी हैं रिंकी पिंकी आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं और आज आपसे मुलाकात हो गई ना तो हमारे हाल चाल एकदम चकाचक और एकदम मस्त हो गया। आप बताइए आप कैसी हैं और आपके लखनऊ का मौसम कैसा है?
0: बस लखनऊ के मौसम का हाल तो हम आपको बताते ही रहते हैं और हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ के एक्सपर्ट्स आपको बता दें, लेकिन मौसम अच्छा है और आपसे बात करके मूड भी अच्छा है।
1: पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से थैंक यू कि आपने मेरी कॉल रिसीव की और मुझे आज अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश रहती है और हम सब की कोशिश रहती है कि आप सबकी कॉल रिसीव हो जाए।
1: मैं काफी दिनों से कॉल ट्राई कर रही थी लेकिन मेरे यहाँ FM का प्रसारण सही से नहीं आ रहा था। मुझसे वादा किया गया था कि 2 दिन के अंदर आपको चैनल ठीक करके दिया जाएगा, तो मैम अनुरोध है कि मेरे यहाँ अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कार्यक्रम सुनने में और मैं कॉल ट्राई भी कर रही थी, बिल जा रही थी लेकिन कॉल रिसीव नहीं हो रही थी।
0: पर मुझे लगता है कि आपकी अगर कोई और समस्या है तो वो भी उसका भी निवारण हो जाएगा। और देखिए, एक तो आपकी शिकायत खत्म हो गई, आपका कॉल लग गया, आप अभी बोल रही हैं, हमसे बात कर रही हैं, पूरे देश से बात कर रही हैं।
1: मैम मैं मैसेज देना चाहती हूँ, कुछ श्रोता बोलते हैं जैसे मेरे यहाँ चैनल नहीं सही पकड़ता है, सुनाई नहीं देता है, तो आप लोग रेडियो की जगह अगर कीपैड का फोन चलाते हैं तो वहाँ पर रीड कनेक्ट करके आप कुछ चैनलों का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है रेडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो आप फोन के माध्यम से वहाँ से आप कार्यक्रम अपनी पसंद का चैनल सुन सकते हैं।
0: बिल्कुल, न्यूज ऑन एयर ऐप के थ्रू भी सुन सकते हैं। सो थैंक यू रिंकी पिंकी।
1: जैसे बहुत से श्रोता है मैम बड़ा वाला फोन नहीं चलाते, हम लोग भी नहीं चलाते, कीपैड का ही फोन यूज करते हैं ना, तो मैम हम लोग ऐसे ही करके कार्यक्रम आपका सुनते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है,
1: एक साथ मतलब हम लोग 3-3 चैनल सुनते हैं तो आप सोचिए हम लोग कितनी मुश्किल से सुनते होंगे।
0: नहीं नहीं, आपकी डेडिकेशन है और आपका प्यार है जो हम तक पहुंचता रहता है। थैंक यू सो मच। आपने
1: मैं 3 नाम लेना,
0: बिल्कुल 3 नाम आप 4 ले लीजिए।
1: मेरी दोस्त, वैसे मैंने बहुत सारे श्रोताओं को जोड़ा है तो आज मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी। मेरी दोस्त है समा परवीन, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, ममता दीदी, सुषमा दीदी, अनु पांडे दीदी और पूनम दीदी कानपुर से, और मोहम्मद फैज भाई और वकील अहमद भाई।
0: चलिए थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू।
1: थैंक यू दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते। देखिए भाई, इतने प्यारे प्यारे हमारे पास जो कॉल्स आती हैं, बहुत प्यारे प्यारे संदेश आते हैं, उनसे हमारा दिल नहीं भरता। फिलहाल कुछ मेल्स ले लेते हैं और जो ये हमारा जीमेल बॉक्स है ना, ये हमारा ईमेल का बॉक्स, ये जैसे जैसे भरता रहता है ऐसा लगता है कि कोई नदी का पानी जो है वो भरता जा रहा है, बड़ा प्यारा लगता है। देखिए हमारे पास जो अगला मेल है वो है जावेद अख्तर जी का और कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आपको सुबह से सुन रहे हैं, आपका नटखट और चंचल अंदाज मन को मोह लेता है। थैंक यू।

यही वजह है कि एफएम रेनबो से दिन ब दिन दीवानगी बढ़ती जा रही है और मेरा संदेश है कि इस बदले हुए मौसम में अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, बारिश के पानी को छतों पर और घर के बाहर जमा ना होने दें क्योंकि इससे बहुत सी बीमारियों का खतरा रहता है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से लिख रहे हैं ये, थैंक यू सो मच। और नाम लिखा है शमशुल कमर राही और बेगम रुखसार, थैंक यू सो मच। इसके साथ हम ले रहे हैं वकील अहमद का मेल, कह रहे हैं आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, संदेश है कि माता पिता और सभी का सम्मान करना चाहिए, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में रहने दो फल ना सही छाव तो देगा, ठीक उसी प्रकार माता पिता बूढ़े ही सही घर में रहने दो, दौलत तो नहीं कमा सकते लेकिन आपके बच्चे को अक्सर अच्छे संस्कार अवश्य देंगे। वकील अहमद मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर साहिबान सारी साजे अंसारी शमा परवीन, सबका नाम लिया है, थैंक यू सो मच।

0: आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: ग्यारह बज के 45 मिनट और देखिए संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप आयुषी के साथ और हम कर रहे हैं बहुत सारी जरूरी बातें, बहुत सारे जरूरी संदेश सुन रहे हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने भी सुन रहे हैं। फिलहाल देखते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर कौन जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हेलो
1: जी, किससे बात हो रही है?
2: ज्योति,
1: कैसी हैं आप? तो ज्योति आप कहाँ से बात कर रही हैं एग्जैक्टली?
2: लखनऊ में।
1: आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, क्या संदेश लाई हैं आप? हेलो ज्योति, क्या संदेश लाई हैं?
2: जी मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से बात करनी
1: चाहिए, बुजुर्गों से अच्छे से बात करनी चाहिए।
2: जी
1: मेरे
2: नाना
1: ओके ओके, थोड़ा सा शायद नेटवर्क में दिक्कत है पर कोई बात नहीं, आपका संदेश पहुंच गया है और थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर हमें अपने ये विचार साझा कर रही हैं, अपना संदेश दे रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो हमारे साथ हमारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद मौसम की वजह से नेटवर्क में कहीं कहीं दिक्कत आ जाती है पर कोई बात नहीं, हम उनकी भावनाएं समझते हैं और वो हम तक ज़रूर पहुंच जाती हैं, चाहे सारे शब्द वैसे ही वैसे पहुंचे ना पहुंचे। पर फिलहाल हमारे पास अगला मेल है गीता सेठ जी का। परिवार के वृद्धजनों को भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता की अत्यंत आवश्यकता होती है ताकि वे अकेलेपन या अवसाद की स्थिति में ना आ पाए। वृद्ध लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, बुजुर्ग हमारे धरोहर, उनका सम्मान उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। कुछ घरों में बुजुर्गों के साथ बहुत अन्याय होता है, एक दिन हम सबको बूढ़ा होना है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बहुत सही बात कही आपने गीता सेठ जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आलोक साहू जी का मेल आया है, कह रहे मैं रायबरेली उचाहार धमधमा से हूँ। हेलो मैम, मेरे यहाँ 8:30 पर मूसलाधार बारिश आई, आंधी आई और संदेश है कि बारिश का समय है तो बारिश का पानी गड्ढे नाले छत घड़े में भर जाता है, उससे डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसे होते हैं बीमारियां, मच्छर पनपते हैं उसके और जो हमें काटते हैं और उससे हमें सारी बीमारियों का डर बना रहता है, ऐसा ना करें। और बहुत सारे इमोजीज लिखकर कहा है धन्यवाद मेरा मेल शामिल करने के लिए, बिल्कुल। और इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं अब मेल वारिस अली खान जी का और कह रहे हैं अर्ज है जिसे लगते हैं लगे शब्द मेरे जहर, मुझे शहद दिखाकर जहर पिलाना नहीं आता। संदेश है कि वक्त सबका एक जैसा नहीं रहता है और अगर तालाब में चींटी गिर जाए तो उसे मछलियां खा जाती हैं और अगर तालाब सूख जाए तो चींटियां मछलियां खा जाती हैं। एडवोकेट वारिस अली खान, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से ये बात कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। और एक मेल और ले लेते हैं इसके पहले कि हम बहुत प्यारा सा जो गाना क्यूट है वो सुने, लेकिन उसके पहले और एक प्यारा सा मेल देखा जाए किसका लिया जाए। ओके, तो अगला मेल है अरुण कुमार जी का और घमोइया हरदोई से लिख रहे हैं अरुण कुमार कुशवाहा, कह रहे हैं कि आवाज़ अच्छी लग रही है, प्रोग्राम में मज़ा आ रहा है और हम लोगों ने आज कितनी तारीख की, एक ज़माना था प्राइमरी चैनल खुला रहता था, इंतज़ार करते थे मेरा ख़त कब पढ़ा जाएगा, पर आज तुरंत लिखो और तुरंत जवाब, क्या बात है। पर इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों का योगदान नहीं भूलना चाहिए, थैंक यू सो मच। और आपके लिए अब इसी के साथ बहुत ही प्यारा सा गाना, उसके बाद हम ऐसे नहीं आपके और भी मेल्स पढ़ेंगे, कहीं जा नहीं रहे, बस म्यूज़िकल ब्रेक तो बनता है ना।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: जी तो मेरा भी नहीं भरा है और संदेश आपके गीत हमारे सुन रहे हैं आप, लेकिन देखिए स्टूडियो की क्लॉक हमें कह रही है कि बस अब ज्यादा समय नहीं भरा, ज्यादा समय नहीं बचा, दिल तो नहीं भरा, कोई बात नहीं, पर हमारा मेल बॉक्स भरा हुआ है और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से उसे खाली कर दूँ, कम से कम आपके जो मैसेजेस हैं वो खाली ना जाएं। और देखिए इसके साथ हम शहरून नूर अंसारी का मेल ले रहे हैं, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से। शहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद, इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मुनीश कुमार भानपुर हरवा जिला लखीमपुर खीरी से और कह रहे हैं कि रेडियो के दीवाने हैं और आपकी आवाज़ से हमें हर कोई जाने, वाह हमें रेडियो एफएम के दीवाने, वाह। हमारा संदेश है कि पहले खुद सुधरो फिर दूसरों को सुधारो, क्योंकि अगर हम खुद नहीं सुधरे और दूसरों को ज्ञान बांटने लगे तो सामने वाला हमें टोक सकता है। हम तो यही देखते और सुनते आ रहे हैं कि लोग दूसरों को उपदेश देते हैं पर खुद को नहीं संभालते। सबसे पहले अपने आप को संभालो, बाद में दूसरे की गलतियां निकालो। थैंक यू सो मच, सही बात कह रहे हैं आप। एम नवाब कह रही हैं, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं और ये तो सब कहते हैं पर आयुषी की आवाज़ सुनकर लोग सच में मुस्कुरा देते हैं। अमन नवाब संडीला से, थैंक यू सो मच। और देखिए हमारे पास अगला मेल आया है, कह रहे हैं पिंकू सोनी, सदियों का सर का सीज़न आने वाला है तो सभी से ही कहना है कि उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए।

नाली में टिकैत नगर बाराबंकी से नाम है कुलदीप आकाश रिंकी पिंकी और सभी लिसनर्स को ओके। और महेंद्र दीपन जी का भी मेल आया है, कह रहे हैं कैसी हैं आप, उम्मीद है अच्छी हैं, ग्राम रूड़ जिला नागौर राजस्थान से, और बहुत ही प्यारा सा एक पोस्टर बनाकर भेजा है एफएम रेनबो लखनऊ 100.7 एफएम धड़कन लखनऊ की का, बहुत ही अच्छी बातें लिखी हैं और सड़क सुरक्षा पे लिखा है और गहरी बात कहना चाह रहे हैं कि अक्सर हम अपनी रफ्तार में खो जाते हैं लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रफ्तार से ज़्यादा ज़रूरी घर पहुँचना है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी ज़रूरी ज़रूरी बातें लिखी हैं, यातायात से रिलेटेड बातें लिखी हैं, सही कह रहे हैं, सड़क सुरक्षा सबसे ज़रूरी। और इसके साथ ही गुलफ्सा सिद्दीकी का मेल है संडीला से, कह रही है पिछला प्रोग्राम बहुत अच्छा था, गाने बहुत अच्छे लगे, संदेश है कि हम सबको अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और घर की ही नहीं सिर्फ घर के बाहर भी महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और देखें अगला मेल है, ये कुछ रिपीटेड मेल्स भी आ जाते हैं पर हम आपके जनरली मेल्स पढ़ लेते हैं। भैया मोनू सेठ भी यही कह रहे हैं कि घर के बड़े बुजुर्ग हमारे परिवार की नींव और संस्कारों की जीवंत मिसाल हैं और उनके साथ प्रेम का और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। ये राजेश कुमार जी कह रहे हैं कि तड़कती भड़कती आयुषी जी गुड मॉर्निंग, आप कैसी हैं, गर्मी का मौसम है, इस मौसम में अपना और अपनों का ख्याल रखें, महिलाएं जब छोटे बच्चों को घर से लेकर निकलें तो हल्का कपड़ा उनके ऊपर डाल दें जिससे बच्चों का भी ख्याल रखा जा सके। तो मैंने कोशिश की है कि हमने आपके सारे मेल्स पढ़ लिए हैं और आपको कोई शिकायत नहीं होगी। थैंक यू सो मच। संदेश आपके गीत हमारे आपके संदेशों के बिना उतना ही अधूरा है जितना हम आपसे बात किए बिना, और आपका और रेडियो का हमारा जो रिश्ता है वो तो एकदम अमेजिंग है और ये वो मोहब्बत है जो कई कई बार होती है। सो आयुषी को दीजिए संदेश आपके गीत हमारे से इजाजत और प्यारा सा गाना इंजॉय करिए, इसके बाद आपके साथ जुड़ेगी एक प्यारी सी और आवाज और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। 100.7 FM सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आज घर सूने हो रहे हैं और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, यह तथ्य मन को व्यथित करता है। आज विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर एक संवेदनशील नागरिक होने के नाते हमें इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है कि सनातन संस्कृति में माता पिता और गुरु को साक्षात

ईश्वर माना जाता है। वृद्धजनों का सम्मान केवल संस्कार नहीं बल्कि हमारी गौरवशाली सभ्यता की पहचान है। वृद्धजनों और निराश्रित महिलाओं का सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए ही प्रदेश सरकार ने 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने का निर्णय लिया है। उन्होंने लिखा है कि संयोग से इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अवश्य अपनाएं। अयोध्या में राम मंदिर के दान घोटाले को लेकर चल रही जांच के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने एक बार फिर SIT जांच पर भरोसा जताया है। अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जिस तेजी से SIT का गठन किया वह अपने आप में प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने बताया कि SIT के तीनों सदस्य शीर्ष स्तर पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद अयोध्या पहुंचेंगे और जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि उन्हें नहीं लगता कि अब जांच में किसी प्रकार की ढिलाई बरती जाएगी। नृपेंद्र मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि SIT को राम मंदिर प्रशासन की ओर से हर संभव सहयोग दिया जाएगा, साथ ही जिला प्रशासन ने भी जांच में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। फतेहपुर जिले के बहुआ ब्लॉक की घमहरी ग्राम पंचायत में सोमवार रात ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रभारी मंत्री एवं खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, सुझावों एवं शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में स्वास्थ्य, ICDS, शिक्षा, कृषि, उद्यान व पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम के दौरान ICDS विभाग द्वारा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी कराया गया। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिले में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी जारी की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
1: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
0: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
1: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
2: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow,
6: धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों 12:05 और 15 सेकंड हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रु पर, जिसमें शालिनी आ चुकी है लेकर आपकी हेल्थ की बात। जी हाँ, वैसे जिसको ज़्यादा किसी की फिक्र होती है ना, वही हमारी सेहत की बात करता है। और हमारे एफएम रेनबो की को आप

की बहुत बहुत बहुत से ज़्यादा फिक्र रहती है। भाई हमारा काम है आपको जानकारी देना, आपको आगाह करना, आपके हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें एक्सपर्ट के द्वारा आप तक पहुंचाना, और उसके बाद आपका क्या काम है, हमारी बात को एकदम गांठ बांध लेना और उसे समझना, सोचना और उस पर काम करने की कोशिश करना। हाँ हम जानते हैं थोड़ा सा बदलने में वक्त लगता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है ना। तो आज क्या खास है, क्या बात है और क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं प्यारे से ट्रैक के बाद। तो जो जो लोग कहीं इधर उधर बिजी हैं, थोड़ा सा फ्री हो जाएं ताकि ये जो एक घंटा है बहुत अच्छी वाली जानकारी का, तो वो उस पर ध्यान दे सके। हाँ साइट वाला काम सारा करते रहें और कहीं ऐसा ना हो कि हमें सुनने के चक्कर में आपको डांट खानी पड़ जाए, ये भी नहीं करना है। और आज का जो प्रोग्राम है खासकर महिलाओं के लिए है, जो उनके अंदर डर है, परेशानी है, झिझक है, सब कुछ आज हम दूर करने वाले हैं। क्या है क्या नहीं ये सब पता चलेगा इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

12:13 का वक्त शालिनी आपके साथ लेकर आज है बात क्या। अच्छा बताइए कल क्या तारीख थी, जो बीत गया है कल उसकी बात करते हैं। जी हाँ, कल थी 14 जून तारीख। हाँ, और 14 जून को हम लोगों ने क्या सेलिब्रेट किया बताइए तो जरा थोड़ा सा। हाँ, हमारे अगर आपने एफएम रेनबो सुना होगा तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जी हाँ, कल हमने विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड डोनर डे, ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया था। जी हाँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। हमारा जो इस बार का थीम थी वो थी मानवता की एक बूंद रक्तदान करें जीवन बचाएं। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं इसके बारे में। दोस्तों पता है रक्त बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें ब्लड ना मिलने की वजह से अपनों से दूर भी जाना पड़ जाता है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स तब फेस करनी पड़ती हैं जब आप अपने आसपास के हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर जाएं देखें, या कोई हमारा करीबी हमारे परिवार का व्यक्ति बीमार पड़ता है। भगवान ना करे ऐसा कभी आपके साथ हो, लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पाँव पड़ी ना बेवाई वो का जाने पीर पर आई, ये कहावत सुनी है ना, तो सेम इस पर बिल्कुल फिट पड़ती है। तो बस इसीलिए बहुत सारी जानकारी देने के लिए आज हम हैं आपके साथ, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी हैं। वो क्या बताने वाले हैं आपको पता है, जब ब्लड डोनेट करने की बात होती है तो अक्सर देखा गया है कि हमारी महिलाएं थोड़ा सा पीछे रहती हैं। हाँ, जब लेकिन अपने घर की बात आती है तो वो युद्ध करने के लिए क्या आग में भी कूदने के लिए तैयार रहती हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि महिलाएं सोचती हैं कि उनका हीमोग्लोबिन कम होगा, उनको वीकनेस है, उनको पैरों में दर्द है, फिर हम घर का काम कैसे करेंगे, और साथ ही साथ जो मासिक धर्म होता है महीने का उस समय और सोचा जाता है कि इस समय तो हम रक्तदान कर ही नहीं सकते। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मोनोपॉज के बाद क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, और इन

0: सारी बातों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट हैं। कौन है? प्रोफेसर तुलिका चंद्रा जी। जी हाँ, और वो हमें बताने वाली हैं ढेर सारी जानकारी कि किस तरह से महिलाएं भी हमारी आगे आ सकती हैं इस नए काम के लिए। और पता है तुलिका चंद्रा मैम कहाँ से हैं? ये डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से हैं और हमें इसके बारे में आज जागरूक करने वाली हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडियो में डॉक्टर तुलिका चंद्रा का स्वागत करते हैं।
1: एफएम रेनबो के समस्त श्रोताओं को बहुत बहुत उनका सत्कार और स्वागत। और शालिनी जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया एफएम रेनबो में, जिससे कि समाज में स्वैच्छिक रक्तदान के बारे में मैं कुछ अपनी धारणाएं उनको बता सकूं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। सबसे पहले मैम ये जानेंगे कि महिलाओं के लिए रक्तदान कितना सुरक्षित है। जैसे कि अभी हमने बात करी ना कि महिलाएं हमें हमारी ज्यादा घबराती हैं, उसके बारे में बताएं।
1: बहुत जरूरी सवाल है ये शालिनी जी। महिलाओं को रक्तदान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रक्तदान सुरक्षित है कि असुरक्षित, ये तो दूसरी बात है, लेकिन पहली बात है इमरजेंसी ज़रूरत, क्योंकि महिलाएं एक ऐसी महिलाएं जो होती हैं अपनी प्रसव के थ्रू गुजरती हैं जिसमें उनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। और अक्सर हिंदुस्तान में देखा जाता है कि जो गांव की महिलाएं होती हैं वो पहले अपने परिवार का ख्याल रखती हैं और फिर अपना ख्याल रखती हैं, और जब वो प्रेग्नेंट भी होती हैं तब भी शायद अपने स्वास्थ्य का इतना ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से एक नॉर्मल रूटीन में उनकी हीमोग्लोबिन कम हो रहा बहुत कम हो जाता है। और प्रसव के समय उनको रक्तदान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उनकी जीवन की सुरक्षा रक्तदान पे ही डिपेंडेंट है। आज के देखिए कि जहाँ पे मैटर्नल मोर्टैलिटी रेट, मतलब प्रसव के समय महिलाओं की जो मृत्यु हो जाती है, वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको उचित मात्रा में रक्त नहीं मिल पाता और उनके अंदर शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है कि बिना रक्त के वो अपने और अपने बच्चे की जान बचा पाए।
0: तो इसका मतलब समझे कि महिलाओं को रक्तदान अपने लिए, खुद के लिए करना है कि जब जरूरत पड़े तो उन्हें समय पर रक्त मिल सके। मैम, क्या महिलाएं पुरुषों की तरह नियमित, मतलब रेगुलर रूप से रक्तदान कर सकती हैं या उनके लिए कुछ अलग विशेष इंस्ट्रक्शंस होते हैं?
1: जब पूरा संसार में महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, तो जो भ्रम है कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती, वो गलत है। महिलाएं नियमित रूप से रक्तदान कर सकती हैं, बस फर्क ये है कि वो हर 4 महीने में करती हैं और पुरुष हर 3 महीने में नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। और जो महिलाएं नियमित रूप से रक्तदान करती हैं, सौभाग्यशाली होती हैं कि रक्तदान के योग्य होती हैं, वो सदा स्वस्थ रहती हैं, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन हर वक्त सही रहता है।
0: अच्छा, कहा जाता है कि मैम एक कोई व्यक्ति रक्तदान जब करता है वो कई लोगों की हेल्प करता है, उससे कई लोगों को मदद मिलती है, वो कैसे? दोस्तों 12:18 हो चले हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम, और जो कि बताने जा रही हैं कि एक व्यक्ति के रक्तदान करने से कितने लोगों को मदद मिलती है।
1: शालिनी जी, आपको पता है कि ये रक्तदान जो है आज की ब्लड कंपोनेंट्स का जमाना है, और आपके एक रक्तदान से 3 या 4 लोगों की जान पड़ जाती है। प्लेटलेट्स के बारे में तो आप जानते हैं, जब डेंगू होता है तो कितने ज्यादा प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, हर आदमी के प्लेटलेट्स की कमी होती है। प्लाज्मा, जब आपको कोई लिवर डिजीज होती है, कोई फ्रैक्टर्स की कमी होती है, तो प्लाज्मा की जरूरत होती है। और हीमोग्लोबिन की कमी में तो आपको PRBC की जरूरत होती होती है। और इन 3 कंपोनेंट से केवल एक रक्तदान से बन जाते, तो आप 3 लोगों के 3 परिवारों के बुझते हुए चिरागों को जला देते हैं, क्या उस अन्नदाता को बचा लेते हैं। तो एक रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है और इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता।
0: तो दोस्तों सुना ना, है छोटी सी चीज लेकिन समझने में बड़ी लगती है, लेकिन जब आप समझ जाते हैं ना तो आप खुद जागरूक होते हैं और अपने आसपास लोगों को भी जागरूक करते हैं। मैम, तो आप अब बताइए ना किस तरह के लोग रक्तदान कर सकते हैं और कौन कौन नहीं कर सकता है, इसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को बताएं।
1: बहुत ज़रूरी सवाल है जो कि शालिनी जी, ये चीज़ जो पूछी जाती है, बहुत सारे लोगों के मन में मिथ्या है, भ्रम है, और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि हम रक्तदान कर सकते हैं कि नहीं। पहली बात है कि रक्तदान करने के लिए प्रेरित होना, फिर ये सोचना कि हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं। जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी कैटेगरी है, 18 से 65 वर्ष के मध्य कोई

0: भी रक्तदान कर सकता है 60 वर्ष तक। अगर एक बार रक्तदान नहीं किया है तो 60 वर्ष तक कर सकते हैं, अगर एक बार भी जिंदगी में रक्तदान किया है तो आप 65 वर्ष तक कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वजन 50 किलो से ज्यादा होना चाहिए, आपकी हीमोग्लोबिन 12.5% से ज्यादा होनी चाहिए जिसकी जांच ब्लड बैंक में ही होती है। इसके अलावा आपको कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं होना चाहिए, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, आप खाली पेट नहीं होना चाहिए, कुछ खा के आना चाहिए। रक्तदान करने से 2 दिन पहले आपको अल्कोहल का सेवन नहीं करना है, 3 दिन पहले कोई दर्द की दवा ना खाएं जिससे कि आपकी प्लेटलेट्स जो जाए वो किसी मरीज को उसका फायदा हो। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं वो जब आप रक्तदान करने जाएंगे तो पूरा एक चिकित्सीय परीक्षण होगा, आपको सब कुछ देखा जाएगा। अगर आप रक्तदान करने योग्य हैं तभी आपसे रक्तदान कराया जाएगा, और अगर योग्य नहीं है तो आपको थोड़े से सुझाव दिए जाएंगे कि आप कैसे अपना स्वास्थ्य और इम्प्रूव करके पुनः रक्तदान कर सकते हैं।
1: मामा, ये रक्तदान की कितना समय लगता है रक्तदान करने में?
0: रक्तदान करने में मात्र 5 से 6 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर आप कभी भी ब्लड बैंक में जाते हैं तो आपका पूरा अपना नाम डिटेल फॉर्म भरते हैं, आपकी जांचें होती हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में 1 घंटा लगता है। तो किसी की जान बचाने के लिए 24 घंटे में 1 घंटा देना, वो भी 4 या 3 महीने में एक बार, बहुत बड़ी बात नहीं होती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। मैम, ये रक्तदान की जो प्रक्रिया होती है वो कितनी सुरक्षित होती है?
0: रक्तदान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से सुरक्षित होती है। बहुत सारे लोग उस नीडल को देख के कहते हैं कि जैसे आप सुनते हैं कि भाई संक्रमण ना हो जाए हमें सुई से, तो पहली बात जो सुई होती है जो बैग में यूज होती है रक्तदान के लिए वो ट्यूब से अटैच होती है, कोई चाह के भी उसको रियूज नहीं कर सकता, और उसी वक्त उसकी जो ब्रेकिंग है जो कवर है वो खोला जाता है और वो बिल्कुल सेफ होती है। और अगर साइज जरूर बड़ा होता है लेकिन दर्द बिल्कुल नहीं होता। चींटियां तो सबको काटी होंगी अपनी जिंदगी भर, तो एक दर्द जितना चींटी ने काटा होता है उतना ही दर्द होता है जब आपने लगती है, उसके बाद कोई दर्द नहीं होता 5-6 मिनट। और उसके रक्तदान करने के बाद आपको थोड़े रिफ्रेशमेंट्स भी मिलते हैं, 10 मिनट रोका भी जाता है, उसके बाद पूर्ण सम्मान के साथ आप जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात का रिफ्रेशमेंट मिलता है मैम, लेकिन रक्तदान के बाद कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी बताएं।
0: रक्तदान के बाद जैसे बहुत जरूरी बातें हैं ये सब आप जो पूछ रही हैं, क्योंकि मन के लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, शायद उनको कभी जवाब नहीं मिलता, तो इस बहाने उनको ये शायद जवाब मिल जाए, आशा करती हूँ, जिससे वो प्रेरित होकर रक्तदान करने के लिए आए। रक्तदान करने के पास जो कहते हैं 4 घंटे तक थोड़ा पानी ज्यादा पीना चाहिए, और 4 घंटे तक बहुत धूप में काम नहीं करना चाहिए या बहुत लंबी ड्राइव में नहीं जाना चाहिए, या जिस हाथ से रक्तदान किया है 4 घंटे तक उससे बहुत भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, आप सुरक्षित और आराम से रक्तदान कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, जो मन का डर है वो धीरे धीरे गायब हो रहा है और हम अवेयर हो रहे हैं, खासकर हमारी महिलाएं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, और जो नहीं जुड़ी हैं वो जो महिलाएं हैं वो उनको ये बातें बताने वाली हैं। दोस्तों, अब बारी है प्यारे से ट्रैक की, लेकिन इसके बाद ढेर सारी बातें अभी भी जानना है हमें प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम से, जो कि बताने वाली हैं कि किन परिस्थितियों में महिलाओं को रक्तदान नहीं करना चाहिए और हीमोग्लोबिन का स्तर रक्तदान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या पीरियड्स के दौरान या तुरंत बाद हमारी महिलाएं रक्तदान कर सकती हैं या नहीं, ये सारे प्रश्नों के उत्तर अभी हम जानेंगे इस प्यारे से ट्रैक के बाद।

12:30 हो चले हैं दोस्तों, और ये वक्त अच्छा 30 सेकंड बता दिया हमने भाई, 12:30 हो चले हैं और 3 सेकंड हैं, और प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा, जिसमें शालिनी है आपके साथ, आज प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम के साथ में, जो कि कहाँ से हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से हैं, और आज हमारी महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, उनके अंदर जोश भरने का काम हो रहा है, और बहुत सारी जानकारी हमने मैम से ले ली है कि महिलाओं के लिए रक्तदान कितना सुरक्षित है, वो कब कैसे करें।

0: रक्तदान की प्रक्रिया क्या होती है और रक्तदान करने के बाद हमें क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। और अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे दिमाग में बहुत सारा मिथ रहता है कि हमें तो रक्तदान करना ही नहीं है, तो वो खास परिस्थितियां मैम बताने वाली हैं कि हम कब, यानी कि महिलाएं कब रक्तदान ना करें।
1: जो महिलाएं जो होती हैं, जब रक्तदान, जब उनके मासिक धर्म चल रहा होता है तब वो रक्तदान नहीं कर सकती हैं, या प्रेग्नेंट होती हैं तब नहीं कर सकती हैं, या लैक्टेशन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती हैं तब नहीं कर सकती हैं, अन्यथा और सब टाइप में वो वैसे ही रक्तदान कर सकती हैं जैसे एक पुरुष कर सकता है।
0: तो समझ के ना, खास परिस्थितियां और इन परिस्थितियों को आपको ध्यान में रखना है। मैम, ये जो हीमोग्लोबिन के बारे में आपने बताया ना, इसका स्तर बताया, तो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो रक्तदान में क्यों इम्पोर्टेंट होता है ये भी जरा बताएं।
1: देखिए, जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो 12.5% हीमोग्लोबिन करते हैं। महत्वपूर्ण एक है कि रक्तदाता अगर 12.5% के या इसके ऊपर है तो स्वस्थ है,

0: आपको ध्यान में रखना है। मैम, ये जो हीमोग्लोबिन के बारे में आपने बताया ना, इसका स्तर बताया, तो हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो रक्तदान में क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये भी जरा बताएं।
1: देखिए, जब आप रक्तदान करने जाते हैं तो 12.5% हीमोग्लोबिन करते हैं। महत्वपूर्ण एक है कि रक्तदाता अगर 12.5% के या इसके ऊपर है तो स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। और ये तो रक्तदाता का फायदा है, और कोई स्वस्थ आदमी है, उसके ब्लड में भी कोई कमी नहीं है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। और जो यूनिट वो रक्तदान करता है तो उसके 12.5% हीमोग्लोबिन होती है जो किसी मरीज को जाती है। अब किसी मरीज का हीमोग्लोबिन 9 है और उसको हम 8 ग्राम हीमोग्लोबिन का ब्लड चढ़ा देते हैं तो उसको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। लेकिन अगर उसको हम 12.5% हीमोग्लोबिन का ब्लड चढ़ाते हैं तो उसका हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी से 8 की जगह 9 हो जाएगा। तो मरीज को फायदा तभी होगा जब उसको जो रक्त यूनिट मिल रही है उसका हीमोग्लोबिन सही है और वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है।
0: तो दोस्तों, अब ये जो आपका भ्रम है कि हमारा हीमोग्लोबिन कम है तो हम नहीं दे सकते हैं, हम वीक हो जाएंगे, तो ये भ्रम थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, क्योंकि अगर कम हीमोग्लोबिन पर आप रक्तदान करते हैं तो जिसको फ़ायदा होना है उसको रक्त चढ़ाने पर कोई भी फायदा नहीं होगा। मैम, जैसा कि आपने बताया कि मासिक धर्म के दौरान महिलाएँ रक्तदान नहीं कर सकती हैं, क्या उसके तुरंत बाद रक्तदान किया जा सकता है?
1: ये भी ज़रूरी है महिलाओं के लिए कि जब मासिक धर्म खत्म हो जाए तो वो रक्तदान कर सकती हैं। लेकिन याद रखिए, तब भी आपकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी। तो मासिक धर्म का मतलब ये नहीं है कि अगर हमारे अंदर से थोड़ा खून जा रहा है तो हमारी हीमोग्लोबिन कम हो जाए। आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा होना चाहिए, आपको उसके लिए, महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के लिए इतना सजग होना चाहिए कि मासिक धर्म के बाद भी 12.5% से नीचे ना जाए और उसके तुरंत बाद आप रक्तदान करने में सक्षम हो।
0: बिल्कुल सही बात बताई है, आपको इतना जागरूक रहना है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि हेल्थ अगर आप अच्छी रहेंगी तो हर तरह से आप सबकी मदद कर सकती हैं। मैम, ये जो प्रेग्नेंट वुमेन की बात बताई ना, तो गर्भ अवस्था और प्रसव के बाद रक्तदान को लेकर क्या सलाह दी जाती है ऐसी स्त्रियों को?
1: गर्भावस्था में आप रक्तदान नहीं कर सकते, जैसे पहले भी बताया आपको, और प्रसव के बाद भी 1 साल तक आप नहीं कर सकते हैं, और बच्चे को अगर आप दूध पिला रही हैं तब भी आप रक्तदान नहीं कर सकती हैं। लेकिन देखिए, ये टेम्पररी फेज है, उस वक्त शायद आपको खुद ही ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है इसलिए आप रक्तदान नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो रक्तदान की वजह से ही जिंदा रहती हैं, उनका प्रसव ठीक रहता है, उनके बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो आज हर महिलाओं का कर्तव्य है कि वो स्वस्थ रहें, सजग रहें और रक्तदान के लिए योग्य बनाएं अपने को और नियमित रूप से रक्तदान करें।
0: देखिए, हर बात पर मैम एकदम जोर देकर कह रही हैं कि हाँ, आप स्वस्थ रहें ताकि आप रक्तदान कर सकें और इस नेक काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैम, महिलाओं में जो एनीमिया की एक प्रॉब्लम होती है ना, खून की कमी, और रक्तदान के बीच का क्या संबंध है? क्योंकि सभी कहते हैं अक्सर, अरे हम महिलाएं हैं, हमारे शरीर में तो खून की कमी होगी ही, इसके बारे में थोड़ा सा जागरूक करें हमारी महिलाओं को।
1: महिलाओं में जैसे हमने पहले कहा, अनीमिया बहुत कारण होते हैं। पहली बात है, जो यंग लड़कियां होती हैं वो ज्यादातर डाइटिंग या पतला रहने के चक्कर में हेल्दी फूड नहीं खाती हैं और उसकी वजह से उनकी हीमोग्लोबिन कम हो जाती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। अनीमिया देखिए एक सिम्टम है, एक बीमारी का सिम्टम है, वो बीमारी खुद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। तो जब भी आपको हीमोग्लोबिन कम हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका हीमोग्लोबिन कम है और उसको बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। जब आप रक्तदान करने आते हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन की जांच होती है, और जैसे मैंने बताया कि आज आपकी हीमोग्लोबिन की जांच हुई, आपका कभी हीमोग्लोबिन कम है, तो आप ऐसे तो शायद कभी जाते ही नहीं है। लोग 6, 7, 8 हीमोग्लोबिन आराम से घूमते रहते हैं, कभी जांच भी नहीं कराते। अब आपको पता है, अब रक्तदान नहीं कर सकते क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है, तो आप अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपना आहार सब कुछ इम्प्रूव करेंगे कि आप उस लेवल तक पहुंच जाएं और स्वस्थ कहलाएं। ये आपके लिए एक मोटिवेटर है कि अगर आप रक्तदान करने जाते हैं और आपका हीमोग्लोबिन कम है तो इसके मतलब अनीमिया है, तो अनीमिया को पूरी करने और ठीक होने की जिम्मेदारी और जो फोर्स है वो रक्तदान ही आपको देता है, जिससे कि आप स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए लाइक हो सकें।
0: तो दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना। जब हम कहते हैं ना हमारे अंदर खून की कमी है, क्यों ही ऐसी चीज़ें रहें कि हम ये शब्द बोले, तो खुद को हेल्दी रखना है। और दोस्तों, पता है हेल्दी रखने के लिए क्या करना है? हेल्दी लाइफस्टाइल अपनानी है, और हेल्दी लाइफस्टाइल हमारी सुबह से शाम तक के किए गए क्रियाकलापों पर डिपेंड करती है। लेकिन और उसके लिए पता है योग बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि ये योग की बात कहाँ से आ गई?

अगर महिलाएं प्रॉपर योग करें ना तो उनका पीठ दर्द, उनका पैरों का दर्द, उनका कमर दर्द, सारी चीजें फुर हो जाती हैं। लेकिन करें कब? बहुत सारी महिलाओं को कहना है भाई दिन भर किचन में हो गया, कुछ ऑफिस में समय चला गया, कब समय निकालें। लेकिन जो ये शब्द है इसी को बदलना है दोस्तों, कहना है कि अपने लिए समय निकालना है और वो भी इंपॉर्टेंट समय, मॉर्निंग का या इवनिंग का, जब भी आपको समय मिले अपने लिए निकालिए 10 से 15 मिनट। योग जरूरी है और बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये भी हम आपको बता दें, क्योंकि इस बार स्वस्थ आयु के लिए योग, योग फॉर हेल्दी एजिंग ये थीम है इस पर योग का, जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं 21 जून को। उस दिन सभी लोग फोटो डालेंगे, पिक्चर डालेंगे, स्टेटस लगाएंगे, लेकिन क्या हम प्रॉपर कर रहे हैं योग? अगर आप करते हैं तो हमें क्या कर सकते हैं, ईमेल करिए fmakashwani@gmail.com पर। और साथ ही साथ सुनते रहिए शालिनी को, प्रोग्राम सतरूपा में हेल्थ की कर रहे हैं हम बात आज, जिसके लिए प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम हमारे साथ हैं।

0: 12:41 हो चले हैं और हम आज बात कर रहे हैं सुरक्षित रक्तदान की, और वो महिलाओं के द्वारा कैसे किया जा सकता है। उसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम है, जो कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन से है। और मैम, अब जानना चाहेंगे कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं या जो स्टूडेंट्स छात्राएं होती हैं, वो सुरक्षित रूप से रक्तदान कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास वर्क बहुत होता है, उसके बारे में ज़रा बताएं।
1: बिल्कुल कर सकती हैं। कामकाजी महिलाएं आप हैं, हम हैं, और छात्राएं भी हम लोग रहे हैं, और हम लोग बचपन जहां आपने 18 क्रॉस किया, आप रक्तदान के लिए योग्य हो जाती हैं। तो आप देखिए, अगर आपने जिंदगी भर रक्तदान किया है 3-3 महीना या 4-4 महीने में, 4 महीने में, तो 1 साल में आप 3 बार रक्तदान कर सकती हैं, और आप समझिए कि बिल्कुल ही स्वस्थ जिंदगी जिएंगी, क्योंकि इसके मतलब आपका हीमोग्लोबिन 12.5% के ऊपर ही रहेगा, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। आपको कोई बीमारी नहीं है, और आप हर वक्त सजग रहती हैं अपना पूरा 4-4 महीने में पूरा चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए। तो उससे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो छात्राएं और कामकाजी महिला रेगुलरली, और टाइम भी अगर देखें, टाइम मुश्किल से 1 घंटा पूरे 4 महीने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना।
0: बिल्कुल सही बात है। और ये जब नेक काम कोई हम करते हैं, कोई सेवा भावना से किया गया काम, उसके लिए समय निकालना अपने आप में समय निकल आता है। अच्छा मैम, ये बताइए, जो पहली बार अगर महिलाएं रक्तदान कर रही हैं, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: पहली बार रक्तदान करने की महिलाओं को अपने मन से डर निकाल देना चाहिए, क्योंकि शालिनी जी, हमने देखा है कि डर और एक जो फीलिंग होती है कि मुझे रक्तदान करने के बाद कमजोरी आ जाएगी, वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर हो जाता है। तो आप सुनते हैं ना, इनको चक्कर आ गया देख के, वो गिर गई, वो इसलिए क्योंकि मन में डर है कि मेरे अंदर का खून निकला जा रहा है, क्योंकि पहली बार हमने रक्तदान कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, हमारे मन में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी मिथ्या बातें हैं। इसका एग्जांपल बताती हूँ कि जब छात्राएं हमारे यहाँ रक्तदान करने आई, तो जो छात्राएं रक्तदान कर रही थी तो बिल्कुल ठीक थी, उनको कोई दिक्कत नहीं हुआ। और बेहोश कौन हुई जी? वो छात्राएं जो दूर में से देख रही थी रक्तदान होते हुए, वो डर के मारे बेहोश हो गई। तो देखिए, कहते हैं डर के आगे ही जीत है, पहला कदम बढ़ाइए। जिस दिन आप 1 रक्तदान कर लेंगे, आपके मन से रक्तदान का डर हर वक्त के लिए हट जाएगा।
0: मैम, आप तो कई सारी चीज़ें देखती होंगी आपके साथ, जो अभी एक स्टोरी बताई है छोटी सी, कैसे हम अपने परिवार और हमारे समाज के महिलाओं को रक्तदान करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, और ये बात हमारे स्टूडियो से, हमारे एफएम रेनबो से जाएगी, तो तमाम सारे श्रोता सुन रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा।
1: बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि हम बहुत कम महिलाएं हैं जो आती हैं। अगर हमारे पास 100 रक्तदाता आते हैं, तो मुश्किल से 2-3% ही महिलाएं होती हैं। बहुत बार हमने सोचा ऐसा क्यों, अगर हम महिलाओं के स्कूल में जाते हैं तब भी डरती हैं, मन में जैसे कहते हैं साइकोलॉजिकल डर है, ये कहीं ना कहीं ये समाज ने एक कमजोरी का एहसास महिलाओं को कराया है कि भाई तुम कमजोर हो, ऐसा कहीं नहीं है। वहीं में जो एनसीसी की महिलाएं होती हैं, जो एनएसएस में काम करती हैं, वो आराम से रक्तदान करती हैं, फिट होती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता, वो भी तो एक समाज का हिस्सा है, वो भी तो एक महिलाएं हैं। तो जो समाज ने उनके अंदर डर बैठा दिया है कि तुम कमजोर हो, तुम रक्तदान नहीं कर सकती, उससे वो उनके स्वास्थ्य के साथ स्वयं ही खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं पैदा होता कि मुझे रक्तदान करना है, मुझे स्वस्थ रहना है। और हमारा काम है कि हर महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वो ताकतवर है, उनके अंदर मानसिक स्टेबिलिटी है, उनके अंदर कोई भ्रम नहीं है, और उनके हिम्मत बनाए कि जाके रक्तदान करें। घर में काम करने वाली, एक चूल्हा बर्तन करने वाली, बाहर काम करने वाली महिलाएं, सब में से कोई कमजोर ना हो, सभी रक्तदान के लिए अपने आगे आएं और समाज को दिखा दें कि हम भी आपके साथ कंधे से कंधा चला के, और स्वस्थ रहने का हक हमें भी है।
0: बिल्कुल सही बात कही मैम आपने। और मैम, आप तो तमाम सारी चीज़ें सुनती होंगी, आपके पास लोग आते होंगे, महिलाओं में रक्तदान को लेकर और भी कई सारे मिथक होंगे कि नहीं करना चाहिए, तो सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है आपको?
1: रक्तदान में महिलाओं को बस ये कहते हैं कि हमें ब्लड को देखने से डर लगता है, हमें सुई से डर लगता है, जो बहुत सारी लड़कियां, यंग लड़कियां कहती हैं। मैंने बार बार बता दिया आपको, सबको एक छोटी सी चींटी काटनी होती है, वो तो आपको ऐसे भी काट चुकी होती है, आपको पता ही नहीं चलता। एक बार जब आप रक्तदान कर देंगे, जो वो डर अपने आप निकलेगा, जो भय निकलेगा कि मुझे, मेरा क्या होगा, मुझे कमजोरी आ जाएगी, नहीं, अगर आप रक्तदान करने के योग्य हैं, तो आपको कभी कोई कमजोरी नहीं आएगी, आप ज्यादा सुरती, ज्यादा ऊर्जा

0: पान होंगी और अब ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएंगी, इसलिए एक बार रक्तदान करके जरूर देखिए।
1: मैम, अब हमारी महिलाएं एकदम जागरूक हो चुकी हैं और रक्तदान करने के लिए एकदम प्रेरित हैं, कब कैसे कहां जाना है ये सोच रही हैं। तो हम बता दें, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन डिपार्टमेंट में आप जाएं और आप कभी भी किसी भी समय रक्तदान कर सकती हैं। मैम, अब बताइए, जो महिलाएं रेडी हैं रक्तदान करने के लिए, उन महिलाओं का खान पान और जीवन शैली, कहते हैं ना लाइफ स्टाइल, के लिए क्या ध्यान रखना है उन्हें?
0: महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि अपने खाने में जो हरी सब्जियों का सेवन करें, अगर वो नॉनवेज नहीं खाती, मांसाहारी नहीं, तो शाकाहारी में खूब हरी सब्जियां खाएं, मांसाहारी भी हरी सब्जियां खाएं, जिससे कि उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रचुर रहे, उनके अंदर जो उनका GIT या कोई प्रॉब्लम ना हो, स्ट्रेस ना लें जिससे ब्लड प्रेशर ना रहे, मीठा कम करें जिससे डायबिटीज ना रहे। तो अगर इन सब चीज़ों का पालन करेंगी तो उनका वो किसी पुरुष से कम नहीं है, उन वो रक्तदान करने में सदैव सक्षम होंगी। और अपने खान पान के लिए और अपने जो खाना दूसरों को खिलाती हैं, साथ में अपने को भी खाना और अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाना उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी।
1: अच्छा मैम, एक चीज़ आपने ये कहा कि जब महिलाएं हर चौथे महीने पर जब रक्तदान करती हैं तो अपनी नियमित जांच करा लेती हैं, तो ये जो नियमित जांच कराना है ना, महिलाओं को कैसे सुरक्षित रक्तदान करने में मदद करता है?
0: जो नियमित स्वास्थ्य जांच महिलाओं को रक्तदान में बहुत मदद करता है। जैसे मैंने बताया कि उन्हें पता हीमोग्लोबिन कम है, उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि हम कम अनीमिया है हमें। वो तो जब आप रक्तदान करने जाते हैं, आपकी जांच होती है, एक परीक्षण, पूरी परीक्षण, निशुल्क परीक्षण होता है, तब आप समझ में आते हैं कि मुझे ये बीमारियां हैं और मुझे ये ठीक करनी है। क्योंकि कहते हैं कि अज्ञानता की वजह से आप अपने स्वास्थ्य को जो नुकसान कर रहे हैं, वो रक्तदान की वजह से आप सजग हो जाते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कार्य करने लगते हैं।
1: देखा दोस्तों, कई सारे फायदे हैं और बहुत अच्छी जानकारी प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम से हमें मिल रही है। और अब भी हम जानेंगे मैम से एक प्यारा सा संदेश, लेकिन इस प्यारे से गाने के बाद सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों 12:53 और 40 सेकंड का वक्त हो चला है और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा यहीं पर वाइंड अप। लेकिन इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले आज के प्रोग्राम से रिलेटेड महिलाओं के लिए खास संदेश प्रोफेसर तुलिका चंद्रा मैम की तरफ से।
1: शालिनी जी, आप भी महिलाएं और मैं भी महिला हूं, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें, आपने बहुत सही बात की कि एक संदेश जाना चाहिए हम सबका, आपका मिलके महिलाओं को, कि महिलाएं जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, रक्तदान करने आइए, कर पाएं या ना कर पाएं, अगर कर पाती हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, सजग हैं, आप किसी से कम नहीं हैं, और अगर नहीं भी कर पाती हैं तो कारण जानिए और उसके ऊपर ओवरकम करिए, क्योंकि उसके लड़ने की कोशिश करिए और आगे इतनी स्वस्थ एंड सजग हो जाइए कि स्वैच्छिक रक्तदान में एक समय ऐसा है जब महिलाएं जब आधी आबादी हैं तो आधे लोग रक्तदान करने वाले 2-3% नहीं 50% महिलाएं हों, और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा।
0: बहुत बढ़िया बात। और अब मैम होने वाला है, देखिएगा आपका प्रतिशत बढ़ेगा क्योंकि हमारे FM रेनबो के जरिए तमाम सारी महिलाएं सुन रही हैं और वो ज़रूर आएंगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, और अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगी। और दोस्तों, हेल्थ कैसे अच्छी होगी? योग करके। और योग के लिए आपको समय निकालना है। बहुत सारे आसन होते हैं, उसमें से आपको शुरुआत करनी है धीरे धीरे धीरे करके, और एक दिन आप पक्का योग के मास्टर भी बन जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि एक महिला जब घर पर योग करना शुरू करेगी तो उसे देखकर बच्चे करेंगे और बुजुर्गों को भी आपको कराने हैं, घर के जो वृद्ध जन हैं उनको, उनका भी खास ख्याल रखना है। क्योंकि जब, पता है, जब हड्डियों के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं? एक्सरसाइज करिए। और अब क्या कहते हैं? योग करिए। जी हाँ, आपको जब समय मिले, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि हम दोपहर में भी कर रहे हैं, रात में भी कर रहे हैं। मॉर्निंग और इवनिंग का जो सही समय है आपके लिए, कैसे क्या करना है, खाना खाया है तो क्या करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है दोस्तों। और 21 जून को करने वाले हैं ना योग? जी बिल्कुल, रेडी हो जाइए। और अब प्रोग्राम शत्रुपा को यहीं पर करते हैं वाइंड अप इस प्यारे से ट्रैक के बाद, लेकिन शालिनी रहेगी आपके साथ अभी नेक्स्ट प्रोग्राम ओ छुपी तेरी बात में। आज क्या होने वाला है खास, ये तो पता चलेगा उसी प्रोग्राम में।

नमस्कार, दोपहर के एक बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल निवो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। वित्त मंत्री ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवंबर से शुरू होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है और लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर किया जा चुका है। नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक अपना कार्य पूर्ण कर वापस चली जाएंगी। इसके बाद परिसर के संचालन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी ट्रस्ट के पास होगी। बैठक में रामकथा संग्रहालय को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि वर्तमान गति से कार्य चलता रहा तो इस वर्ष दिसंबर तक श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय भी खोल दिया जाएगा।

वाराणसी में नमो घाट पर आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर आयुष मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु व लघु एवं सूक्ष्म उद्योग राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंत्री समेत सैकड़ों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं ने योग प्रोटोकॉल के तहत योग किया। आयुष मंत्री ने योग के स्वस्थ जीवन, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच का आधार बताते हुए सभी नागरिकों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों ने नागरिकों के लिए बुनियादी सुविधाएं सुलभ बनाई हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि इन उपायों से मध्यम वर्ग सशक्त बनकर देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान दे रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

दोस्तों 1:04 हो चले हैं, प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात की हो चुकी है शुरुआत। और आज हम लेकर आए हैं आपकी ही आवाज को कैद करके, जी हाँ आप तक ही पहुंचाएंगे क्योंकि आज है सोमवार। और आप भी हमें ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ खास लोगों की बातें हैं आप तक पहुंचानी है। और क्या वो बात है कि आपकी खुशी किस चीज़ में है, इस बात के लिए आपको हमें मेल करना है और लोगों की बात भी आप तक पहुंचेगी। अभी सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक।

ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर वाक़े नोएडा बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे से कॉमर्शियल परवाज खिदमात आज से शुरू हो गई। पहले मरहले में 1.2 करोड़ मुसाफिरों की कुव्वत वाला ये एयरपोर्ट मुस्तकबिल में 22.5 करोड़ मुसाफिरों को सहूलत फराहम करेगा। आखिरी मरहले में 5 रनवे होंगे जो इसे दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करेंगे। मगरबी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और आसपास की रियासतों के लिए ये एविएशन गेट बनेगा। इंडिगो मरहलेवार तरीके से लखनऊ, बेंगलोर, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़ और अमृतसर समेत 16 से ज़्यादा शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसके साथ दीगर उड़ान कंपनियां भी अपनी खिदमात फराहम करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयर

0: पोर्ट के पहले मरहले का अफ्तिताह 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की बुनियाद भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को रखी थी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 226 तरक्याती प्रोजेक्टों का अफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने रियासत के न्यूट्रिशन मिशन के दूसरे मरहले का भी आगाज़ किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए उत्तर प्रदेश एक बीमार रियासत से मुल्क की तरक्की के इंजन में तब्दील हो गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: वज़ीर आला ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ डिवीजनों में महकमा तामीरात आमा के काम का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका ओहदेदारान को हिदायत दी कि तमाम तामीराती कामों में तेजी लाई जाए और उन्हें मेयार के साथ वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने कल शाम गोरखपुर मंदिर के मीटिंग हॉल में महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों को जदीद मजामीन में महारत से आरास्ता करने और किसानों को खुद इन्हिसार बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमसाबाद में महाराणा प्रताप के 15 फुट ऊंचे मुजस्मे की नकाब कुशाई की। महाराणा प्रताप की बहादुरी, कुर्बानी और जद्दोजहद को याद करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 12 बरसों में हिंदुस्तान की आलमी शिनाख्त बदल गई है।
2: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरसों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों के तहत नुमाया तरक्की की है। इस सिलसिले की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ तरक्की और अवामी बहबूद के 12 साल के उन्वान से एक खसूसी सीरीज़ नशर कर रहा है। आज हम 2047 तक भारत के एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के हदफ को हासिल करने के लिए जदीद ढांचे की तामीर के लिए हुकूमत की कोशिशों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार।
0: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए दोबारा होने वाले इम्तिहान के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: रोज सफर की हमारी यूं शुरुआत होती है, सुबह 6 बजे पुष्पांजलि से पहली मुलाकात होती है। दिन भर का समय कैसे बीत जाता है, रेनबो अपना हर रंग मानो बिखेरता जाता है।
6: रंग दे तुम्हें गेरुआ।
5: रात में तब

0: सुकून आता है जब सदाबहार गीत कोई हमारे कानों में गुनगुनाता है।
1: मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को।
0: तमाम सारी जानकारी मनोरंजन के संग सिर्फ और सिर्फ FM रेनबो पर सुनना ना भूलें सुबह 6 से रात 12 बजे तक।

0: 1:22 हो चले हैं और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम उठो पे तेरी बात की। भाई प्रोग्राम तो शुरू हो चुका था, ढेर सारे ईमेल्स भी आ चुके हैं और तो क्या किया जाए बताओ, अक्कड़ बक्कड़ करें, कौन सा पहले लिया जाए? नहीं, सबसे पहले हम जिन लोगों की आवाज़ लेकर आए हैं उनकी बात आप तक पहुंचाते हैं, तो सुनिए इनकी खुशी किस बात में है।
1: हेलो, मैं अभिजीत, मैं लखनऊ का निवासी हूँ और मुझे जैसे पढ़ के जब थोड़ी बहुत थकान होती है तो अपने कमरे पे जाके सोना और फिर शाम में थोड़ा बहुत ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करना ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो सके, वो सबसे अच्छा लगता है। और दोस्तों के साथ भी घूमना फिरना वो तो चलता ही रहता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है।
0: और शिव पूजन लाल जी का मेल आ चुका है लखीमपुर खीरी से और इनका कहना है कि मेरी खुशी तो मेरे परिवार में है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं लिखाऊं, काबिल बनाऊं और परिवार को मैनेज करते हुए मस्ती के साथ जिंदगी बीते, इन लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। क्या बात है शिव पूजन जी, बहुत अच्छी बात लिखी है आपने। और ये मेल एक और आ चुका है रायबरेली से, पहाड़ीपुर से, रामराज, राजू, भानु, अखिलेश, नन्हू, बबलू, पप्पू, नीरज, मनीष, मधु की तरफ से है और हमारी खुशी सबसे ज्यादा रेडियो सुनने में है, रेडियो के बिना हम नहीं रह सकते। थैंक यू, थैंक यू। और अब सुनिए प्यारा से ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

आपको खुशी किस बात में ज्यादा होती है, इसके बारे में हमें मेल करना है। कई सारे लोगों का हमारे पास में मेल आया है कि आज का मुद्दा नहीं सुन पाए। भाई मुद्दा नहीं है, ये तो खुशी की बात है कि आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि आपको खुशी किस बात में सबसे ज्यादा मिलती है। और देखिए मेल आया है विनीत कुमार जी का, और इन्होंने कहाँ से लिखा है हमें, सीतापुर से ये हमें लिखकर भेज रहे हैं। और ये पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या खाते हैं जो इतना मीठा बोलते हैं। खाने का तो नहीं पता है विनीत जी, लेकिन आपका जो प्यार है उसका एहसास जरूर करते हैं और उसी एहसास से हम मीठा बोलते हैं। और हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड जो बात हो रही है, अगर आप उसका भी मेल करेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। और सुल्तान रजा जी का मेल आ चुका है, इन्होंने बरेली से कुतुब खाना सब्जी मंडी से मेल किया है, और इनके साथ में बहुत सारे लोगों के नाम हैं, रजा, जिशान, अफजाल, मोहसिन, सादिक, इकबाल। और मम्मी, इनका कहना है कि इन्हें सबसे ज़्यादा तब खुशी मिलती है जब इनके सामने इनकी मम्मी पापा रहते हैं और आते हैं। सही बात है, माँ पापा से बढ़कर खुशी क्या है। हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, यही हमारी दुआ है। और मेल हमारे बीच में आ चुका है मोहम्मद आसिफ, आपको बता दिया हमने कि हमारा आज का मुद्दा क्या है। और नाजिम उस्मानी जी, आप हमें सुन रहे हैं तो हमसे जुड़िए और हमारे प्रोग्राम में जो बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ फरमाइए। और पिंकू सोनी जी का मेल आया है टिकैत नगर बाराबंकी से, आप हमें सुन रहे हैं तो भाई सुन रहे हैं तो हमें एक बढ़िया से मेल करिए ना कि आपकी खुशी किस बात में है। और

0: सुधाकर जाधव जी का मराठवाड़ा से मेल आया है और ये योग के लिए कह रहे हैं, भाई व्यायाम बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस प्रोग्राम में उससे ज़्यादा ज़रूरी है जो हम बात कह रहे हैं उससे आप जुड़ें और बताएं आपकी खुशी किस बात में है। और आसिफ जी का मेल आ चुका है, इन्होंने लिखा है कि मेरी खुशी दूसरों की खुशी देख कर आती है। भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, तेलंगाना से आप हमारे साथ जुड़े हैं। और रामेश्वर जी का भी मेल आया हुआ है, इन्होंने मुंगसापुर कानपुर देहात से भेजा है, उमा कांति कमलेश निशा प्रज्ञा प्रतिमा वेद बाबू के साथ में, और आपने लिखा है कि अच्छा आपने हमारे प्रोग्राम का जो विषय है उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। रामेश्वर जी आप ज़रा बताइए आपकी खुशी किस बात में है, और अब इनकी भी सुन लेते हैं कि इनकी सबकी खुशी किस बात में है।
1: मेरा नाम अमित सिंह लुधियाल है, मैं नैनीताल का निवासी हूँ। आपने जो सवाल पूछा है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है, तो वो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अब पूरे दिन हम लोग अपना मतलब काम वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद पढ़ने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, लाइब्रेरी या रीडिंग रूम में पढ़ने के लिए आ जाते हैं, तो उस सब के बीच में जो समय निकाल के जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ शाम को बैठ के साथ बैठ के चाय पीते हैं, हंसी ठठोली होती है, जो अपनी बातें होती हैं, सबसे बढ़िया समय दिन का यही रहता है। इसके बाद तो आगे पीछे फिर सब हर चीज़ एक फॉर्मेलिटी की तरह रहती है कि हाँ उठना है, जाना है, बैठना है, पढ़ने जाना है, वाकई जो काम जो मतलब जिसमें मन से रहता है, वाकई मज़ा आता है, वो ये वाला काम रहता है कि चार लोग बैठ के 15-20-25 मिनट आधा घंटा बात करते हैं आपस में।
2: नमस्कार, मैं दुर्गेश शुक्ला, मैं यहीं लखनऊ का निवासी हूँ। मैं लगभग मतलब व्यस्तता में जब परेशान रहता हूँ तो मतलब यहाँ से थोड़ा दूर जाना, ट्रैवलिंग करना और दोस्तों के साथ पैदल चलते रहना, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर, फिर वहाँ चाय ढूंढ करके पीना, ये सब बहुत मतलब मन को खुशी और प्रसन्नता देता है। धन्यवाद।
0: सबके अपने मन की बात, किसी की खुशी हंसी ठिठोली में है, किसी की खुशी किसी के साथ में है, किसी की खुशी मम्मी पापा में है, तो किसी की खुशी उसके परिवार में है। तो बता डालिए आपकी खुशी कहाँ पर है और हमें मेल कर दीजिए fmakashwani@gmail.com पर और जुड़ जाइए। FM रेनबो के साथ शालिनी है आपके साथ, और अब सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद होंगी और भी बातें।

0: बताइए ना कि आपकी खुशी किस बात में है। और ये बाबू अंसारी जी का भी मेल आया है, देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से है, और ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपना काम करने में बहुत खुशी मिलती है। ये इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं भाई, ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक में करंट कभी भी लग सकती है। अच्छा, आपको कभी प्यार की करंट लगी है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। किसी और प्रोग्राम में अभी इस बात की बात नहीं कर रहे हैं। और सतीश अनेजा जी का विमला के साथ में चंडीगढ़ सिटी से मेल आ चुका है, और इन्होंने बहुत अच्छी ऐसा मेल लिखा है। हमारी खुशी मोहब्बतें बांटने और मोहब्बतें बटोरने में होती है, बहुत सुकून मिलता है, और हमारा परमेश्वर भी कहता है कि सबको प्यार करो, आपकी दुख तकलीफ के लिए मैं बैठा हूँ। और हमें जब भी कोई दोस्त, रिश्तेदार या आकाशवाणी से मिलने आता है तो हमें बहुत आनंद आता है। मतलब आकाशवाणी से मिलने आता है, ये बात कुछ जमी नहीं, रूह तक महक जाती है। परमात्मा सबको खुश रखे, बिल्कुल सबको खुश रखे। और आपकी ये जो मोहब्बत वाली बात है ना, एकदम दिल को छू गई है। और किसका मेल है, बसंत कुमार जी का भी आ चुका है मेल, लेकिन हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है बसंत जी। और किसका है मेल, ये आ चुका है, खुश रहने का सबसे आसान तरीका जो मेरे पास है, बुजुर्गों के पास बैठना, बेजुबानों को रोटी खिलाना, बच्चों के साथ खेलना, झील के किनारे बैठकर ठंडी हवा लेना। गेस करिए कौन हो सकता है भाई, ये मोनू सेठ जी हैं। और किसका मेल है, आलोक साहू जी का मेल, आलोक साहू जी का मेल आ चुका है, और रायबरेली ऊंचाहार से ये मेल कर रहे हैं। और इनका कहना है कि मुझे तब खुशी मिलती है जब मेरा मेल शामिल हो जाता है, खुशी की कोई वजह नहीं होती है, आप चाहें तो खुश ऐसे भी रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो बेवजह में भी वजह खोज ले खुश रहने की, वही तो असली खुशी है आलोक जी। और अब इनकी भी सुन लेते हैं कि इनका क्या कहना है।
1: हेलो एवरीवन, आई एम गार्गी वाजने एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा, बट राइट नाउ आई एम लिविंग इन

0: लखनऊ सिंस पास्ट 5 ईयर्स एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है किताबें पढ़ने से, नॉवेल्स पढ़ने से. मतलब वो एक टाइम है पूरे दिन का, मतलब जानबूझकर वो एक टाइम निकालती हूँ नॉवेल्स पढ़ने के लिए अपने कितना भी बिजी शेड्यूल हो, क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है. क्योंकि उससे मुझे ये समझ आता है कि मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, सिर्फ दूसरों के लिए मैं कुछ सारी चीज़ें नहीं कर रही हूँ. और एक चीज़ और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है वो है वर्कआउट करने से, जब मैं अपनी बॉडी को मूव करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए. तो मेरे पूरे दिन का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ और जब मैं वर्कआउट करती हूँ. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ दूसरों के लिए सारा काम कर रही हूँ, और दूसरों के साथ भी मुझे अच्छा ही लगता है, बट अपने साथ सबसे ज़्यादा मुझे टाइम इंजॉयबल लगता है.
1: So hello everyone, my name is Dr. Khush Vaishne. I am currently living in Lucknow and I belong to Aligarh. And as the question asked by the Deki ki aapko kis cheez se sabse zyada khushi milti hai, I cannot name a single thing, but I have collectively as a that something which gives me more closer to my goal. जो मुझे किसी भी चीज़ मतलब अपने गोल के पास बहुत ज़्यादा करीब ला सके, जैसे कि मुझे अपने बॉडी पे काम करना, मुझे खेलना बहुत पसंद है, एंड आई माई गोल इन द लाइफ इज़ टू बिकम अ न्यूरोसर्जन, और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता हूँ. एंड दीज थिंग्स विच जो चीज़ मुझे मेरे गोल के पास ज़्यादा क्लोज लेके जाती है, आई एम मोर हैप्पी टू टेक इट.
2: मेरा नाम ओम सिंह है, मैं गोंडा का रहने वाला हूँ और मैं अभी यहाँ लखनऊ में रहता हूँ. तो जो आपने क्वेश्चन पूछा क्या ऐसा क्या है जो करके अच्छा लगता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कभी हम लोगों को एक मूवी देख ली, या कभी जो है अपने आप से खाना बनाकर खाना हुआ तो 3-4 लोग मिलकर खाना बनाए तो वो सबसे अच्छा लगता है. जैसे कि पूरे दिन बिजी शेड्यूल में ये करने में अच्छा लगता है.
3: हेलो, मेरा नाम सागरिका है और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ. मुझे बेसिकली दिन में लाइब्रेरी के एसी में बैठ के पढ़ना अच्छा लगता है और शाम में ग्राउंड जाके थोड़ी एक्सरसाइज करना.
4: सुना था दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करना भी एक खुशी के बराबर होती है और एक्सरसाइज करनी चाहिए. देखिए, योग दिवस भी 21 जून को मनाया जा रहा है और हम सबसे बस एक ही गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई योग को अपनी लाइफ में अपनाएं और सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले योग ज़रूर करें. और सुधाकर जाधव जी का भी मेल दोबारा से आ चुका है. इन्होंने लिखा है कि हमारी खुशी है कि दुखी लोगों को मदद करने में, पशु पक्षियों को अनाज पानी देने में इनको बड़ा आनंद आता है. सुधाकर के साथ में प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी, सभी का नाम आया हुआ है. और ये राधेश्याम जी का भी मेल कासगंज से आया हुआ है और इन्होंने लिखा है कि इनको सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब घर पर सब लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं. क्या बात है, खुशी तो परिवार की खुशी तो इसी बात में है कि सभी लोग एक साथ रहें और एक साथ खाएं पिएं और मस्ती करें. और ये तालिब अंसारी जी का भी मेल आ चुका है और इन्होंने लिखा है कि अच्छा, इनका मन पसंदीदा जब खाना बनता है उससे इन्हें बहुत खुशी मिलती है. और इन्होंने उसकी फ़ोटो भी भेजी है. भाई मुंह में पानी आ गए हैं, ये फरे है ना, ये मेरे हमें भी बहुत पसंद है. और क्या ही कर सकते हैं भाई, आप खाइए और आप खुश रहिए, मस्त रहिए. और ये मेल आ चुका है वकील अहमद जी का सीतापुर से. इन्होंने लिखा है कि हम आपकी बाग जब हम सब आम की बाग में होते हैं और कोई हंसी वाली बात कहता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है. और इसके साथ ही अब इस प्यारे से ट्रैक को करते हैं, पहुंचाते हैं आप तक और इसके बाद लेंगे और भी ढेर सारी बातें.

1:54 हो चुके चले हैं और इस वक्त पर बस यही कहना होता है कि इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो चला है. और चलते चलते दो तीन लोगों के और भी मेल आए हैं. रायबरेली उचाहार से आलोक साहू जी का कहना है कि इन्हें कुछ कुछ खाने की चीज़ें जब होती तब भी इन्हें खुशी मिलती है, जैसे समोसे, कोल्ड ड्रिंक्स, मीठा पकौड़े, मिठाइयाँ और भी बहुत सारे पकवान हैं. और किसका, नरेंद्र सुधाकर का मेल आया है. नरेंद्र सुथार हैं, मनोज हैं, हिमांशु और पवन हैं, सभी लोग हनुमानगढ़ से, राजस्थान से इन्होंने मेल किया है. और इनका लिखना है कि इन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आपके प्रोग्राम रेनबो लखनऊ मैं सुनता हूँ और इनका मेल शामिल हो जाता है. तो भाई आपको खुशी मिल गई ना, और सुनते सुनते ये फर्नीचर का भी काम करते हैं तो भी इन्हें और खुशी मिलती है. वारिस अली जी का मेल आ चुका है और ये हमें ऐशबाग लखनऊ से भेजते हैं मेल. और इनका कहना है कि जब कोई मेरे सामने एफएम के सभी कार्यक्रम और एंकर्स की तारीफ करता है तो मुझे वास्तविक खुशी मिलती है. और कई लोगों का कहना है कि शालिनी आपकी खुशी कहाँ है. भाई हमारी खुशी आपकी खुशी में, आप खुश तो शालिनी खुश. और इसी के साथ इस प्रोग्राम को करते हैं यहीं पर वाइंड अप. ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए सुनिए और इन्जॉय कीजिए. 2 बजे से शुरू होगा प्रोग्राम हॉच मेल, जिसमें आपकी ईमेल्स का हमें इंतजार है. प्यारे से गाने की करिएगा फरमाइश और एक से ज्यादा नहीं जी. ओके okay.

नमस्कार, दोपहर के 2 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। यहां से पहली उड़ान को केंद्रीय उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहली फ्लाइट से इस एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को लखनऊ भेजा गया। इन किसानों ने लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत भी की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ान शुरू हो गई है, जबकि 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें शुरू होंगी। भारत 19 जून 2026 को आगरा में प्रथम ब्रिक्स सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंच और तृतीय लघु एवं मध्यम उद्यम कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा। यह आयोजन भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत किया जा रहा है। इसमें ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास, वित्तीय सहायता तक पहुंच, तकनीकी नवाचार, कौशल विकास और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना और MSME क्षेत्रों को अधिक प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ के नाना राव पार्क में नगर जिला प्रशासन और आयुष विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सामूहिक योग कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने किया। वाराणसी के नमो घाट पर भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वहीं उन्नाव में इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य उपस्थित विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, समाजसेवियों ने योग की सभी क्रियाओं में सामूहिक योगाभ्यास किया। सोमवती अमावस्या के पर्व पर आज प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही संगम घाट पर

श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य व भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों में अनाज और वस्त्र दान किए। वहीं चित्रकूट में भी सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़कर भक्त स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 3 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
5: कर 4:14 हो चले हैं प्रोग्राम, हॉटमेल की हो चुकी है शुरुआत, जिसमें ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं और क्या किया जाए या ना किया जाए। जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक एक भी मेल नहीं किया है वो करें, और जिन्होंने भाई 2-3-4 कर दिए हैं वो बस करें, क्योंकि हमारा इनबॉक्स भर जाएगा और कई सारे लोगों के नाम भी सामने हमारे हैं लेकिन अभी नहीं कहेंगे। इसके बाद अगर आपने फिर से कोई मेल किया तो ज़रूर हम बताएंगे वो कौन है जो बार बार मेल कर रहा है। और नमस्ते, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है, थैंक यू। और ये मेल आ चुका है सीतापुर से, और इन्होंने साहिबान सारी, साजिया, शमा, परवीन, पिंकी, रिंकी, महका, गुलफ्सा, सिद्दीकी, अमन, सभी का नाम लिखा है। और ये वकील अहमद जी हैं जो हमें ईमेल कर रहे हैं। और मेल आ चुका है कहाँ से, नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नोहाकर, निर्मला, विशाल, सोपान, नारायण एंगले के ने मेल किया है और बढ़िया से गाने की है फरमाइश इन्होंने। और भाई टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल, जयवीर, अमनदीप का भी मेल मोहाली चंडीगढ़ से आया है, और साथ ही साथ कालका से शुभचंद और साहिल बिट्टा का भी मेल आ चुका है। रामेश्वर जी का भी मेल आया है मुंगिसापुर, कानपुर देहात से, उमाकांती, कमलेश, निशा, प्रज्ञा, प्रतिमा और वेद बाबू हैं साथ में। भाई किसी भी प्रोग्राम में इनका मेल शामिल कर लिया जाए, इनका ऐसा कहना है। आफ्ताब अंसारी जी, एक मेल करेंगे तो भी हम शामिल करेंगे और कई सारे मेल करेंगे तो थोड़ा सा दुख हो जाता है भाई। और ये हमें गंज डुडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, अनवर लुबना आलिया ने मेल किया है। और हरजिंदर चिंदे जी का भी मेल जसवीर, जस्सी, सीता, गीता के साथ नथाना पंजाब से आ चुका है, किसी भी गीत में मेरा मेल शामिल करें। अशोक राज जी का भी मेल रायपुर, मितौली, लखीमपुर खीरी से आ चुका है, और बढ़िया से गाने की फरमाइश की है आपने, बिल्कुल कोशिश है आपका गाना आप तक ज़रूर पहुंचाया जाए। और निसार अली जी का भी मेल आ चुका है तेलीवाला उत्तराखंड से, और इनके साथ नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू भी हैं, किसी भी गीत में इनका नाम शामिल किया जाए। और चलिए सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद ढेर सारी ईमेल्स और भी होंगे।

भाई ढेर सारे ईमेल्स आ चुके हैं और ये विमला और सतीश अनेजा जी का भी मेल चंडीगढ़ से आ चुका है और बढ़िया से गाने की फरमाइश की है इन्होंने। और ये बागवान मंजिल छोटी बलिया से मेल आया है और ये नूर आयशा अहमद इकबाल अखलाल आमना आसमा राबिया जूही आसू सफद और अदीबा इस्माइल ने राजा फयाज़ फिरोज़ भाई शाह आलम वली आलम सभी ने मेल एक साथ कर दिया है। और एक और मेल आया राधे कुमार विद्यार्थी जी का, सविता राकेश रंजन राजीव संजय ओमकार गुंजेश रिया रानी कुमकुम कुमारी साक्षी अक्षय लाल और बुल्की और फलना झा सभी का मेल। और कहाँ से आया है, गंग जला सहरसा बिहार से इन्होंने हमें मेल किया हुआ है। और जय जी, आपने कितने सारे मेल कर दिए भाई। और ये होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल सचिन अपन अमन दीपांशु जी का मेल है। और चलिए गाने की फरमाइश की है आपने, नरेश मरहोत्रा नीटू लक्ष्य कोयल लाजोन पापा जी नानक चंद्र पीयूष कोयल डुगू भौमिक सभी का मेल खैल बाजार पानीपत से। और कुछ का शिवाजी कॉलोनी रोहतक से मेल आया हुआ है। और अब आ रही है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, आरएचएल गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

स्माइल बहुत सारे लोगों की पसंद पहुंच चुकी होगी, है ना। और स्माइल भी आ रही है जिनकी पसंद पहुंच गई है। संदीप मकर जी का मेल आया है जलंधर पंजाब से, इनके साथ ज्योति मन्नत भरत कमल कई लोग हैं और इनकी पसंद का गाना इन तक पहुंच गया है। क्यों संदीप जी बताइए। पवन कुमार का मेल आया है और ये सिंहपुर सिधौली सीतापुर से लिख रहे हैं और इन्हें भी गाना सुनना है क्योंकि प्रोग्राम ही यही है तो सभी को सुनना है। लेकिन सबके गाने कहां तक पहुंचाए जा सकते हैं ये है पॉसिबल। चलिए जो भी गाने आप तक पहुँच रहे हैं उसे बनाइए अपनी पसंद। और देखिए बलिया से मेल आ चुका है मुंबई से अहमद भाई फूल वाले और दुखनी सफत आरजू जूही इकबाल इमरान और बिठिया आमना नसरीन आसमा राबिया मंतशा आशू और सभी लोगों के साथ में मेल किया गया है। इतने सभी लोगों के रोज मेल आते हैं, सभी सुनते हैं अपना नाम। और ये रजौनी महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से मेल उदय भान पाल जय हिंद और दीक्षा प्रतीक्षा विमलेश दिव्यांश का मेल आ चुका है। किसी भी गीत में इनका नाम शामिल करें। और मुसर्रत जहानाज तलहत जहानाज फरहत और रिफरत नुजहत साजिया साहिन नाज

या सभी का मेल आ चुका है, सीतामढ़ी बिहार से ये हमें मेल कर रहे हैं। अच्छा, एक बार मेल अगर नहीं शामिल किया जाता है तो ढेर सारे मेल कर दीजिए। खुशनुमा नमस्ते, क्या बात है। साउथ दिल्ली से गुरमीत सिंह मीता का मेल आया है और जोन ड्रिकॉस्टो रोजी पर्ल विलियस का जनकपुरी सहारनपुर से मेल इन्होंने हमें किया है और राधेश्याम जी का भी मेल आ चुका है, कासगंज से ये हमें मेल कर रहे हैं और इन्होंने भी अच्छे से गाने की फरमाइश की है। सहारू नूर अंसारी, फरिया, शकील, मोइन, तस्लीम, डीजे प्रधान, मचकली, जिला बरेली से ये हमें मेल कर रहे हैं। बसंत कुमार सिन्हा का भी दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से मेल आया है। रेखा, अजय, रिम्मी, तनुश्री, नन्हे मुन्ने, अन्विका, बेबी के साथ में और बहुत सारे लोगों के नाम ले लिए हैं। भाई अब बस करिए, इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए मेल। चलिए अब ये प्यारा सा ट्रैक आप सबके लिए।

0: मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
3: डन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
3: है?
2: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
3: है।
2: गर्मियों के निहार है?
3: है।
2: तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: ना, ना, ना।

मेल आया हुआ है और इन्होंने आज पूनम ज्योति शिवांश के साथ पिपरलोड सरगवा छत्तीसगढ़ से हमें मेल किया है और न्यू दिल्ली से कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु का भी मेल आ चुका है और एक बार नहीं कई कई बार आया है भाई, ऐसा मत करिए बस करिए। और मेल आ चुका है, किसका है ये? हाँ, हम अभी अभी खेत से आ रहे हैं, बहुत तेज़ धूप है भाई, ध्यान रखिए, पानी पीजिए और बहुत सारी जो प्रिकॉशंस हैं सब बताते हैं और आप खुद समझदार हैं। और आपने लिखा है कि आपके सेलेक्ट किए गाने सुन रहे हैं, मज़ा आ रहा है। हम आपको बता दें, ये हमारे पसंद के एक भी गाने नहीं हैं, ये आप लोगों में से ही सबकी पसंद है। और मुश्किल होता है ना सबकी पसंद पहुंचा पाना, तो जितने पहुंचते हैं उतनी पहुंचाने की कोशिश की जाती है। और ये हमें विशेष नितिन और युवराज लोधी जी मलिहाबाद से हमें मेल कर रहे हैं और मैंगो भाई बना के भेजा है आपने। और मेल आया है ओम, ये नारायण गायकवाड़ दयानंद ओमकार और साई जी का नादेंड महाराष्ट्र से इन्होंने हमें मेल किया हुआ है। साहिब आलम जी का भी मेल आ गया है समीर अहमद के साथ मुरादाबादी, या अच्छा ये ऐशबाग लखनऊ से हमें मेल कर रहे हैं। हीरामणि वर्मा का मेल पुष्पेंद्र मणि नोखेलाल के साथ में, पारस मणि भी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से मेल कर रहे हैं। और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

0: अरे पापा है।
1: तुमको मुझसे प्यार है,
0: है?
2: बहुत ही प्यारा सा गाना पसंद किया था भाई। आज सोमवार है और उसी बात बात में प्यार की रजामंदी, ये बड़ा अच्छा बहाना पसंद आया। और आप कहाँ कहाँ से गाने खोज कर लाते हैं पसंद करके और हम आप तक पहुँचा भी देते हैं। देखिए, राजू मेघलानी का मेल आ चुका है दुर्गा कॉलोनी हांसी से बबीता सुभाष योगी और डब्बू बब्लू के साथ में। रविन्द्र मोहनदास जी का भी मेल आशा के साथ किशनगंज बिहार से आ चुका है। दीपेश वर्मा का भी

0: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

कितने प्यार से भेजा गया है नजराना, और देखिए उसी नजराने से वापस ही मेल भी आ चुका है बाबू अंसारी जी का है, और ये बाराबंकी से हमें मेल कर रहे हैं, और कई लोगों के नाम भी इन्होंने लिखे हैं, कुलदीप, महेंद्र, फैज और गौल्स मोहम्मद अंसारी का नाम लिखा है, और उत्तम कुमार भगत जी का भी मेल आ चुका है। बिल्कुल मेल शामिल करेंगे, लेकिन आप देखिए ना सभी के एक के बाद एक मेल आते जाते हैं, और जैसे ही समय मिलता है मेल ज़रूर शामिल किया जाता है। और इन्होंने हमें कहाँ से मेल किया है, ये झारखंड से हमें मेल कर रहे हैं, श्वेता भगत, केसु तास्तु, अर्णव आनंद और सत्यम और मुन्ना और गुड्डी के साथ में ये मेल कर रहे हैं। अजमत अली जी का भी मेल आ चुका है, और सुल्तानपुर ज़िला सीतापुर से ये हमें मेल कर रहे हैं, और मेल असम से आया हुआ है, हितेंद्र दास जी का मेल है। भाई थैंक यू मेल करने के लिए। और संजय डिंगिया जी का भी मेल नमन अपार के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से आ चुका है। तेज बहादुर यादव, ममता और रोनी तौर वामिका के साथ हमें मेल कर रहे हैं, और रायबरेली से ये हमें मेल कर रहे हैं। तुलसी मस्किन जी का भी मेल है, और इन्होंने हमें वीना चैतन्य के साथ में बिहारी कॉलोनी दिल्ली से मेल किया है। रियायत हुसैन का मेल है, नजमा और रियाज रिफाकत हुसैन के साथ उत्तराखंड से हमें मेल कर रहे हैं। रामराज जी का भी मेल आ चुका है, रायबरेली से ये हैं, और शंकर भैया, पप्पू, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका सभी ने मेल किया है एक साथ। विनीत जी का भी मेल सीतापुर से आया हुआ है, और बहुत लंबा सा मेल लिखा है और हमने पढ़ लिया है। और दिलीप कुमार सोनी का भागलपुर बिहार से मेल आ चुका है। जाकिर जी का मेल कहाँ से आया है, मुंगिसापुर से इन्होंने हमें मेल किया है। और अब्बासी परिवार का भी मेल आ चुका है, चौखंडी बुलंदशहर से ये हमें मेल कर रहे हैं। शेख मूसा मोहसिन सनावत से मेल कर रहे हैं हमें, और भाई ढेर सारे लोगों ने बिल्कुल मेल कर दिया है दोस्तों, और अब बारी है इस प्यारे से ट्रैक की।

दोस्तों 2:54, बिल्कुल किसी का भी मेल गायब नहीं हुआ है और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी, निमित का मेल आ चुका है। सुरेश नांगरंग और आशा सोनाली के साथ सहारनपुर से मेल आया हुआ है। अब्बासी जी आपका पूरा मेल पढ़ा, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत, परवीन, शहनाज, सरफराज, फरीदीन, सुहान, अरजान, अबान के साथ में आपने हमें मेल किया है। और कमलकांत गुप्ता जी पिपरिया से हमें मेल कर रहे, दीपा रिमझिम के साथ, समझी लमापारा से मुकेश, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु के साथ में मेल किया है। बसंत कुमार सिन्हा आपका भी मेल आ गया है और दमदम एयरपोर्ट से आप हमें कलकत्ता से मेल कर रहे हैं। दिलावर खान जी का भी मेल आया हुआ है, हसीना बानो एल्जा नयाब लड्डू के साथ में, और सीताराम कांगरा का, एकता कॉलोनी रोहतक से निखिल, बबीता तन्वी बोट के साथ में मेल कर रहे हैं। मोहसिन हाशमी का मेल है, ताज मोहम्मद जी का भी मेल आया, मुकेश कश्यप हैं, सीताराम कांगरा, सुनील पाठक का भी मेल आया हुआ है दोस्तों, और मोहम्मद सादाब खान हैं, राजेंद्र कुमार और रामराज, जावेद अख्तर का आजमगढ़ से, और संजय डिया, मुकेश कश्यप, सभी के मेल दोस्तों शामिल किए जा चुके हैं। टीटी मरहोत्रा का, दारा सिंह का, अब्दुल गफ्फार हैं, अशोक कुमार हैं, नरेंद्र सुथार और कोमल तिवारी और शिव प्रकाश, मेहर अरोरा, विट्टू गगनेजा, औसफरुद्दीन अंसारी, अहमद भाई फूलवाले और सरिता अभिजीत का भी मेल है, और दुर्गा साहू का मेल है, भागवत वर्मा है, बमलेश पवार है, आर कुमार, शिव पूजन लाल, मशहूर हसन, मोहम्मद सबीर अंसारी, राजेश वर्मा, राधे श्याम शर्मा और सोम दत्त, दीपेश, पंकज शर्मा, तालिब अंसारी, गगनदीप थांदी और सभी के नाम। सुदर्शन साह का भी मेल आया हुआ है और कीर्तिपुरी गोस्वामी जी का मेल है। और इसी के साथ शालिनी इस प्रोग्राम को करती है यहीं पर वाइंड अप। नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया, और इसके अलावा आप 3:30 से 4 बजे तक सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी के द्वारा।

नमस्कार, दोपहर के 3 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। विमानन क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए केंद्र मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 से 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछले दशक के दौरान हवाई अड्डा अवसंरचना विकास में 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक हब बनने वाला है। उन्होंने कहा कि यहां अब उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और एग्रीकल्चर बढ़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान लखनऊ के लिए रवाना हुई। इस फ्लाइट में वो 170 किसान भी शामिल हैं जिन्होंने एयरपोर्ट के लिए अपनी ज़मीन दी थी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहुंचने पर इन किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हवाई जहाज में सफर करने का सालों पुराना उनका सपना आज पूरा हो गया है। किसानों ने इसे अपने जीवन का अविस्मरणीय अनुभव बताया। गोरखपुर में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए लोगों को विश्वास दिलाया कि आर्थिक सहायता हो या आवास, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों ने उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान ना होना पड़े। ज्येष्ठ अधिक मास के सोमवती अमावस्या पर आज वाराणसी में हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई और घाटों पर दान पुण्य किया। गंगा स्नान के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण भी किया। वहीं अमरोहा में सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज तिगरी गंगा धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा तट पर पहुंचने लगे थे। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 4 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: करियर पर है ध्यान,
2: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
1: पॉजिटिव है फैशन,
2: क्रिएटिव है पैशन,
1: टेक्नोलॉजी में रुचि,
2: बने पर्सनालिटी ऊंची,
1: फॉलो करें ट्रेंड्स,
2: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
1: ओनली ऑन यूथ वेव।
2: यूथ की बात यूथ के साथ
1: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर,
2: धड़कन लखनऊ की।
3: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान, चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
2: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
4: समझे जनाब अली।
2: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की। दोस्तों 3:11 और 52 सेकेंड हो चले हैं और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सतरंगी दुनिया। शालिनी है आपके साथ और लंच हो गया। आप सोचेंगे हर बार शालिनी यही बात करती है, भाई इसलिए की जाती है क्योंकि हमें आपकी सेहत का रहता है खास ध्यान। और देखिए हर दिन कुछ ना कुछ नया चीज़ सेलिब्रेट करते रहते हैं और सेलिब्रेशन से याद आया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं ना, तो केवल उसी दिन योग नहीं करना है, शुरू करिए अगर अभी तक आपने नहीं शुरू किया है, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती और हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है। जब भी समय मिले, सुबह शाम जिस भी समय आप थोड़ा सा समय निकालिए, जब आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे हैबिट पड़ जाएगी और आप खुद एक मास्टर बन जाएंगे। तो योग करना है ना, प्रतिदिन करना है और लोगों को भी जागरूक करना है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
0: ओ 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: सात रंग का इंद्रधनुष है,
4: सात सुरों की सरगम है,
5: सात जन्म है सात समंदर,
3: साथ हमारा हरदम है,
5: जिंदगी के सतरंगी रंग
4: FM रेनबो के संग।

0: सहायता टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
2: दोस्तों 3:25 और 15 सेकंड हो चले हैं और इसी के साथ प्रोग्राम सतरंगी दुनिया होता है वाइंड अप। जी हाँ, क्योंकि आप सोमवार से शुक्रवार तक आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 3:30 से 4 बजे तक। तो सतरंगी दुनिया तो बस 3:30 तक ही रहता है। दोस्तों होगी मुलाकात हमारी आपसे किसी और दिन, तब तक सुनते रहे 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की। और हाँ, 3:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुना ना भूलिएगा और कहीं जाना नहीं है, बने रहना है 100.7 FM रेनबो पर।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
3: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
3: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
3: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
3: आदरणीय अजीत जी व बिमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
3: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे, लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
3: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है, भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
3: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
3: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है,

0: दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के

0: उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं। चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे

वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था।

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं।

0: ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
2: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
0: अप्पू,
2: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
0: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
0: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
0: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
0: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला।
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ,
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकान

0: यार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलू तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सीखचे थामे उसने

0: की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसी कैसी सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ,
4: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
4: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
4: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
4: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
4: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
4: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है।

0: नहीं जान सका कि मां क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ मां को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग
6: नमस्कार। शाम के 4 बज रहे हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि समर्पित करने वाले किसान आज लखनऊ पहुंचे। जेवर से लखनऊ के लिए संचालित पहली फ्लाइट से राजधानी पहुंचे इन किसानों का मुख्यमंत्री आवास पर भव्य स्वागत व सम्मान किया गया। यहां किसानों ने अपना अनुभव व्यक्त करते हुए सरकार का आभार जताया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को स्मृति चिन्ह प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर ने एक नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, सेमीकंडक्टर यूनिट, डेटा सेंटर, फिल्म सिटी, टॉय पार्क, आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स की विश्व स्तरीय सिटी भी जेवर क्षेत्र में स्थापित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से हक देने को कहा था और उसे पूरा भी किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि बैठक में राम कथा संग्रहालय को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। कार्यदायी संस्था संग्रहालय में आधुनिक 3D आधारित मॉक डिस्प्ले तैयार करेगी। नृपेंद्र मिश्र ने विश्वास जताया कि यदि वर्तमान गति से कार्य चलता रहा तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय भी खोल दिया जाएगा। इटावा पहुंची प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने केंद्र में एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जहां कानून व्यवस्था मजबूत की है और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सड़क, बिजली, पुल, हॉस्पिटल के जरिए सबका साथ सबका विकास की सोच को आगे बढ़ाया है। बाराबंकी में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे योग सप्ताह का आज राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने शुभारंभ किया। उन्होंने संबोधन में कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है जो संपूर्ण विश्व को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन का मार्ग दिखा रही है। वहीं मिर्जापुर, बिजनौर और अमरोहा में भी आज से योग सप्ताह की शुरुआत की गई, जहां विविध आयोजनों के जरिए लोगों को योग अभ्यास कराने के साथ योग के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 5 बजे प्रसारित किया जाए।

सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की। कैसे हैं आप सब? शाम के 4 बज चुके हैं और आप सबका सबसे प्यारा यूथफुल एनर्जेटिक शो यूथ वेव में स्वागत है। आपके साथ जुड़ चुकी हूं मैं, यानी कि हर्षा, ऑन योर फेवरेट फ्रीक्वेंसी ऑफ 100.7 FM रेनबो। तो आज यूथ वेव में हम क्या बातें करने वाले हैं? वेल फ्रेंड्स, आज यूथ वेव स्टार्टअप स्पेशल है और आज हम गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटेड एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जिसे जानने के बाद मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आसमान छूने वाली है। लेकिन क्या है वो स्टार्टअप? डोंट वरी, अभी तो कार्यक्रम सिर्फ शुरू ही हुआ है। बने रहिए मेरे साथ, इस गाने के बाद वापस लौटते हैं और फिर और ढेर सारी बातें करते हैं।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7।

FM Rainbow. वेलकम बैक दोस्तों, 4:08 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं यूथ वेव ऑन 100.7 FM रेनबो मेरे यानी हर्षा के साथ। आज हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बताऊंगी जिसे सुनकर आपको जानकारी और इंस्पिरेशन दोनों मिलने वाली है। तो कौन सा है वो स्टार्टअप? ओके, सस्पेंस को अब थोड़ा सा रिवील कर देते हैं। उस स्टार्टअप का नाम है ONDC, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो दोस्तों, अगर आपसे आप में से कोई छोटा व्यापारी है या दुकानदार है तो आज के एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बिकॉज इंडिया की ई कॉमर्स की दुनिया में अपनी मजबूत जगह बनाने वाला ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजबूत स्टार्टअप है, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक भी है। तो ONDC के बारे में आज हम लोग खूब सारी बातें करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको बस हमारे साथ बने रहना है। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत सारे अच्छे अच्छे गानों के साथ आप सुन रहे हैं यूथ वेव।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: जी 4:15 हो रहे हैं। ऑल राइट, इस बढ़िया से गाने के बाद वेलकम बैक। हम लोग बात कर रहे हैं आज ONDC की, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स की, और उसकी इंस्पायरिंग स्टोरी की। अब देखिए दोस्तों, कोई भी स्टार्टअप, उसका जन्म कब होता है? उसका जन्म होता है एक विजन के साथ। यस, तो ONDC का विजन कैसे जन्मा? देखिए, भारत में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, बट उस स्पेस में सिर्फ और सिर्फ 2-4 विदेशी कंपनीज की ही मोनोपोली है। वही सब विदेशी कंपनीज जिन्हें आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन भारत के करोड़ों छोटे दुकानदार, किराना स्टोर मालिक, छोटे छोटे ढाबे और रेस्टोरेंट चलाने वाले, ये सब इस दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इसीलिए भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नंदन नीलकर्णी और उनके साथ कई और एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर 2021-2022 में ONDC की नींव डाली। लेकिन अब जब हम ये समझ गए हैं कि इसका विजन क्या था, कैसे और किस कारणवश ONDC ने जन्म लिया, अब हमें ये सोचना है कि ONDC को हम एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करेंगे, आखिर क्या करता है ONDC। सब बताऊंगी, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक लेना पहले बहुत ज़रूरी है। डोंट यू अग्री?

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: और दोस्तों, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे रोजगार समाचार और उसके बाद मैं वापस लौटूंगी आपके साथ ऑन यूथ वेव।

आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीष शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना 10 प्लस 2 बीटेक कैडेट प्रवेश योजना स्थायी कमीशन पाठ्यक्रम जनवरी 2027 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। यांत्रिक अभियांत्रिकी शाखा में 30 रिक्तियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी में भी 30 रिक्तियां हैं। महिलाओं के लिए अधिकतम 8 रिक्तियां हैं। यांत्रिक अभियांत्रिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी के लिए 4-4 रिक्तियां रहेंगी। आयु 2 जुलाई 2007 से 1 जनवरी 2010 के बीच जन्मतिथि होनी चाहिए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा इस पाठ्यक्रम के लिए एक से अधिक आवेदन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। प्रक्रिया का पूरा विवरण जानने के लिए देखिए भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न पदों के लिए 98 रिक्तियों की सूचना प्रकाशित की है। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 13 से 19 जून 2026 का रोजगार समाचार पत्र। चयन सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा और इसके लिए विस्तार से जानकारी आप देखिए संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in पर। रमन अनुसंधान संस्थान सदाशिव नगर बेंगलुरु RRI भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव और उपलब्धियों वाले प्रतिष्ठित शिक्षाविदों शोधकर्ताओं से निदेशक पद के लिए प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। निदेशक संस्थान का मुख्य कार्यकारी और शैक्षणिक अधिकारी होगा और संस्थान पर समग्र प्रशासनिक नियंत्रण भी उसी का होगा। ये पद भारत सरकार के संशोधित वेतन नियम 2016 के अनुसार वेतन स्तर 17 के उच्चतम पैमाने अर्थात 2,25,000 रुपए प्रति माह का वहन करता है। आवेदन नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। विस्तृत विज्ञापन

0: अपन के लिए देखिए रामन अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.rri.res.in/careers/regular-other-openings। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। चिकित्सा अधीक्षक एक पद, अधीक्षण इंजीनियर एक पद, कार्यकारी इंजीनियर एक पद, लेखाधिकारी एक पद। आवेदन का प्रारूप, पात्रता मानदंड और अन्य विवरण जानने के लिए देखिए वेबसाइट aimsnagpur.edu.in। सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश अपने कृषि विज्ञान केंद्र के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक सह प्रमुख पद हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदों की संख्या एक है। आवेदन की अंतिम तिथि रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित होने से 21 दिन है। रोजगार समाचार पत्र में ये विज्ञापन प्रकाशित हुआ है 13 से 19 जून 2026 के अंक में। विस्तृत जानकारी के लिए आप देख सकते हैं सैम हिगिनबॉटम कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.shuats.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

दोस्तों 4:30 हो रहे हैं, अभी अभी आपने सुना रोजगार समाचार और अब आप एक बार फिर से सुन रहे हैं यूथ वेव 100.7 FM रेनबो।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: जी, इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं यूथ वेव मेरे यानी हर्षा के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं ONDC के बारे में, यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में। तो चलिए, हमने ONDC के विजन के बारे में जान तो लिया, लेकिन अब अगर हम उसे डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, ONDC कोई ऐप की तरह काम नहीं करता, वो एक ओपन नेटवर्क है, वैसे ही जैसे UPI है। देखिए, अगर इसे आसानी से समझाया जाए तो देखिए, जैसे UPI किसी भी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपस में पेमेंट कर सकता है। सही कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल वैसे ही ONDC किसी भी खरीदार ऐप या सेलर ऐप की आपस में खरीदारी करा सकता है। सभी दुकानदारों को एक ही ऐप या प्लेटफॉर्म पर होने की ज़रूरत नहीं है। ONDC की मदद से वो अलग अलग होकर भी आपस में खरीदारी कर सकते हैं। क्या आप समझे? कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लेकर समझिए। तब तक एक गाना सुन लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं।

जी 4:50 बस होने ही वाले हैं, बस होने ही वाले हैं। 100.7 FM रेनबो सुन रहे हैं आप मेरे यानी हर्षा के साथ, ओनली ऑन यूथ वेव पे आज हम लोग बातें कर रहे हैं एक बड़े ही अच्छे से, बहुत ही इंस्पायरिंग से स्टार्टअप के बारे में। अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं ONDC के बारे में, जिसे 2021-2022 में शुरू किया गया था। और हम हीरो की तरह हमारे ONDC का भी एक सुपर हीरो मोमेंट ज़रूर आया। शुरू में ONDC ने हर एक स्टार्टअप की तरह स्ट्रगल किया, लेकिन आज ऑर्डर

फ्यूचर्स में ONDC में 280 से 300 रुपए तक का सीधा फायदा मिलता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए, और ONDC को आज लाखों ऑर्डर्स प्रोसेस करने को मिल रहे हैं, खाना हो, ग्रोसरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फैशन, ट्रैवल वगैरह, सभी ऐप्स, सभी सर्विसेज पर ONDC की सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो इस सुपर हीरो मोमेंट को सेलिब्रेट करते हुए एक प्यारा सा अगर गाना भी हो जाए तो ही तो कुछ बात बनेगी। तो चलिए सुनते हैं इस प्यारे से गाने को, देखते हैं आपको पसंद आता है या

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: जी समय हो चला है शाम के 4:55, यानी कि हमारे शो को रैप अप करने का टाइम अनफॉर्चुनेटली आ चुका है। अब डेमोक्रेटाइजेशन हो और इंडिपेंडेंट इंडिया हो, इन सभी चीज़ों का एक बेहतरीन उदाहरण ONDC के बारे में आज हमने जाना, और आई होप आपको खूब सारी इंस्पिरेशन मिली होगी, आप प्रेरणा से प्रफुल्लित हो चुके होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ, मुझे भी स्टार्टअप शुरू करना है। आई होप ऐसा आज के प्रोग्राम में, आज के एपिसोड में आपको ज़रूर फील हुआ होगा। सो स्टे यूथफुल, स्टे एनर्जेटिक। इट्स टाइम टू रैप अप यूथ वेव, मगर न्यूज़ ब्रेक के उस पार हम फिर से मिलेंगे विद FM टॉप 10।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक एकता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत को संबोधित याचिका अधिवक्ता अनूप प्रकाश अवस्थी ने दायर की है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय से अपील की गई है कि इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जैसी किसी प्रमुख एजेंसी द्वारा सीधे शीर्ष न्यायालय की निगरानी में कराई जाए। वहीं मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बनाई गई विशेष जांच टीम आज अयोध्या पहुंची। टीम में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, IG रेंज किरण S और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल हैं। टीम 15 दिन के अंदर अपनी जांच सौंपेगी। प्रदेश ने स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान आज गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल विंड डे 2026 कार्यक्रम में पवन ऊर्जा की खरीद एवं उसके प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया। इस उपलब्धि पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पर्यावरण अनुकूल तरीके से पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल S की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने आज सुल्तानपुर में आयोजित पार्टी कार्यकर्ताओं के जिला सम्मेलन में संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुटने को कहा। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि NDA गठबंधन ने 2017, 2019 और 2024 के चुनावों में लगातार जीत दर्ज कर अपनी लोकप्रियता सिद्ध की है। श्रीमती पटेल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से आम लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित किया जाएगा।

और मैं यानी कि हर्षा अब आपके साथ हूँ और प्रोग्राम शुरू हो चुका है FM टॉप 10, जहाँ हम एंजॉय करने वाले हैं 10 मोस्ट पॉपुलर, सबसे जाने वाले, सबसे सराहे जाने वाले सॉन्ग्स। किसके लिए, किसके बारे में? उस सिंगर के जिनकी आवाज़ तो जादू बिखेरती है मगर उन्हें मोस्ट वर्सटाइल सिंगर के रूप में भी जाना जाता है। तो आज हम लोग एंजॉय करने वाले हैं टॉप 10 सॉन्ग्स हमारे प्यारे सोनू निगम जी के। तो जल्दी से शो की शुरुआत करते हैं सॉन्ग नंबर 10 से, जो कि है जाने मन फिल्म से और सोनू निगम जी को का गाया हुआ और सलमान खान जी पर फिल्माया हुआ है ये प्यारा सा गाना।

जी वेलकम बैक। टॉप टेन सॉन्ग सुन रहे हैं हम सोनू निगम जी के, और नंबर 9 पर लेट अस रिमेम्बर वो वाला गाना जिसने जिसमें वैसे तो बहुत सारे सिंगर हैं मगर हर एक सिंगर की आवाज़ हम डिस्टिंक्टली पहचान पाते हैं, और सोनू निगम जी की आवाज़ भी हम सुनते ही, जी हाँ सुनते ही रिकग्नाइज कर लेते हैं।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
5: जी अभी अभी आप सुन रहे थे संदेश से आते हैं। इस प्यारे से गाने के बाद जल्दी से चलते हैं नंबर 8 पर। अब जिसे अपने टाइम के यूथ पॉपुलेशन को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया ना, ये वो वाला गाना है। हर किसी की ज़बान पर अपने टाइम पर ये गाना हुआ करता था, और इस गाने ने विवेक ओबराय जी को और सोनू निगम जी को यूथ आइकॉन के रूप में एस्टैब्लिश किया था। आई एम श्योर जैसे ही मैं ये गाना प्ले करूँगी ना, वैसे ही आप पहचान जाएंगे कि ये कौन सा गाना है।

जी 5:20 हो रहे हैं और ये प्यारी सी मेलेडी, आई एम श्योर आप सभी लोग अपने अपने नॉस्टैल्जिया में चले गए होंगे। जब हम लोग बचपन में स्कूल जा रहे होते थे तब भी स्कूल जाने से पहले ये सॉन्ग ज़रूर सुन के जाते थे, क्योंकि टीवी पर ये सॉन्ग इतना फ्रीक्वेंटली प्रसारित किया जाता था। तो इस प्यारे से बहुत ही जाने माने सॉन्ग के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, जब भी इंडस्ट्री में एक दर्द भरी आवाज़ को अप्रिशिएट करने की बारी आती है ना, तो भी सोनू निगम जी का नाम, उनकी आवाज़ को बहुत ही गर्व से याद किया जाता है। एंड Why is that? I think number 7 पर जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ ना, वो उनकी इस इमेज को स्टैब्लिश करने में बहुत ज़्यादा मददगार है। देखिए, डू यू अग्री?

जी 5:24 हो चुके हैं। अभी अभी नंबर 7 पर आपने सुना तुम ही देखो ना। जी ये बहुत ही प्यारा दर्द भरा गाना आपने सुना सोनू निगम जी की आवाज़ में। लेकिन दर्द ही नहीं, रोमांटिक वॉइसेस की जब हम बात करते हैं तो भी सोनू निगम सर हमारे एक्सपर्ट हैं। उनकी सादगी, वो इमोशनैलिटी जो वो माइक पर लाते हैं, ये बात तो हम सभी जानते हैं। अब आमिर खान जी और काजोल जी पर फिल्माया गया ये गाना अब आ रहा है नंबर 6 पर, जिसे सुनिधि चौहान जी के साथ सोनू निगम जी ने गाया। और ये उनकी रोमांटिक वॉइस में एक्सपर्टीज़ का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। सो नंबर 6 पर लेट अस ऑल एन्जॉय दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग।

0: आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: अपने बच्चे की सेहत

0: से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: जी 5:30 बज रहे हैं, FM टॉप 10 चल रहा है 100.7 FM रेनबो पर। आप हैं मेरे यानी हर्षा के साथ और आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम। जब मदहोश करने वाले गानों की बात आती है तो सोनू निगम सर की हिप्नोटिक सिंगिंग टेक्निक, उसका लोहा तो हम सभी मानते हैं। नंबर 5 पर है कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ फिल्म बॉम्बे में गाया गया ये गाना, This hypnotizing song, yes, this very, very mesmerizing song, जिसका नाम है सतरंगी रे।

दोस्तों आप सुन रहे हैं टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम और नंबर 5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं. यस, अब बारी आ गई है नंबर 4 की. व्हाट इज नंबर 4? नंबर 4 मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग ऑफ सोनू निगम. ये एक ऐसा मेलोडियस गाना है जिन्होंने डेब्यूटांट दीपिका पादुकोण जी के लिए बहुत ही मेमोरेबल डेब्यू सॉन्ग प्रोड्यूस किया था. तो आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल जी और सोनू निगम जी की आवाज़ में ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा गाना.

0: गाना, ओहो, मतलब सभी को, आई एम श्योर सभी को ये गाना मुंह जबानी याद है, सभी को इसके लिरिक्स याद हैं। तो देखिए ना, इतने सारे आइकॉनिक गाने सोनू निगम जी की आवाज़ में हम लोगों ने सुने हैं कि टॉप 10 क्या, टॉप 20 क्या, टॉप 100 क्या, इतने सारे गाने हमें सोनू निगम जी के याद हैं कि कभी कभी हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे नंबर 2 पे रखें, किसे नंबर 8 पे रखें, किसे नंबर 20 पर रखें। लेकिन देखिए ना, समय बीतता ही गया, 5:40 हो गए हैं और अब हम लोग आ गए हैं अपने टॉप 3 पर। यस, टॉप 3 मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ सोनू निगम पर हम पहुंच गए हैं। और नंबर 3 पर मैंने डिसाइड किया है कि एक ऐसा गाना है जो सोनू निगम जी के लिए मुझे लगता है एक रिप्रेजेंटेटिव गाना, अगर मैं कहूं तो। यस, ये वाला गाना मेरे हिसाब से सोनू निगम जी को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम म्यूज़िक इंडस्ट्री के सबसे यादगार गानों की बात करें, मुझे लगता है कि जिस साल ये गाना रिलीज़ हुआ था उस साल और शायद उसके अगले 2-3 सालों तक लगातार लोग इस गाने को इतना ज़्यादा गाते थे, इतना ज़्यादा अंताक्षरी में हर जगह प्ले करते थे कि सभी को इसकी लिरिक्स एकदम अच्छे से फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश याद है। तो देखिए ना, अब जब मैं इस गाने को प्ले करने वाली हूँ तो आप भी इस गाने के साथ ज़रूर ज़रूर गाइएगा। चलिए देखते हैं।
1: घर तक आ गए और है रुपा, वो भी हो गया। अरे दोस्ती की भी कोई लिमिट शिमिट होती है ना फिर।
2: चुप, दोस्ती के अलावा भी कुछ रिश्ते होते हैं, कुछ रिश्ते जो हम समझते नहीं, कुछ रिश्ते जो हम समझना नहीं चाहते। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ एहसास होता। चुप तो नहीं रहा। कुछ रिश्ते जिनकी कोई दीवार नहीं होती, सरहद नहीं होती। चुप तो नहीं रहा। ऐसे रिश्ते जो दिल के रिश्ते होते हैं।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: मुस्कुराइए, क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
4: यस, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, क्योंकि इस वक्त आप सुन रहे हैं FM टॉप 10। और हम लोग आज किन के गानों को याद कर रहे हैं? हम लोग याद कर रहे हैं सोनू निगम जी की आवाज़ को। और अगर अजय अतुल जी का साथ हो और सोनू निगम जी की आवाज़ हो तो फिर क्या बात हो, क्या बात हो जी। टॉप 10 सॉन्ग्स के नंबर 2 पर अगर हम लोग बात करें तो एक बार फिर से एक ऐसा गाना मैं प्ले करने वाली हूँ जिसे सुनते ही आप लोगों को लगेगा कि ओह, आपने इस गाने को इतनी बार सुना है। लेकिन क्या किया जाए, इस गाने की मेलोडी ही इतनी प्यारी है। जब एक बार ये गाना प्ले हो जाता है तो बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक सुनने का मन करता है, कहीं भी पॉज करने का मन नहीं करता। इसी गाने ने रीसेंट ईयर्स में एक बार फिर से सोनू निगम जी को नेक्स्ट जनरेशन में भी बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है। तो ये खूबसूरत सा दिल छू लेने वाला गाना इज़ कमिंग अप ऑन नंबर 2।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जी 5:53 हो चुके हैं दोस्तों, देखते ही देखते हम आ गए हैं अपने टॉप 10 एफएम सॉन्ग्स के एंड पर। इस शो को रैप अप करने का टाइम हो गया है और बस अब एक ही गाना प्ले करने को बचा है, दैट इज द नंबर वन सॉन्ग। शीर्ष पर कौन सा गाना है सोनू निगम जी का? यस, ये वही गाना है जिसने सोनू निगम जी को हाउस होल्ड नेम बनाया, आपको, हमें, हम सबको उनका फैन बनाया। तो शो को रैप अप करते हैं विद दिस मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ सोनू निगम सर, लेट्स एंजॉय ये बेहद खूबसूरत और यादगार गाना ऑन नंबर 1।

नमस्कार, शाम के 6 बज रहे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे ताकि उनके उद्योगों, स्टार्टअप्स और व्यापारियों को लाभ मिल सके। सरकार ने कहा कि सभी तेल शोधक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि पिछले 4 दिनों में 1,84,00,000 सिलेंडर वितरित किए गए हैं। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजिरापू राम मोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। विमानन क्षेत्र के विकास का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 के 74 से बढ़कर अब 165 हो गई है। उन्होंने कहा कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक हब बनने वाला है। उन्होंने कहा कि यहां अब उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी और एग्रीकल्चर बढ़ेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर किया जा चुका है। श्री मिश्र ने बताया कि बैठक में राम कथा संग्रहालय को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। कार्यदायी संस्था संग्रहालय में आधुनिक 3D आधारित मॉक डिस्प्ले तैयार करेगी। नृपेंद्र मिश्र ने विश्वास जताया कि यदि वर्तमान गति से कार्य चलता रहा तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं के लिए संग्रहालय भी खोल दिया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।
1: जी शाम के 6:03 हो चुके हैं दोस्तों, आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम शाम अवध जो कि शुरू हो चुका है। आपके आप सुन रहे हैं मुझे यानी हर्षा को आज, तो लखनऊ की शाम को प्यारे प्यारे गानों और खूब सारी बातों के साथ, सिटी अपडेट्स के साथ और एंजॉय करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे इस घंटे और शुरुआत करते हैं इस सफ़र की इस खूबसूरत से गाने के साथ।

0: हड्डियों की कमजोरी
1: थायराइड इंबैलेंस दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन एडिसन्स डिजीज पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज पीसीओडी या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा
2: मुस्कुराइए क्या आप लखनऊ में हैं और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो

शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2। बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में

जी दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शाम अवध. इस बहुत ही रूहानी से गाने के बाद माहौल और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है ना. अगर ऐसे प्यारे प्यारे गानों को अगर आप आज लाइव इंजॉय करना चाहते हैं तो भी क्योंकि शाम अवध चल रहा है और सिटी अपडेट्स का ये बहुत ही प्यारा सा शो है, तो आज मैं आपको बता दूं कि बे इंतहा शाम, जी बे इंतहा शाम नाम का एक लाइव इवेंट हो रहा है गोल्फ सिटी सेक्टर बी लखनऊ में. तो अगर आप चाहें तो लाइव म्यूज़िक इंजॉय कर सकते हैं आप वहाँ जाकर, जो कि शाम 6 बजे से शुरू हो चुका है. और अगर स्टूडियो म्यूजिक एंजॉय करते हैं तो बस बने रहिए 100.7 FM रेनबो के साथ.

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो मेरे यानी हर्षा के साथ, और शो चल रहा है शामे अवध। और अगर आप नोएडा से लखनऊ अप डाउन करते हैं तो आज आपके लिए एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी सी खबर है, बिकॉज आज से उद्घाटन हो चुका है 2 सीधी उड़ान सेवाओं का, जो कि जाएंगी फ्रॉम लखनऊ टू नोएडा एंड वाइस वर्सा। यानी कि ये विशेष उड़ान सेवा 6E2278 सुबह, फ्लाइट नंबर 6E2278 सुबह 7:05 पर उड़ान भरेगी और 8:05 नोएडा के जेवर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी, और फिर फ्लाइट 6E2279 जेवर एयरपोर्ट से शाम 6:55 पर रवाना होगी और रात को 8 लखनऊ पहुंच जाएगी। और ये फ्लाइट 1 जुलाई से, यानी कि 1 जुलाई से एवरी सिंगल डे अवेलेबल होने वाली है।

ऐसी ही खूब सारी सिटी अपडेट्स और नए डेवलपमेंट्स की जानकारी के लिए सुनते रहिए मेरे साथ शाम अवध, इंजॉय करते रहिए और खूब सारे प्यारे प्यारे गाने भी तो साथ साथ में हम लोग इंजॉय करते ही जा रहे हैं ना।

0: ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

दोस्तों अजय अतुल जी का बनाया हुआ, कंपोज किया हुआ ये बहुत ही प्यारा सा गाना अभी अभी आप सुन रहे थे अपने रेडियो सेट पर ऑन 100.7 एफएम रेनबो। आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त आई थिंक शायद ट्रैवल कर रहे होंगे, अपने घर को जा रहे होंगे शहर के अंदर बाय कार, टू व्हीलर एक्सेट्रा, और या फिर कुछ लोग शहर के बाहर भी ट्रैवल कर रहे होंगे थ्रू ट्रेन्स। और अगर आप नकहा जंगल से डालीगंज के बीच पैसेंजर ट्रेन लेते हैं तो आपके लिए एक अपडेट है दोस्तों, आपको बता दूं कि अब ये पैसेंजर

ट्रेन ऐशबाग तक जाएगी। साथ ही साथ ऐशबाग गोरखपुर पैसेंजर भी अब संशोधित समय के साथ बादशाह नगर से शाम 5:31 पर और गोमती नगर से शाम 5:48 तक होते हुए संचालित होगी। और ट्रेन्स की ही जब हम बात कर रहे हैं तो लास्टली मैं आपको अपडेट देना चाहूँगी कि डालीगंज मैनाली पैसेंजर आज से 21 जून तक 1.5 घंटा देरी से चलेगी। तो आप उसी तरीके से तैयारी रखिए।

आपको अपडेट देना चाहूंगी कि डालीगंज मैनाली पैसेंजर आज से 21 जून तक 1.5 घंटा देरी से चलेगी। तो आप उसी तरीके से तैयारी रखिए, उसी तरीके से ट्रैवल कीजिए, और इसी तरह की खूब सारी सिटी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे यानी हर्षा के साथ। आप सुन रहे हैं शामे अवध।

0: लखनऊ में। अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी

जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना आप सुन रहे थे 100.7 FM रेनबो पर। और सिटी अपडेट्स के साथ इतने मेलोरियस और पेपी सॉन्ग्स को आप एंजॉय कर रहे हैं शामे अवध नाम के शो में। और अगर आप म्यूज़िक के साथ साथ कॉमेडी, पोएट्री या स्टोरी टेलिंग एंजॉय करते हैं या उसका टैलेंट रखते हैं, तो ज़रा अपनी गाड़ी कारवां स्टूडियोज़ लखनऊ की तरफ घुमा लीजिए, जहां आज शाम 5 बजे से शुरू हो चुका है ओपन माइक एक्स्ट्रा वेग्यांजा। जी, तो वहां पर जाकर आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और ओपन माइक इवेंट को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूज़िक सुनना लेकिन अगर एंजॉय करते हैं, तो यू ऑलरेडी नो, आपको बस बने रहना है हमारे साथ, जहां पर हम और आप दोनों मिलकर एंजॉय कर रहे हैं इन बहुत ही मेलोडियस गानों को।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी, स्टूडियो क्लॉक में बज चुके हैं 6:53, यानी कि शाम में अवध को रैप अप करने का समय आ चुका है। मगर आप कहीं मत जाइएगा, जी आप कहीं मत जाइएगा, बिकॉज नेक्स्ट शो आई एम श्योर आप और भी ज़्यादा एंजॉय करने वाले, क्योंकि नेक्स्ट शो में आप अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी कॉल पर। तो अपनी पसंद के गाने, अपनी फरमाइशों को तैयार रखिए, और न्यूज़ ब्रेक के उस पार मैं मिलूंगी आपसे हेलो FM में, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0522-2238852 पर, या फिर 0522-2238845 पर, या यानी कि एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ 0522, उसके बाद आपको डायल करना है 2238852, या फिर 2238845, और इन नंबर्स को डायल करने के बाद आप कॉल लगा सकते हैं मुझे, और अपने पसंद के गाने की फरमाइश भी कर सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे न्यूज़ ब्रेक के उस पार ऑन हेलो FM।

बजकर 7:07 बज चुके हैं। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 खबरें। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के लिए भूमि समर्पित करने वाले किसानों का आज लखनऊ पहुंचने पर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार किसानों का हक देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 trillion की इकोनॉमी बनाने का एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने सुल्तानपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए पूरी तैयारी से जुटने को कहा। इटावा पहुंची प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने केंद्र में एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर देवरिया में जन कल्याण मेला व स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए विभाग द्वारा लगाया गया स्टॉलों पर अवलोकन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून तक चलने वाली योग सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 90% निर्माण कार्य पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर किया जा चुका है। प्रदेश ने भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित विंड प्रोक्योरमेंट चैंपियन सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान आज गोवा में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल विंड डे 2026 कार्यक्रम में पवन ऊर्जा की खरीद एवं उसके प्रोत्साहन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया गया। ज्येष्ठ अधिक मास के सोमावती अमावस्या पर आज प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और घाटों पर दान पुण्य किया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन शाम 7:20 पर प्रसारित किया जाएगा।

दोस्तों, 7:03 हो चुके हैं। 0522238852 या 2238845 पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं हेलो एफएम नाम के इस शो में, और अपनी पसंद के गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रही हूँ, तब तक सुनते हैं ये बढ़िया सा गाना।

0: लगता है। जी दोस्तों, वक्त तो लगता है 6:07 हो चुके हैं और हमारे पास एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, तो देखते हैं कि कौन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो
1: हेलो हेलो दीदी नमस्कार।
0: जी आपकी आवाज़ अब फाइनली आ चुकी है, कौन बोल रहे हैं?
1: राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: अच्छा जी सर, भगवान सिंह परमार जी बोल रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: दीदी फिल्म का नाम है मोहरा और गाने के बोले ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, और आपको डेलिकेट रहेगा दीदी। और आपके यहाँ से जो आरजे हैं, सालनी दीदी है, चंद्रकला दीदी है, मोना दीदी है, अलका दीदी है, प्रीति दीदी है, तरन्नुम दीदी है, शिल्पी दीदी है, और हमारे मित्र हैं राजन गंगवार जी, प्रेम सिंह सिसोदिया जी, सारून अंसारी जी है, अविनाश तेली जी हैं, मिंटू तिवारी है, और विनीत कुमार, इन सबके साथ सुनना चाहेंगे दीदी। मोनू राजवंशी है
0: जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मुझे ये डेडिकेट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और आपने बहुत हमारी इतनी सारी आरजे फैमिली को डेडिकेट किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आई होप कि आप इस गाने को अपने सभी डेडिकेटेड जितने भी आपके दोस्त और फैमिली मेम्बर्स हैं उन सबके साथ इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, मोहरा फिल्म से आपके रेडियो सेट्स पर आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा जाना पहचाना, बहुत ही पॉपुलर गाना, तो चलिए सुनते हैं, चलिए एंजॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को।

0: जी दोस्तों, ये बड़ा ही प्यारा सा गाना अभी अभी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। 7:13 हो रहे हैं और हमारे साथ फिर से लाइट पर कोई जुड़ चुका है, तो देखते हैं कौन है अब इस बार हमारे साथ। हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, कौन बोल रहा है?
1: मैं रामू बोल रहा हूँ मैम।
0: रामू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो FM में। आज आप कौन सा
1: दिलवाले
0: गाना
1: मूवी
0: सुनना
1: देखा है आपने?
0: चाहेंगे?
1: अरे मैम, दिलवाले मूवी से सुना दीजिए मुझे गाना कोई।
0: अच्छा, दिलवाला दिलवाले मूवी बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक, बहुत ही ज़्यादा जानी मानी मूवी है शाहरुख खान जी की। उसमें तो मुझे भी बहुत सारे गाने पसंद है। आज आप इस प्यारे से गाने को किसको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको मैम,
0: थैंक यू सो मच रामू जी।
1: और रिंकी पिंकी है हमारी बहनें, तो
0: अच्छा, रिंकी पिंकी जी को।
1: सुरभि सिंह है मैम।
0: जी धन्यवाद, आपका इतना प्यारा गाना आपने रिक्वेस्ट किया। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गाने को। ये है फ्रॉम द फिल्म दिलवाले, अरिजीत सिंह जी की आवाज़ में, जिसका नाम है गेरुआ।

0: Açık Samaçar. मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज सुबह शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और ख़ास तौर पे यहाँ एयरोट्रॉपलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए

0: आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिक करण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को हवा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की इस अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
3: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
4: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रख कर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं जलाभिषेक किया। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: Sweden will be another big challenge again, and but we have a whole week to prepare for that.
2: Also in Group F, Liverpool's Alexander Isak and Arsenal's Viktor Gyökeres both scored as Sweden beat Tunisia 5-1. Here's the Sweden boss, Graham Potter.
3: Obviously, it's a great night for us, a great start, a solid team performance that then allowed Alex and Viktor to show their quality, which obviously they did. It's obviously a good night to start the tournament with 5-1, and a win is fantastic for us.
2: The World Cup action continues today in Group G. Belgium play Egypt in Seattle. There are also two matches in Group H. Spain play Cape Verde in Atlanta, and Saudi Arabia face Uruguay in Miami. Meanwhile, the England midfielder Jordan Henderson says he doesn't understand the criticism of his teammate Jude Bellingham. Henderson's been speaking as England prepare for their opening match against Croatia on Wednesday.
4: I find it hard to read sometimes, really, because I just know how big an influence he is on this team, how good a teammate he is off the field, and what he gives us is just something really special.
2: And for more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
5: World Football Update from the BBC.

0: दोस्तों 7:32 हो रहे हैं, अभी अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद आपने सुनी फीफा वर्ल्ड कप की अपडेट्स। और अब दोबारा से शुरू हो चुका है प्रोग्राम हेलो एफएम, जिस पर हमारे साथ कोई इंतज़ार कर रहा है, लाइन पर कोई आ चुका है, देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कौन है?
1: मोहम्मद तालिब अंसारी, राजा कटरा बाराबंकी से बोल रहा हूँ
0: जी। हेलो मोहम्मद तालिब अंसारी जी, कैसे हैं आप और आज कौन सा गाना सुनने वाले हैं?
1: जी हम बढ़िया हैं, ठीक हैं। और हर्षा मैम, अपने हालचाल बताइए, कैसी हैं आप?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: चलिए ठीक है, बढ़िया है, सब लोग ठीक ठाक रहे, सब लोग सुनने वाले सब लोग ठीक ठाक रहे
0: जी।
1: और
0: बिल्कुल
1: आज भी
0: बिल्कुल,
1: बहुत दिनों के बाद आप आई हैं प्रोग्राम करने।
0: हाँ, और मैं कोशिश करूंगी अब से जल्दी जल्दी आऊँ, कोशिश तो हमेशा ही रहती है।
1: लेकिन सबसे अच्छी खुशी तब मिलती है जब कॉल लग जाती है, किसी भी लिसनर की जब कॉल लग जाती है तो वो बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल, तो आज
1: तो
0: आपके लिए बहुत ही लकी डे है। आज कौन सा गाना सुनने वाले हैं आप?
1: हम तुमसा नहीं देखा, इस मूवी का गीत सुनेंगे। मैंने सोच लिया, एक कुछ इस तरीका का गीत है, वही गीत हम सुनेंगे
0: जी, तुमसे तुमसा नहीं देखा, अ लव स्टोरी, जो कि 2004 में रिलीज़ हुई थी, इस मूवी का गाना आपने रिक्वेस्ट किया है, बहुत ही प्यारा गाना है। थैंक यू सो मच
1: जी।
0: रिक्वेस्ट करने के
1: और
0: लिए। किसे
1: दो नाम लेना
0: डेडिकेट करेंगे
1: चाहेंगे
0: आप?
1: जी, हमारे भाई हैं मोहम्मद आसिफ अंसारी तेलंगाना हैदराबाद से, और मोहम्मद साबिर भाई हैं कानपुर से। सर जी बस, और बस ठीक है।
0: वाह वाह वाह, स्पेशल कुछ लोगों को आप डेडिकेट करना चाहेंगे
1: जी, और
0: और
1: सभी सुनने वालों को
0: सभी सुनने वाले तो हैं
1: जी।
0: नहीं, ऑफ कोर्स उनको
1: गीत
0: अगर
1: बहुत
0: आप
1: अच्छा
0: नहीं
1: है,
0: डेडिकेट करोगे तो मैं डेडिकेट कर दूंगी।
1: गीत बहुत अच्छा है, सभी लोग एंजॉय करें।
0: हाँ बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सा गाना मोहम्मद तालिब अंसारी जी ने हमें रिक्वेस्ट किया है, तो चलिए साथ में एंजॉय करते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म से मैंने सोच लिया।

0: जी 7:40 हो रहे हैं। अभी अभी हम लोग सुन रहे थे, इंजॉय कर रहे थे ये बड़ा प्यारा सा गाना, मैंने सोच लिया, लेकिन अब सिर्फ सोचा ही नहीं, डायल कर दिया है एक बड़े ही प्यारे से लिसनर ने हमारे कॉल को और इस वक्त हमारे साथ लाइन पर बने हुए हैं। तो देखते हैं कि अब हमारे साथ लाइन पर कौन जुड़ चुका है। हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहा है?
1: राम प्रसाद बोल रहे हैं।
0: राम प्रसाद जी, कैसे हैं आप और आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: हम अच्छे हैं और गाना सुनना चाहते हैं कर्मा फिल्म का।
0: जी, कर्मा फिल्म का। ओके,
1: गाने के बोल हैं, मैं तुझे रब से मांग लिया।
0: जी, ओके ओके ओके, कर्मा फिल्म से मैंने तुझे रब से मांग लिया। बड़ा ही प्यारा सा गाना आपने रिक्वेस्ट किया है। और मुझे ये तो बता दीजिए कि आप इस गाने को क्या किसी को डेडिकेट भी करना चाहेंगे?
1: सुनने वालों के लिए, आपके लिए भी।
0: ओह, धन्यवाद राम प्रसाद जी, हम सभी गानों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे आपके इस गाने को। मुझे लगता है इतने मेलोडियस सॉन्ग को हम सभी इन्जॉय करेंगे। तो श्रोताओं, सुनते हैं ये प्यारा सा गाना जिसका नाम है मैंने रब से तुझे मांग लिया, जो कि है कर्मा फिल्म से। और राम प्रसाद जी, धन्यवाद हमारे साथ लाइन पर जुड़ने के लिए। तो चलिए इन्जॉय करते हैं इस प्यारे से गाने को।

7:52 हो चुके हैं और हमारे साथ फिर से शायद लाइन पर कोई जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद हमारे साथ जो लाइन पर जुड़े हुए थे उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, शायद उनका फ़ोन कट गया है, मगर कोई बात नहीं, उनकी पसंद का गाना हम लोग ज़रूर इन्जॉय कर लेते हैं। उन्होंने एक बड़ा ही प्यारा सा गाना रिक्वेस्ट किया था, तो चलिए उनकी पसंद का गाना ही सुन लेते हैं।

0: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
1: जी दोस्तों, तो 7:58 हो चुके हैं, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रोज। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। नेक्स्ट शो न्यूज़ ब्रेक के उस पार आप सुनेंगे आप शार, तो सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए, फिर मिलेंगे चलते चलते।

नमस्कार, 8 बज चुके हैं, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ उनकी मुलाकात भारत स्लोवाकिया की दोस्ती के लिए बेहद खास पल है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मोदी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में

ऑटोमोबाइल, रेलवे, उन्नत विनिर्माण और हरित प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत स्लोवाकिया संबंधों की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर पर पहुंचाया है। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टूड़ियागंज लखनऊ के सभागार में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग दिवस हजारों वर्षों से प्रचलित है। भारत का योग पूरे विश्व में अपनी खास पहचान बना चुका है। आयुष मंत्री ने कहा कि आज की व्यस्ततम जीवन शैली में योग प्राणायाम के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखा जा सकता है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को गौशालाओं के अवस्थापना संबंधी कार्य अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए। बांदा जनपद के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज मीडिया संवाद कर केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से हर क्षेत्र में कार्य किया गया है, चाहे किसानों की सम्मान निधि की बात हो या फिर रोजगार। श्री सिंह ने कहा कि सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। आज किसान सम्मान निधि हो या और कोई योजना, पूरा पैसा सीधे खातों में पहुँचता है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आज गोरखपुर हवाई अड्डे पर यात्री सुविधा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान यात्रियों का पारंपरिक तिलक लगाकर स्वागत किया गया और उन्हें पौधे भेंट किए गए। इस पहल का उद्देश्य पौधरोपण को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और हरित जीवन शैली अपनाने का संदेश देना है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।

ये रोज रात को रेडियो कानों के बेहद करीब कर लेना। एतबार यही है ना, जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला मिलना है, ढेर सारी उम्मीद जरा इंतजार यही है ना, इश्क की हर बात पर जो मुस्कुरा देते हैं उनसे मिलकर जाना। ये सब गमों की गर्मी खींच के सींच दे जो रूह तलक, वो आबशार यही है ना।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति

0: 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: हम यहाँ जिंदगी से सारे खार हटाने आए हैं, हम यहाँ जिंदगी से सारे खार हटाने आए हैं, हम आपके सारे गम मेरे सरकार हटाने आए हैं। मिलो तो हंस के मिलो, खुशियों का ठिकाना न रहे। तपते सहरा में हम आबशार लुटाने आए हैं।

अच्छा, इतनी सी बात कही और कह के रह गए, वही दो लफ्जी हमला और हम सह के रह गए। मेरा गरूर, मेरा मैं, यही सरूर, यही वजह, बस इतनी ही उड़ान थी हवा में और यही कह के ढह गए।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: उलझने ऐसी न थी कि सबसे साझा कर लेते, कर्ज चुकाने थे सो क्यों ना खुद को बेचने का वादा कर लेते। हाँ ऐसा न था हमारा रिश्ता तकिए से कभी भी, कि सर टिकाने से पहले सब बताने का इरादा कर लेते।

किसी की राय पर हम ख्वाबों को रोजगार का मुलाजिम छोड़ाए हैं। हम भलमन साहस जो कमाया सब मुनज्जिम छोड़ाए हैं। तुम ही कहो कि रास्तों से मोहब्बत मंजिल तलक चलाए रखेगी ना। यही जिद थी, हम इसी पर सब मरासिम तोड़ आए हैं।

हमसे सबको उम्मीदें थीं, तो भी इतना तो न सहना था, इतना ही तो कहना था और बात पे टिक के रहना था। सबको पता था रात का सौदा दिन चोरी हो जाएगा, उनको जुल्मत करनी थी, हमको सब चुप सहना था। उनको जुल्मत करनी थी, हमको सब चुप सहना था।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर

0: हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये

0: होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो जो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है, मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ के रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख

0: रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
2: एलएनजी कैरियर दिशा
3: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
1: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: मंडे मॉर्निंग ब्लूज हो गए पुरानी बात, क्योंकि अब मंडे इवनिंग का स्वैग हो गया है शुरू। ऑफिस के सारे ईमेल्स और मीटिंग्स को फटाक से कर दो लॉग आउट, क्योंकि पॉप टाइम का सर्वर फुल स्पीड में दौड़ने वाला है, बल्कि उड़ने वाला है। क्योंकि मंडे ब्लूज नहीं, सिर्फ हाई वोल्टेज की बीट्स बजेंगी। अपने स्पीकर्स का वॉल्यूम सेट कर लो, क्योंकि आज की

कहते हैं मंडे को सिस्टम स्लो हो जाता है, पर हमारे स्टूडियो में आज कोई स्पीड लिमिट है ये नहीं है। अगला गाना वो है जो आपके अंदर

पूरे थके हुए सिस्टम को एक बार में कर देगा रिबूट। और अपनी सीट से उठकर जूते तस्मे कस के बांध लीजिए और टैप करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये वाली बीट आपसे न केवल आपको नाचने पे मजबूर कर देगी बल्कि गाने पे भी मजबूर करेगी।

आज किसी कोई परवाह नहीं करनी है कि कैसा है, कि अभी पहला दिन ही बीता है हफ्ते का, अभी तो पूरा हफ्ता बाकी है। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। जो स्वैग शाम आपके भीतर से बाहर निकलेगा, वही पूरे हफ्ते की टोन इस कदर प्यारी, इस कदर एनर्जेटिक सेट कर देगा कि अगले ट्रैक पर तो आप झूम ही उठेंगे। अगर

सुल्तान रजा जी ने लिखा है, नमस्ते नितिन भैया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सुल्तान रजा जी, कैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रजा, इकबाल रजा, जीशान रजा, अफसल रजा, मुनीस रजा, सादिक रजा, मम्मी पापा आपकी आवाज़ में पॉप टाइम बहुत अच्छा लगता है। नितिन भैया ये बताओ आप कहाँ चले जाते हो? घर जाते हैं और कहाँ जाएंगे? हैं जी, हाँ जी, वापस आ गए ना आपसे बातें करने के लिए। और कुछ बढ़िया से भी लिख के भेजिए हमको। विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल जिला सीतापुर, पॉप टाइम प्रस्तुत करने वाले सरजी को गुड इवनिंग, शुभ रात्रि, सब एक साथ। आपकी आवाज़, आपका अंदाज सुपर हिट लगता है, पिछला प्रोग्राम सुपर हिट किया, धन्यवाद उसके लिए। कुछ दोस्त हैं मेरे, आज़ाद सेमरी से, ओमकार सीतापुर से, सुरभि सीतापुर से, क्षमा परवीन अंसारी सीतापुर से, संतोष मौर्य हरदोई से, वीरपाल अतरौली संडीला से, सीमा रावत राजाजीपुरम लखनऊ से, ममता हरदोई से, संजय अतरौली संडीला से और रिंकी पिंकी रायबरेली से। इतने सारे लोगों के साथ इन्होंने हमको मैसेज किया है। गुड इवनिंग सर, प्रोग्राम हनहनुआ लग रहा है, मूड बिल्कुल मस्ती मस्ती हो रहा है। कुछ मेरे रेडियो दोस्त के नाम शामिल कर लीजिए, कुलदीप गुप्ता, वैज अंसारी, महेंद्र दीपन, गौस मोहम्मद अंसारी, बाबू अंसारी, देवकली, अहमदपुर बाजार बाराबंकी से हमको लिख के भेजे हैं ये सब कुछ। तो आप अगर हमको अभी तक मेल नहीं किए हैं तो कर दीजिए हमको मेल, fmakashwanilakhnow@gmail.com पे, हिंदी, अंग्रेजी, हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, भोजपुरी, जिस भाषा में आपका मन करे हमको एक प्यारी सी मेल लिख के भेज दीजिए। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो दूसरे आरजे इसकी तारीफ लगी है, खराब लग रहा है तो हमारी बुराई लिख के भेज दीजिए, सब पढ़ेंगे, सब बताएंगे आपको।

तो लिख के भेजिए कौन सा गाना आपके दिल में उतरा और कौन से गाने के साथ में आपने किया एक जबरदस्त डांस, क्योंकि एक धांसू ट्रैक खत्म होता नहीं कि दूसरा सीधे आपके दिल में उतरने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तैयारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पॉप टाइम में हमारा उसूल एकदम क्लियर है, म्यूजिक ऐसा जो सीधे ब्लड की रफ्तार को बढ़ा दे। अगला गाना उसी फास्ट लेन में सीधे आपके लिए, और कुछ लोग, आप में से कुछ लोग हमारे बचपन में पहुंच जाएंगे। आपकी उम्र पे कोई कमेंट नहीं करेंगे, आप हमारी उम्र का अंदाजा लगा भेजिए हमें लिख के कि कितना लग रहा, कितने बूढ़े हैं हम।

प्रवीण लिखें कि हमारी आवाज से इनको लग रहा है कि हम शायद 50 के आसपास होंगे। कितना पास प्रवीण, पूरा लिखो। हैं, प्रोग्राम मस्त लग रहा है नितिन सर जी। इस प्रोग्राम को सुनकर डबल नहीं ट्रिपल काम करने लगते हैं। बस आंधी आ जाएगी, वैसे भी मौसम उसी तरह का बना हुआ है। मेरे दोनों भाइयों के नाम ले लीजिएगा, आसिफ अंसारी हैदराबाद से, तालिब अंसारी राजा कटरा से, और ये मोहम्मद साबिर अंसारी ने हमें लिखा है चमनगंज कानपुर से। तो आंधी ना आए आपके यहाँ, हम यही चाहेंगे। प्रोग्राम बहुत झकास लग रहा है, टॉप गर्दा उड़ा रहे हैं, काम के साथ साथ पॉप टाइम सुन रही हूँ। आपने उम्र पूछी है तो मैंने आपको देखा, तो देखा वाली उम्र थोड़ी ना बता सकते हैं, अंदाजा लगाना था आवाज से। रोशनी रावत नाम है इनका, बमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से, चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हैं। बबीता राव, नीलू शर्मा दीदी, गुलाब शाह दीदी, शाजिया अंसारी जी, साहिबा जी को मेरा सलाम बोल दीजिए। तो आपका सलाम हमने पहुंचा दिया है। कमल लिखते हैं, कमल शंकर पांडे ग्राम मोहलिया कला चौराहा जिला सीतापुर उत्तर प्रदेश से मेल कर रहे हैं। मैं कार्यक्रम पॉप टाइम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, आप कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए और कार्यक्रम में मेरा मेल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा इन्होंने सुनील सर जी को लिखा है, तो सुनील सर जी तक आपकी बात पहुँच जाए हम यही चाहते हैं। श्री गणेशाय नमः। पॉप टाइम जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानुशंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, नीरज, मधु, बजरंगी काका, सबसे पहले हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद पहुंचे। फरमाइश है कि ये वाला गाना बजा दीजिए, तो फरमाइश

वाला गाना तो नहीं ना बजता है जी, यहाँ तो नहीं बज सकता है फरमाइश वाला गाना, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो फरमाइश वाला नहीं है। फिलहाल वक्त आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना भेज रहे, जिसको जिसको पसंद आए लिख के भेजो।

भैया जी नमस्ते, कैसन है आप? हम तो बढ़िया बानी, आप बताई। उम्मीद आहे बहुत नेवक हुए हैं। नेवक? नेवक का मतलब प्रोग्राम अच्छा लगत बा और उम्दा लगत बा। मोनू सेठ, गुनगुन सेठ, परी सेठ, कालिसपुर उजगांव BHEL अमेठी से बुजुर्गों को उपेक्षित न महसूस होने दें, बल्कि उन्हें ऐसा माहौल दें जिसमें वो खुशी और सुकून के साथ रह सकें। ये लिखकर भेजा है मोनू सेठ जी ने। आपकी बात हम तक पहुंच गई है। और जावेद अख्तर साहब, आप नई मेल लिख दीजिए, उसी मेल में सारा भेजते, हम शुरू में पढ़ लेते किसी और का नाम। हाँ, गुड इवनिंग नितिन जी, आप शायर प्रोग्राम में आपका शायराना अंदाज, सभी गजलें दिल को छू गई। पॉप टाइम में धमाकेदार शुरुआत, गीत जबरदस्त सुनने को मिल रहे हैं। हम तो आपकी आवाज के दीवाने और मतवाले हैं। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से लिख रहे हैं हमें शमसुल कमर राही और बेगम रुखसार के साथ में। तो ये जो मज़ेदार बात है, ये हमने आपको पढ़ के सुना दी है। भोजपुरिया तड़का जबरदस्त लगा साहिब जी, ये गीता सेठ जी ने हमें लिख के भेजा है। ब्रजेश सिंह जी हमको लिखते हैं, धमाकेदार प्रोग्राम का आगाज एकदम झक्कास लग रहा है, आपका प्यार सिर चढ़कर बोले बार बार, और आपका प्यार है बेशुमार।

अभी सुनील भाई को नमस्ते जो आपने भेज दिया है लिख करके, हम कैसे पहुंचाएं उनको, अब वो सुन रहे होंगे तो उन तक पहुंच गया है। पॉप टाइम में हम भी आ गए हैं झूमने, मिक्स तोड़का जबरदस्त जबरदस्त ये लिख के भेजा अभी सोनू परवाना जी ने। गुड इवनिंग प्रिय आरजे विनय यादव सर, कैसे हैं? तो विनय यादव सर तक अगर आपकी बात पहुंच रही होगी तो उन तक पहुंच जाएगी। प्रोग्राम बहुत सुपरहिट, बहुत अच्छे अच्छे गाने प्ले कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम का भेजे हो हैं? कोई बात नहीं अजय, मिस्टेक्स होती रहती हैं, दैट्स व्हाट लाइफ इज। कमल पांडे लिखते हैं आपकी उम्र 40 वर्ष है, कृपया कार्यक्रम के अंत में आप भी अपनी उम्र हम सभी को बता दीजिए जिससे हमको पता लगे कि हम लोगों ने जो उम्र बताई है वो सही है गलत। आप कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत कर रहे हैं जो बेहद पसंद आ रहा है। आपकी बात से मेरी हंसी जो है वो छूटने वाली थी पर हमने रोक ली है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। बहुतें नीक हुई हैं लिखे थे मोनू भैया, अच्छा जी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप नीक लिखे हैं जी। हाँ जी, मोहम्मद आसिफ अंसारी हैदराबाद तेलंगाना से सुन रहे हैं। लखनऊ का दिल आरजे निखिल नहीं है इस समय यहाँ पे, लेकिन उन तक आपकी बात पहुंच जाएगी। और भी जो आरजेज आपको पसंद है जिनके प्रोग्राम आपके दिल को छू जाते हैं उन सबका नाम लिख के भेजिए। गुड इवनिंग सर जी, उम्मीद बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, ईमेल बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, आपकी उम्र 36 होगी पक्का। राही फ्रॉम लखनऊ, कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत जोर जोर से झूम रहे हैं। ये वाला तो आप पहले लिख के भेज चुकी हैं तो ये वाला पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, अब कुछ नया सोचिए, वही वाला कितने बार लिख के भेजेंगी हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उम्र बताने का ये सिलसिला जारी रहेगा। वैसे इन्होंने 36 लिखी थी हमारी उम्र, और इस वक्त 9:36 और 36 सेकेंड्स हो रहे, कोई आगे फोटो खींच लो।

नमस्ते सर, रेनबो लखनऊ पर पॉप टाइम कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है। हम सभी लोग एफएम रेनबो लखनऊ के कार्यक्रम पसंद करते हैं। प्रोग्राम के कलेवर में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो काबिले तारीफ है। अरविंद, दीपा, तन्वी तिवारी, प्रतिमा प्रतिष्ठा, श्याम कुमारी, गोविंद दुबे, ग्राम धर्मदेवा, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से लिख रहे अरविंद दुबे जी के साथ में सब लोग एक साथ। मेरे मेल कहाँ गए नितिन भैया जी? ईमेल एड्रेस तो सही है, कई बार चेक किया पर आपने मेरा मेल पढ़ा ही नहीं। तालिम अंसारी, राजा, कटरा, बाराबंकी। अब आपका मेल पढ़े, आपके सब दोस्तों के नाम पढ़े, आप कहाँ थे उस वक्त हैं? मोहम्मद आसिफ अंसारी जी, तेलंगाना से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। उम्र 26 लग रही, कैसी बातें आप कर रहे हैं? कौन बोला है आपको ये सब बोलने को? आप सर अपना नाम बता दो, मैंने अभी ओपन किया। अच्छा जी, तो हमारा नाम नितिन है, आपने नाम पूछा इतनी मोहब्बत से, हमने आपको अपना नाम बता दिया है। प्रोग्राम एकदम झलझलुआ, ये नया शब्द हमारी

हल्के शब्द युग्म है फ्रेज हमारे डिक्शनरी में ऐड करने के लिए आंचल सेठ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास विकास लिखते हैं, जब तक भोजपुरी सॉन्ग नहीं मिलता है तब तक मजा नहीं आता है, तो हम तो भोजपुरी सॉन्ग तो बजाए थे, आप सुने नहीं हमको लग रहा है।

0: मुनेश कुमार राज गांव भानपुर हरौआ जिला लखीमपुर खीरी से लिखते नितिन सर को मुनेश कुमार राज का प्यार भरा नमस्कार। आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। सर आज उम्र पर बात उठी है तो आज उस पर जो सही आपकी उम्र बता दे उसे आप कार्यक्रम में विनर बना देना। हमारे हिसाब से तो आपकी उम्र 30 साल है। हम FM रेडियो के दीवाने, आपकी आवाज में हमें हर कोई जाने कुछ भी हो, लेकिन आज आप कार्यक्रम बहुत ही लाजवाब कर रहे हैं। कुछ भी क्या हो, प्रोग्राम हो और क्या हो, है ना। और हमारी जो उम्र आप लोग बता रहे हैं ना, बहुत ही गलत बता रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। वही जो 55 साल हमारी उम्र बताए हैं, आज के प्रोग्राम के विनर तो वही हैं। भोजपुरी तड़का जबरदस्त लगा, एक और कोनो गाँव नहीं बजाए दो साहिब जी। तो फिर गीता जी अभी फरमाइशी प्रोग्राम तो है नहीं, तो फिर रहीमा कैसे बजाती हैं। ये मुझे बहुत पसंद आता है जब अवधि लिख करके आप भोजपुरी गाने की फरमाइश करते हैं और हम आपके लिए एक पंजाबी गाना बजा देते हैं।
1: सारे सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा।

तालिम अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से लिखते हैं, उम्र आपकी बचपन है और दिल बचपन का। नितिन भैया जी सही ना पाजी, तू अड्डे नाल असी कोई सौदा करें खोटा हो जाए, हो सकता है। बिल्कुल सही है जी, 16 आने सही। अरे भैया भोजपुरी वाला बजाए दा मजा नहीं आवत बता, मजा ले खातिर तो शुरू से सुना करें ना बाबू, जब बीचे में आओ बात कैसे चले। आपकी एज 32 साल है, आपका प्रोग्राम बहुत ही झकास चल रहा है, गाने हनहनुआ बज रहे हैं, वेरी वेरी गुड नाइट अखिल जी। अजय निशा सिंह बंगला बाजार आशियाना, इतना करीब से लिख रहे हो, नाम गलत लिख रहे हो, गलत कर रहे हो आप है। अहमद नवाब ने संडीला से लिख के भेजा, हेलो गुड इवनिंग नितिन भाई, कैसन है आप? हम तो बढ़िया बानी, आप बताएं। पोस्टर तो आपका लगना चाहिए, आप प्रोग्राम बहुत अच्छा करते हैं, जो लाइन साहब बोलते हैं उसमें आपकी मेहनत दिखती है, पॉप टाइम और मुझे आपका आबशार बेहतरीन लगता है हमेशा ही, और जो आप रजनीगंधा करते हैं और जब किसी पर स्पेशल होता है तो आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती, बाकी दिन नहीं अच्छी लगती। अब आते हैं आपकी उम्र पर, अगर आपकी आवाज़ से गेस करें तो 24, 25, 26, और अगर चेहरे से देख कर खूब दाढ़ी से बताएं तो आप हमारी दाढ़ी की उम्र बता रही हैं, बहुत ही गलत कर रही हैं आप। अब सही उम्र तो आपको ही पता होगी, इन्होंने हमारी उम्र लिखी 35, 38, 40, तीनों उम्रें लिख दी, मतलब टोटल 6 उम्रें लिख दी हैं। अहमद नवाब संडीला से बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी प्यारी सी मेल भेजने के लिए, और आप सब लोग जो शिकायतें कर रहे हैं हमसे कि भोजपुरी गाना नहीं बजाए, हम बजाएं भोजपुरी गाना, आप हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं सुने, हमको बहुत दुख हुआ है इस बात का, है जी हाँ जी। बाकी सारी मेड इन इंडिया लैंग्वेजेस में गाना बजाते ही हम।

अर्चना बालजी कुमारगंज अयोध्या प्रेजेंट टाइम में लखनऊ से आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं। सर जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपको फर्स्ट टाइम ईमेल कर रही हूँ। मेरी दोस्त भी आपको सुन रही है, बबीता राव, रोशनी रावत दी, सीमा पाल, रीना पाल, अर्चना पाल। थैंक यू सर जी। तो थैंक यू अर्चना जी आज के प्रोग्राम का अंतिम मेल करने के लिए और हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, और आप सब ने हमारे इस छोटे से गेम में इतनी मोहब्बत से हिस्सा लिया, इसलिए बहुत बहुत बहुत सारा थैंक यू। तालिब जी, आपकी मेल अभी हमें मिली है ना। ये प्रोग्राम सच में एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। जब भी सुनो ये प्रोग्राम तो एनर्जी से भरपूर हो जाते हैं सब लोग, सारे गीत मस्त, हम भी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं। नितिन सर जी, वेल डन। तालिब अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया ये प्यारी सी मेल करने के लिए। और अगर आप में से किसी की मेल गलती से छूट गई है तो आपसे माजरत। बाकी आपने हमारे प्यारे से छोटे से नन्हे से गेम में हिस्सा लिया, हमारी उम्र बढ़ा चढ़ा के, और

काफी बार बहुत कम करके भी बताई, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे हैं आप लोग, इसी तरह से मेल करते रहिए, और सिर्फ हमारी नहीं, सारे आरजीस की जिनको जिनको आप पसंद करते हैं, प्रोग्राम की तारीफ करते रहिए, और थैंक यू सो मच। अभी पॉप टाइम से हम आपको कहते हैं थैंक यू। एक प्यारा सा गाना, समाचार उस पार कुछ खास है, तो ठहरिएगा, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि यह है 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब सुनिए FM समाचार। हापुड़ की तीर्थ नगरी ब्रिजघाट पर सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने बढ़ चढ़कर गंगा में स्नान कर पितरों को तर्पण किया। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। जनपद हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिजघाट में सुबह से ही गंगा के जल में स्नान करने का सिलसिला शुरू हुआ और लगातार स्नान जारी है। हापुड़ सहित दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए हापुड़ पहुंच रहे हैं, तो वहीं श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की हुई है। मैनपुरी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष में आज योग सप्ताह का शुभारंभ किया गया। लोहिया पार्क में आयोजित योग शिविर में मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु ने योग संकल्प, योग प्रार्थना और सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है और नियमित योगाभ्यास से व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। उन्होंने लोगों से अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने का आह्वान करते हुए कहा कि कपाल भाती, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी योग क्रियाएं अनेक बीमारियों से बचाव में सहायक हैं। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज वाराणसी में नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने नगर निकायों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगर विकास विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री श्री शर्मा ने आगामी वर्षा ऋतु को देखते हुए नालियों एवं जल निकासी तंत्र की व्यापक सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान जल भराव की समस्या किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी नगर निकाय पूर्व तैयारियां समय रहते पूरी कर लें। मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को चित्रित करती हुई एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19 जून 2026 को कार्यालय क्षेत्रीय मध्य निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी 27 अशोक मार्ग लखनऊ

प्रातः 10:30 बजे से किया जा रहा है। प्रतियोगिता पूर्णतः निःशुल्क है, जिसमें किसी भी आयु वर्ग के छात्र छात्राओं, पुरुष महिलाओं के प्रतिभाग करने के लिए आजादी है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागी अपना पंजीकरण दिनांक 18 जून 2026 को सायंकाल या फिर 19 जून को 9 बजे के पहले करा सकते हैं। प्रतियोगिता हेतु पोस्टर, चार्ट पेपर प्रतियोगिता स्थल पर निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे तथा पोस्टर बनाने संबंधी अन्य आवश्यक सामग्री प्रतिभागी स्वयं लाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

वो रुपहले पर्दे पर अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ जब प्रकट होती तो श्रृंगार रस में पगे हुए दर्शक अपने मन के चांद को उनके रूप की चांदनी के साथ जोड़कर बेतहाशा गुनगुनाने लगते। वो कैमरे के लेंस की ओर देखकर मुस्कुराती और हिंदुस्तानी सिनेमा से जुड़ी लाखों जोड़ी आंखें उनकी शोखियों पर जानिसार हो जाती। 1936 से 1963 तक का एक दौर था जब वो मलिकाए हुस्न मलिकाए अदाकारी के नाम से हिंदुस्तानी सिनेमा के मुखलिसों के दिलों पर तख्त नशी रही थी। वो गजाला आंखें जिनमें हर भाव अपने लिए कोना तलाश कर बस ठहर ही तो जाना चाहता था। वो खूबसूरत सरापा के इस्मत आपा उन्हें महबूबाए आलम यानी यूनिवर्स की प्रेमिका कहा करती थी। कौन थी वो और आज उनका तस्किरा क्यों? आपके सब सवालों के जवाब देंगे, मगर पहले उनकी आवाज में एक नगमा, बाकी उनसे आपकी जान पहचान का, आपके दिलों की आशनाई का जिम्मा आज हमारा। क्यों? क्योंकि ये है सुरों की महफिल का सबसे सुरीला हमसफर, रजनीगंधा। और कहां, बस यहां, यह 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सुरैया जमाल शेख। एक ज़माना था जब हिंदुस्तानी फिल्मों में काम करने के लिए गाना गाने में महारत की भी बहुत ज़रूरत होती थी। उस ज़माने में हीरो हीरोइंस न केवल उम्दा अदाकारी करते थे बल्कि अपने गीत नगमे गज़लें खुद ही गाया करते थे। ऐसे ही दौर की एक बड़ी अजीम अदाकारा और गायिका थीं सुरैया जमाल शेख। आज से कोई 97 बरस पहले आज ही की तारीख थी जब लाहौर में अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख साहिबा के घर में जन्मी सुरैया। तो जब एक बरस की हुई तभी परिवार बंबई आ गया तालीम के लिए। स्कूल जाने लगी तो जिस स्कूल में उनका दाखिला कराया गया वहीं आगे चलकर हिंदुस्तानी फिल्म उद्योग में बहुत नाम कमाने वाले दो लोगों से उनकी दोस्ती हुई।

किसी एक जगह से दूसरी जगह उठकर चले जाना भर इंसान के दिल में कैसे किसी नश्तर की तरह पैवस्त हो सकता है और उसकी जिंदगी में कितना दर्द उतर सकता है, यह अक्सर हमें अंदाजा भी नहीं होता। सुरैया लाहौर से बंबई आ गई थी और इस वक्त उस स्कूल में पढ़ रही थी जहां राज कपूर पढ़ा करते थे और वहीं पढ़ा करते थे मदन मोहन भी। सुरैया की स्कूल के वक्त से ही इनसे गहरी दोस्ती हो गई। मदन मोहन जी के साथ तो सुरैया ने अपने बचपन में आकाशवाणी के बच्चों के प्रोग्राम में गीत भी गुनगुनाए थे। राज कपूर और मदन मोहन उन दिनों आकाशवाणी में बच्चों के प्रोग्राम में उद्घोषणा यानी अनाउंसमेंट किया करते थे और शायद इसी जुगलबंदी का नतीजा था कि अपने 27 बरस के फिल्मी करियर में सुरैया ने 67 फिल्मों में अभिनय किया और 338 गाने गाए।

सुरैया ने पहली बार कैमरे के सामने जब अभिनय किया तो वो साल था 1936 और उनकी उम्र थी महज 7 बरस और फिल्म थी मदाम फैशन। फिल्म की डायरेक्टर थी जद्दनबाई, जिनकी बिटिया नरगिस ने आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा पर राज किया था। पहली फिल्म के साथ ही सुरैया को कैमरे ने और कैमरे को सुरैया ने अपना दोस्त बना लिया था और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आने वाली जिंदगी में हिंदुस्तानी आवाम का दिल बगैर बताए चोरी करने वाले थे।

बोलो तो बोलो क्या करोगी, तो बोलो क्या करोगी, और अभी मचा दूं शोर तो बोलो

0: है कि एक्टर्स खुद ही गा रहे होते हैं। यही काम हिंदुस्तानी सिनेमा में भी होता था, वो मैडम नूरजहां हो या महान कुंदनलाल सहगल, सभी अपने गीत खुद ही गाते और फिर उन पर अभिनय करते थे। सुरैया ने भी अपने शुरुआती दौर से ही यही किया था। 1937 में आई फिल्म उसने क्या सोचा, 1938 में आई फिल्म मदर इंडिया, 1942 की तमन्ना और 1942 में ही आई स्टेशन मास्टर में सुरैया ने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम भी किया था और गीत भी खुद ही गुनगुनाए थे।
1: इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता।

हिंदुस्तानी सिनेमा पौराणिक कथाओं से आगे बढ़कर के मोहब्बत की कहानियों को पर्दे पर उतारने में जुट पड़ा था। साल 1942 की बात है, सुरैया ने एक और फिल्म में काम किया। फिल्म का नाम था ताजमहल और सुरैया इसमें मुमताज महल के मेन लीड रोल में थी। दरअसल हुआ यूं कि सुरैया के एक मामा हुआ करते थे एम जहूर, जो उस दौर की फिल्मों के मशहूर विलेन थे। एम जहूर, ये नाम याद रखिएगा, आगे चलकर जब ये सुरैया की जिंदगी में बहुत बड़े विलेन बनेंगे तो आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी। लेकिन उस रोज तो जहूर मामू के साथ सुरैया एक शूट देखने पहुंची और डायरेक्टर ने

12 बरस की सुरैया को देखा और उनकी जिंदगी का उस वक्त का सबसे बड़ा सरप्राइज ही उनके हाथों में सौंप दिया। और ऐसे में किसका मन का मोर मतवाला ना हो जाए भला।

उस रोज स्कूल की छुट्टियों का वक्फा था और सुरैया के मामू उन्हें लेकर शूट पर पहुंचे मोहन स्टूडियोज। डायरेक्टर नानू भाई वकील वहां पर अपनी फिल्म ताजमहल की शूटिंग कर रहे थे। नानू भाई ने सुरैया को देखा और उनके जहन में आया कि ये तो मुमताज महल है। बस फिर क्या था, बात हुई और सुरैया ताजमहल में काम कर रही थी। हालांकि इस फिल्म में सुरैया ने कोई नगमा अपनी आवाज में नहीं गाया था।

सुरैया का फिल्मी करियर ताजमहल फिल्म से शुरू हो गया। उसी दौर में एक और शख्स थे जो अपने करियर की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ रहे थे। फिर 1942 का साल आया और शहरे लखनऊ की शान नौशाद साहब ने सुरैया को गाना गाते हुए सुना। उस समय नौशाद साहब एक फिल्म में म्यूजिक दे रहे थे जिसका नाम था शारदा और उस फिल्म में हीरोइन थी मेहताब। इसी के साथ सुरैया के गायकी के करियर का भी एक बेहद खूबसूरत आगाज हो गया। हालांकि बाद के वक्त में जब सुरैया एस्टैब्लिश्ड स्टार हो गई तब उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही गाने गाए। बाकी हीरोइंस के लिए गाना गाने में एक तरह का उन्होंने परहेज ही रखा।

नौशाद साहब सुरैया के पहले और शायद इकलौते उस्ताद बन गए। दरअसल सुरैया ने कभी गाना शाना बसाना उस्ताद के साथ बैठकर नहीं सीखा था। उन्हें खुदादाद एक बेहतरीन आवाज मिली थी और वो गा लेती थी। सुरैया ने अपने फिल्मी करियर के सबसे बेहतरीन नगमे नौशाद साहब की मौसिकी पर सजाए। उन्होंने अनमोल घड़ी में 1946 में, दर्द में 1947 में, दिल्लगी में 1949 में और दास्तान में 1950 में सुपरहिट नगमे गाए। दूसरी ओर उनकी अदाकारी का करियर भी आगे बढ़ रहा था। उन्होंने शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की थी, फिर सेकेंड लीड के रोल्स किए और फिर वो लीड रोल्स करने लगी। उस जमाने में एक हीरो हुआ करते थे रहमान, जो बाद में कैरेक्टर रोल्स करने लगे। उनके साथ सुरैया की एक फिल्म आई, प्यार की जीत। साल था 1948। सुरैया को लोगों ने इतना पसंद किया कि उनके घर को ही उनके मुरीदों ने घेर लिया था। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो गई थी, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। कैसे वक्त तुरंत बदल जाता है।

मानो सब दुआएं कबूल हो रही थीं। प्यार की जीत की अपार सफलता के बाद 1949 में सुरैया और रहमान की एक और फिल्म आई, बड़ी बहन। और इस फिल्म की सफलता का आलम कुछ ऐसा था कि इसके प्रीमियर में पहुंची सुरैया को लोगों ने इस कदर घेर लिया कि भीड़ बेकाबू हो गई। पुलिस पहुंची, लाठियां भांजी। सुरैया ने इसके बाद प्रीमियर्स पर जाना ही बंद कर दिया। मगर सुरैया की फिल्मों ने लगातार बेहतरीन कारोबार किया। उनकी फिल्मों में उनकी अदाकारी और गायकी इस कदर जलवा अफरोज थी कि उन्हें मलिकाए हुस्न और मलिकाए अदाकारी के मोनिकर्स से, नामों से नवाजा गया था। एक बहुत ही अजीब सा किस्सा भी उनकी जिंदगी में घटा था, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको एक बहुत ही प्यारा सा नगमा सुनाएंगे, क्योंकि इस गाने को सुनने के बाद आप इस गाने के साथ जरूर गुनगुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सुरैया के लिए बस उन दिनों यही गुनगुनाते रहते थे।

सुरैया बहुत बड़ी सुपरस्टार बन चुकी थी और एक रोज उन्हें कहीं से शादी की शहनाइयों की आवाज सुनाई दी। उनको लगा कि रेडियो पर किसी नाटक में शहनाई बज रही होगी।

लेकिन धीरे धीरे खरामा खरामा वो आवाज उनके बिल्कुल नजदीक आती चली गई और फिर अचानक उनके घर के सामने एक बारात रुकी और उसमें लोग नाच रहे थे और शहनाइयां ढोल ताशे बज रहे थे। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया और पूछा गया कि आप कौन? उन्होंने कहा हम तो दूल्हे हैं। तो उन्होंने पूछा पलट करके कि यहां क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा हम दूल्हे हैं और दुल्हन हमारी सुरैया है, हम ब्याह करने आए हैं उनसे। अब सुरैया के घर वालों के काटो तो खून नहीं। सुरैया ने तो खुद को भाग करके जल्दी से कमरे में बंद कर लिया। बाहर पूरी बारात सजी हुई, ढोल ताशे बज रहे हैं, लोग नाच रहे हैं और दूल्हा दरवाजे पर दस्तक देकर के कह रहा है कि मैं दूल्हा हूं और ब्याह करने आया हूं। जरा तसव्वुर कीजिए कि 1950-52 की बात है, उस वक्त किस कदर हंगामा खेज हो गई होगी ये बात। किसी तरह से पुलिस को फोन किया गया, उन्हें बुलाया गया और पुलिस पूरी बारात को पकड़ करके ले गई। वैसे पुलिस वाले ने एक बड़ा मासूमाना सवाल सुरैया की मां से पूछा। उन्होंने कहा ये आपके ही घर पे सारा हंगामा क्यों होता रहता है अक्सर? वो गुस्सा करके उससे बोली तो क्या हम करवाते हैं ये हंगामा? लेकिन सुरैया की लियाकत थी कि किसी को उनसे पर्दे पर श्रृंगार रस को उनके थ्रू महसूस करते हुए इस कदर मोहब्बत हो गई थी कि उसने मन ही मन में उन्हें अपनी शरीके हयात कबूल कर लिया था और वो पहुंच गया था उनसे ये कहने कि हमसे विवाह कर लीजिए। तो कई बार उनके जीवन में इस तरह की भी हरकतें लोग करते थे जिन्हें वो प्यार से फैंस या मुरीद या प्रशंसक कहती थी। लेकिन हाल ये हो गया था कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। शॉपिंग करने से उन्हें गुरेज होने लगा था, प्रीमियर्स पर जाना बंद हो गया था और घर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बहुत बढ़ा दी गई थी ताकि फिर से एक बार कोई दीवाना उनसे मोहब्बत का इजहार करने उनके घर न पहुंच जाए। सुरैया की जिंदगी का ये तस्करा आज रजनीगंधा में यूं ही जारी रहेगा, कहीं जाइएगा मत। यह है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

सुरैया बहुत छोटी सी थी, सिर्फ 7 बरस की, जब उन्होंने सिनेमा में पहली बार एज चाइल्ड आर्टिस्ट जद्दन बाई के निर्देशन में काम किया। फिर मामू मोहम्मद जहूर के साथ वो फिल्म सेट पर घूमने गई थी और डायरेक्टर को लगा कि अरे ये तो मुमताज महल है, और ताजमहल फिल्म में वो हीरोइन बनके मुमताज महल यानी नायिका के रोल में आ गई। सुरैया ने एक बार एस्टेब्लिश होने के बाद सिर्फ अपने लिए ही गाने गाए, लेकिन उनके गायकी के करियर की शुरुआत अपने लिए गाकर नहीं हुई थी। उन्होंने महताब के लिए गाने गाए थे नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में, और उसके बाद एक बार वो एस्टेब्लिश हो गई तो लगातार अपने लिए गीत गाती रहीं, गुनगुनाती रहीं। मलिकाए हुस्न, मलिकाए अदाकारी के मोनिकर से नवाजी जाती रहीं। रहमान के साथ उनकी फिल्में कुछ इस कदर कामयाब हुईं कि फिल्म के प्रीमियर पर लाठियां तक चली। उन्होंने प्रीमियर्स पर जाना छोड़ दिया तो लोग बारात लेकर के घर पहुंचने लगे, लेकिन सब कुछ हमेशा इतना स्मूथ नहीं चलता है। बहुत छुटपन में काम शुरू किया था, इसलिए अभी वो टीनेजर ही थी कि हिंदुस्तानी अवाम के दिलों पर राज करने लगी थी। वो तख्त नशी हुई थी तो किसी भी तख्त के साथ आने वाला ताज भी उनके सर पर चढ़ा, और ताज अक्सर कांटों का ताज बन जाता है। कुछ ऐसा ही उनके साथ भी होने वाला था। वो अपने घर की इकलौती कमाऊ फर्द थी, नानी अम्मी यानी उनकी नानी भी उनके साथ रहा करती थी, और उनके पूरे करियर पर उनकी नानी की बहुत गहरी छाप थी। माँ के साथ तो उनका रिश्ता बहुत प्यारा था, माँ उनकी हर बात से मुतासिर हो जाती और उन्हें बेहद शफकत के साथ पलकों के भीतर आंखों की पुतलियों की तरह छिपा कर रखती थी। लेकिन नानी मैट्रियार्क थी, वो सुरैया की हर हरकत पर नजर रखती, शूट पर उनके ढेर सारी पाबंदियों के बीच सुरैया एक्ट करती। किसी को स्टार से थोड़ी देर ज्यादा बात कर लेती तो बहुत डांट पड़ती थी, और ये सब अपने उरूज पर बहुत जल्दी पहुंचने वाला था, क्योंकि सुरैया की जिंदगी में गुरदासपुर का एक पंजाबी मुंडा आने वाला था। क्या होगा जब सुरैया की जिंदगी में वो लड़का आ जाएगा? क्या नानी इतनी आजादी से सुरैया को उस लड़के के साथ जाने देंगी, या बीच में कुछ और हो जाएगा? ये सारा तस्करा हम तब करेंगे जब वापस आपके साथ जुड़ेंगे एक नगमे और समाचार के उस पार। कहीं जाइएगा मत, सुरैया की जिंदगी से आपको उस वक्त के हिंदुस्तान का एक अक्स भी मिलेगा, और हो सकता है अपनी जिंदगी के लिए कुछ मॉरल वैल्यूज भी आपके हाथ लगें। हम वादा नहीं करते क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, मगर हम लौटेंगे और आपको ये किस्सा तब तक सुनाएंगे जब तक सुरैया के साथ आपकी आशनाई, आपकी जान पहचान ना हो जाए। रजनीगंधा यूं ही चलता रहेगा। यह है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग एवं जिला प्रशासन भदोही के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइन ज्ञानपुर में योग सप्ताह का भव्य शुभारंभ किया गया। 15 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित होने वाले 7 दिवसीय योग सप्ताह का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष चक तथा अन्य अधिकारियों द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। संत कबीर अकादमी मगहर संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कबीर जयंती के पावन अवसर पर 27 से 29 जून 2026 तक निर्गुण त्रिधारा भक्ति उत्सव का आयोजन विभिन्न स्थलों पर किया जा रहा है। इस त्रिदिवसीय उत्सव का उद्देश्य संत कबीर दास जी के मानवतावादी विचारों, सामाजिक समरसता, प्रेम, सद्भाव एवं निर्गुण भक्ति परंपरा का व्यापक प्रचार प्रसार करना तथा नई पीढ़ी को उनकी शिक्षाओं से जोड़ना है। ये जानकारी कबीर संस्थान के निदेशक अतुल द्विवेदी ने दी। भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान की असम में हुई दुखद दुर्घटना में जनपद अलीगढ़ के जवान सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के शहीद होने की सूचना से पूरे जनपद में शोक की लहर व्याप्त है। ग्राम सालपुर थाना टप्पल निवासी सार्जेंट जितेंद्र शर्मा ने राष्ट्र सेवा के सर्वोच्च आदर्श का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। 13 जून 2026 को प्रातः भारतीय वायुसेना का AN-32 परिवहन विमान असम के जोरहाट से चबुआ के लिए उड़ान भरने के बाद लैंडिंग के प्रयास के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में कुल 6 सैन्यकर्मी सवार थे, जिनमें 3 एयरक्रू अधिकारी एवं 3 अन्य रैंक के जवान शामिल थे। इस दुर्घटना में सार्जेंट जितेंद्र शर्मा के शहीद होने की पुष्टि हुई है। प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज विधानभवन स्थित कार्यालय में पशुधन एवं दुग्ध विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गौशालाओं के अवस्थापना संबंधी कार्य अक्टूबर 2026 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्यों को पूर्ण किया जाए। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 12 बजे प्रसारित किया जाएगा।

आज रजनीगंधा में तस्करा उनका जिन्हें मलिकाए हुस्न मलिकाए अदाकारी के नाम से जाना जाता था, सुरैया। ये सुरैया के करियर के सबसे टॉप का दौर था। वो एक सुपरस्टार बन चुकी थी। उसी वक्त उनकी जिंदगी में कोई आया। दरअसल हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए गुरदासपुर पंजाब से एक जवान लड़का आया था। नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। सुंदर सजीला नौजवान, डायलॉग्स बोलने की अदा, फैशन का अंदाज, अभिनय, अदायगी, सब कुछ देखकर कुछ ऐसा लगता मानो ये लड़का बहुत जल्द बड़ा सुपरस्टार बनेगा। फिल्मी दुनिया उस लड़के को देव आनंद कहकर पुकारती थी। देव को सुरैया के साथ एक फिल्म करने का मौका मिला। साथ काम करते हुए सुरैया भी देव के पोटेंशियल से बेहद मुतमईन हुई और खुश भी हुई। लेकिन देव को तो सुरैया से इश्क ही हो गया था।

और एक बार ग्रेगरी को सिलोन यानी श्रीलंका जाना था, और वो सिलोन जाने के लिए हिंदुस्तान में ठहरे। सुरैया के एक और मामू एक्टर थे, वो भी ग्रेगरी पेक से मिलने गए और उन्होंने ग्रेगरी से बताया कि हमारी भांजी है सुरैया, वो आपको बहुत पसंद करती है, उससे मिल लीजिए, आप इजाजत दें तो मैं उसे ले आऊं। ग्रेगरी को न जाने क्यों मगर सुरैया याद थी, उन्होंने उनकी तस्वीर देखी थी। फ्रैंक ने मिल करके सुरैया के बारे में उन्हें बताया था कि हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी हीरोइन है और आपकी बड़ी मुरीद है। तो ग्रेगरी ने कहा ठीक है, लेकिन मैं खुद उनसे मिलने आपके घर चलूंगा। मामू ग्रेगरी पेक को लेकर के घर पहुंचे तो घर वालों के होश ही फाकता हो गए और सुरैया उस वक्त सो रही थी। मामू ने जाके दरवाजा खटखटाया, सुरैया बाहर निकली और मामू ने कहा कि जल्दी से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, तुमसे मिलने ग्रेगरी पेक आए हैं। सुरैया को लगा मामू उनकी टांग खींच रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, लेकिन मामू ने जब उनसे कसम खाकर कहा कि सच में ग्रेगरी पेक आए हैं तो उनके होश का ठिकाना न रहा। किसी तरह से वो तैयार हुई, ग्रेगरी के पास पहुंची और ग्रेगरी ने उनको देखते ही कहा कि यंग लेडी, यू आर टू यंग टू बी अ लीडिंग लेडी, यानी तुम तो बहुत छोटी हो, तुम हीरोइन कैसे हो। और यहां से बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अगले 2 घंटे तक लगातार चलता रहा। सुरैया को लेकिन इस बात पर भरोसा ही नहीं आ रहा था, उन्होंने तस्वीर भी खिंचाई ग्रेगरी के साथ में। और दूसरे दिन शूट पर जब यूनिट के लोगों को उन्होंने बताया तो किसी ने उन पर भरोसा ही नहीं किया, जब तक कि शाम का अखबार नहीं आ गया और उसमें ग्रेगरी पेक के हवाले से सुरैया के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी थी और फिर कहानियां बनी तो सबने मान लिया कि हाँ, सुरैया ग्रेगरी पेक से मिली थी।

सुरैया को हॉलीवुड स्टार ग्रेगरी पेक बेहद पसंद थे, इतने ज्यादा कि वो जब एक और हॉलीवुड ग्रेट फ्रैंक कैप्रा से मिली तो सुरैया ने उनको अपनी एक तस्वीर दी और उस पर अपने दस्तखत कर दिए और कहा कि इसे ग्रेगरी पेक तक पहुंचा दें। सुरैया की शिद्दत का ही कमाल था कि वो तस्वीर फ्रैंक कैप्रा ने ग्रेगरी पेक तक पहुंचा दी।

देवानंद के साथ फिल्म में काम करते हुए सुरैया उन्हें अक्सर चिढ़ाती कि वो ग्रेगरी पेक जैसे दिखते हैं। फिर धीरे धीरे पूरी यूनिट ही देव को ग्रेगरी पेक बोलने लगी। आगे चलकर देव ने ग्रेगरी के कुछ जेस्चर्स भी अपना लिए, लेकिन अभी तक सुरैया को देव से मोहब्बत नहीं हुई थी। हालांकि देव उन्हें बड़ी शिद्दत से चाहने लगे थे, लेकिन वक्त बहुत जल्द देव के फेवर में करवट बदलने वाला था। पर क्या सच में वक्त देव के फेवर में करवट बदलने वाला था? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।

फिल्मी सितारों की सबसे चमकदार सफ में अपना नाम लिखने वाले इन दोनों सितारों का इश्क भी बड़ा फिल्मी था। इब्तिदा भी फिल्मी, इंतहा भी फिल्मी। हुआ यूं कि उस रोज शूट एक झील में होना था। देव और सुरैया एक नाव में बैठे थे। शॉट लगा हुआ था कि अचानक सुरैया फिसल गई और झील में गिर पड़ी। देव ने बगैर एक भी सेकंड बर्बाद किए झील में छलांग लगा दी। वो सुरैया को पानी की उस झील से निकाल लाए। सुरैया बाहर निकल आई लेकिन देव के इश्क के भंवर में गिर चुकी थी। उनकी जान तो बच गई थी मगर वो अपना दिल उस सुंदर सजीले नौजवान को हार चुकी थी।

देव और सुरैया एक साथ लगातार कई फिल्मों में काम करते जा रहे थे और फिल्में एक के बाद एक सिनेमा हॉल में रुपहले पर्दे पर अपना जादू बरकरार रखने में कामयाब रही थी।

दोनों को एक दूसरे से इश्क था, सारी दुनिया को इस इश्क बारे में पता था और दुनिया कहती थी कि उनके इश्क पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि उनके इश्क का हाल भी कुछ कुछ वैसा ही होने वाला था जैसा किताबों में लिखे हुए इश्क का होता है। लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, सस्सी पन्नू, उन सबके इश्क के साथ दुनिया ने कुछ अच्छा थोड़ी ना किया था। सुरैया की नानी और उनके वो मामा याद हैं आपको जो विलेन का काम किया करते थे, मोहम्मद जहूर। इन दोनों ने ही सुरैया और देव आनंद के इश्क की सबसे ज्यादा मुखालफत की, इस हद तक कि एक रोज ये रिश्ता, लेकिन उससे पहले बहुत कुछ घटा बना। क्या क्या वो बताएंगे आपको, मगर पहले प्यारा सा नगमा मलिकाए हुस्न की याद में।

हुआ यूं था कि देव सिनेमा में सफल हो गए थे, लेकिन उनके अंदर कुछ एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज थी, तो वो नहीं चाहते थे कि वो सिर्फ एक एक्टर बन के रह जाए। उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ पार्टनरशिप की और अपना प्रोडक्शन हाउस इस्टेब्लिश किया नवकेतन नाम से, और देव चाहते थे कि उनकी फिल्मों में कौन काम करे। हाँ, गेस सही किया है आपने, वो चाहते थे कि सुरैया उनकी फिल्मों में काम करे। फिल्म का नाम था अफसर, लेकिन सुरैया की नानी अम्मी जो थी, वो देव और सुरैया के बीच में दीवारें चाइना बनके खड़ी हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि सुरैया देव के साथ जरा भी वक्त बिताए। तो जैसे ही

देव सुरैया को कास्ट करने के लिए उनके घर पहुंचे तो नानी अम्मी ने शर्त रख दी कि सुरैया को उनकी फीस से दोगुना दाम मिलना चाहिए। देव पहले तो हल्का सा सकपकाए, लेकिन वो नानी अम्मी की चाल समझ गए थे तो उन्होंने हामी भर दी और कहा कि डबल से एक रुपया ज्यादा ही देंगे, कम नहीं। प्रोडक्शन हाउस नया था, लेकिन इस नौजवान के दिल में कुछ तो था जिसे उसे ढेर सारी खुदएतमादी बख्शी थी। और इस तरह से देव और सुरैया अफसर में काम करने लगे। दोनों का इश्क परवान चढ़ ही रहा था कि फिल्म रिलीज हुई और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन उनकी मोहब्बत कामयाब होने लगी थी। मगर लिखने वाले को कुछ और ही मंजूर था। क्या वो बताएंगे आपको, मगर पहले सुरैया की आवाज में एक प्यारा सा नगमा।

फिल्म का नाम था जीत और सुरैया और देव आनंद इस फिल्म के सेट से ही विवाह के लिए जाना चाहते थे, लेकिन एक जलनखोर असिस्टेंट डायरेक्टर ने न जाने कब नानी को खबर कर दी। वो सेट पर आईं और लगभग घसीटते हुए सुरैया को सेट से घर ले गईं। इस दौरान सुरैया और देव एक दूसरे को खत लिखते हैं और कामिनी कौशल तो कभी दुर्गा घोटे इन खतों को सुरैया और देव के पास लाती ले जाती। लेकिन फिर एक रोज विलेन मामा मोहम्मद जहूर ने नानी के साथ मिल करके सुरैया को एक धमकी दे दी, एक धमकी जिससे सुरैया भीतर ही भीतर टूट सी गई।

सुरैया बहुत बड़ी स्टार थी। देव नए नए फिल्मों में आए थे, उनके सामने करियर बनाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन दोनों ने इश्क में पड़ने के बाद ये पेशेवराना दीवारें गिरा दी। देव ने सुरैया को एक नॉवल गिफ्ट किया था जिसके हीरो के नाम पर सुरैया देव को स्टीव बुलाती थी, और देव को सुरैया की नाक इतनी पसंद थी कि वो उन्हें नोजी बुलाया करते थे। नानी सुरैया के सेट्स पर साये के साथ लगी रहती, तो उनकी आंखें बचाकर देव अपने खूबसूरत खत अपने दोस्तों के जरिए सुरैया तक पहुंचाते थे, जिनकी शुरुआत होती थी टू नोजी विद लव स्टीव।

मोहम्मद जहूर ने सुरैया को धमकी दी, अगर तुमने देव आनंद से रिश्ता नहीं तोड़ा तो हम उसे कत्ल करवा देंगे। सुरैया घबरा गई। मोहम्मद जहूर की इस धमकी ने सुरैया को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उनकी उम्र उस वक्त महज 22 बरस थी। जिन देव आनंद को वो सांसों की तरह अजीज मानने लगी थी, जिनके साथ जुड़कर उन्हें जिंदगी मुकम्मल लगने लगती थी, अचानक जब उन्हीं देव आनंद की जिंदगी पर बन आई, खतरा सच्चा और इस कदर डरावना लगने लगा कि उन्होंने एक बेहद क्रूर फैसला ले लिया। एक ऐसा फैसला जिससे उन्होंने अपने नाम बस जिंदगी भर के लिए एक दिल शिकन तन्हाई लिख ली। उन्हें क्या पता था कि जिंदगी में कभी भी सिर्फ एक मोड़ नहीं होता, कई मोड़ आते हैं। देव उन्हें बार बार समझाते, खतों में लिखते, लेकिन सुरैया ने एक फैसला ले लिया था।

मामू जान मोहम्मद जहूर की धमकी। और नानी की निर्दयता से डरकर सुरैया ने फैसला ले लिया कि वो देव से अपने सारे मरासिम तोड़ देंगी। देव उनका इंतजार करते रह गए, मगर सुरैया ने उनसे मिलने से ही साफ इनकार कर दिया। अक्सर देव और सुरैया के टूटे हुए रिश्ते को लेकर कई सारी बातें होती हैं, लेकिन सुरैया जानती थी कि इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे बस उनका घर की इकलौती कमाऊ फर्द होना भर था। नानी नहीं चाहती थी कि सुरैया का विवाह हो और वो उनके घर को छोड़कर दूसरे घर जाएं। उधर देव इस इंतजार से बेहद नाराज हुए। वो इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे।

देव सुरैया से रिश्ते की नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सके, वो बदहवास हो गए और उन्होंने बहुत जल्द कल्पना कार्तिक से विवाह कर लिया। सुरैया को अपनी अना और लालच के पिंजरे में कैद करने वाले नानी और मामू दोनों ने जब सुरैया की जिंदगी में ताहयात अकेलापन घोल दिया, उसके कुछ वक्त बाद ही दोनों हिंदुस्तान छोड़कर पड़ोसी मुल्क में बस गए। फिल्मों में बेहद मजबूत किरदारों से अपनी पहचान बनाने वाली सुरैया ने जिंदगी भर अविवाहित रहने का फैसला ले लिया। वो बेहद मजबूत किरदार वाली महिला थी, एक बार फैसला ले लिया तो कभी पीछे नहीं हटी, कभी भी नहीं।

1963 में सुरैया पर बेइंतहा शफ़क़त बरसाने वाले उनके वालिद अज़ीज़ जमाल शेख की वफ़ात हो गई। वालिद साहब के गुज़र जाने के बाद सुरैया ने फ़िल्मों में काम करना बिल्कुल बंद कर दिया। अपने फिल्मी करियर में ज़्यादातर हीरोइन सेंट्रिक फिल्में करने वाली सुरैया अपनी पूरी जिंदगी के लिए खुद ही हीरोइन बन के रह गई। अपनी शर्तों पर काम किया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सिंगिंग एक्टिंग स्टार बनी। हालांकि अपने काम को लेकर उन्होंने कभी खुद को बहुत बड़ी हीरोइन या सिंगर नहीं माना। वो तो ये कहती थी कि मैंने कभी गाना सीखा नहीं, लोगों को आवाज पसंद आ गई लेकिन मुझे गायकी कभी रास नहीं आई। और फिर वालिद के जाने के बाद एक्टिंग से भी मन रूस गया। उन्हें लगता था कि वो ठीक ही गाती हैं, एक्टिंग भी कुछ खास नहीं। लेकिन उनके प्रीमियर्स पर इस कदर भीड़ होती थी कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ती थी। उनसा ना कोई था ना कोई होगा, मगर वक्त आखिर तक उन्हें जिंदगी में अकेलेपन ने आ घेरा था। भीड़ नहीं रही, साथी नहीं रहे, हालांकि तवक्को आखिरी वक्त तक कभी मरती नहीं। शायद यही वजह है कि वक्त आखिर में एक बार जब उनके साथ बड़ी बहन फिल्म में काम कर चुकी और सुरैया की ग्लैमर और आम अवाम में उनकी शोहरत की चश्मदीद रहीं, तबस्सुम आपा ने उन्हें फोन किया और पूछा, आपा कैसी हैं? तो सुरैया ने जो जवाब दिया था वो दिल को तोड़ देने वाला था, मगर सच था, दर्दनाक सच। सुरैया ने कहा, हर कोई यही पूछता है कि मैं कैसी हूं, जिंदगी कैसी गुजर रही है, मगर कोई ये नहीं देखता कि मैं कैसे गुजार रही हूं। उन्होंने एक वसील तरीन जिंदगी अपने दम पर अकेले जीकर गुजार दी। वक्त जो हर किसी के लिए बस गुजर जाता है, उनके लिए भी गुजर गया। आखिरी वक्त तक वो अपने बंगलों में रहीं और फिर एक रोज सन 2004 में जनवरी महीना का आखिरी दिन था और अखबार में खबर शाया हुई कि सुरैया मलिकाए हुस्न, मलिकाए अदाकारी कही जाने वाली सुरैया दुनिया में नहीं रही। आज उनके जन्म की 97वीं सालगिरह है। हमें यकीन है कि उनकी जिंदगी का किस्सा जिंदगी के कठिन दिनों में आपके लिए पाथे अदीप की तरह रोशनी देगा। रजनीगंधा यहीं तक। शुक्रिया हमारा साथ यहां तक निभाने के लिए, बने रहने के लिए हमारे साथ। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।

नमस्कार, 12 बज चुके हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। अयोध्या के राम मंदिर में दान और कीमती सामान के गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल SIT ने आज अपनी जांच शुरू कर दी। SIT की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं और इसमें पुलिस महानिरीक्षक किरण S और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन भी सदस्य हैं। सभी सदस्य आज अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के DM के साथ राम मंदिर परिसर का दौरा किया। अधिकारियों ने अभी तक कोई निष्कर्ष सार्वजनिक नहीं किया है और जांच प्रारंभिक चरण में है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने प्रत्येक फरियादी की बात गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध, प्रभावी एवं न्यायपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री स्वयं फरियादियों के बीच पहुंचे और एक एक व्यक्ति से संवाद कर उनकी समस्याओं एवं प्रकरण की जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ. दयाशंकर मिश्र दयालु ने आज राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टूड़ियागंज लखनऊ में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग सप्ताह 15 से 21 जून का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग दिवस हजारों वर्षों से प्रचलित है। भारत का योग पूरे विश्व में अपनी खास पहचान बना चुका है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, बौद्धिक क्षमता का विकास, शारीरिक बलिष्ठता, स्वस्थ मन मस्तिष्क का ध्यान केंद्रित करने सहित तमाम रोगों में लाभकारी योग आसन को आज दुनिया अपना रही है। शासन के निर्देश पर हर सोमवार को आयोजित होने वाले संभव दिवस में आज अमरोहा नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस मौके पर जल आपूर्ति, राशन कार्ड हेतु आवेदन का सत्यापन, स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास योजना, मार्गों पर अतिक्रमण से संबंधित कुल 6 शिकायतों की सुनवाई की गई, जिनमें 5 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। अब सुनिए मौसम का हाल। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा। कल सूर्योदय 5:12 पर और सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी की FM प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 12:02 हो चुके हैं। हमारी सभा यहाँ समाप्त होती है। प्रातःकाल 5:50 पर पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति